मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 13 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवा गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवा गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवा गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमारस्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए इसमें पहले सुनते हैं मातृ वंदना। हम हैं इस बाग के माली, हमें मालूम है कि कितना प्यारा कितना सुंदर है हमारा ये चमन, हमारा ये वतन। इसलिए तो हम कहते हैं सबसे प्यारा सबसे सुंदर है हमारा भारत।

सारा संसार है जिनकी शरण में, सारा संसार है जिनकी शरण में, झुकता है सर उस माँ की चरण में। हम तो बस हैं उस माँ के चरणों की धूल, चलो मिलकर करते हैं माँ शेरावाली की वंदना।

जब मैं दुनिया से अनजान थी, जब मैं दुनिया से अनजान थी, खुद से ही हैरान थी। इस नफरत की दुनिया में पास सिर्फ मेरे राम थे। आपका सहारा मिला, नाव को किनारा मिला, जीवन की राह में जब राम मिले तभी मुझे आराम मिला।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन। आलेख सैमुअल खान का, प्रस्तुति है के परेश की।
1: उस महान आत्मा की दास्ता को जिसे देश के गरीब और अमीर सभी ने एक भाव से होकर सुना और मनन किया, उसके गहनतम दार्शनिक विचारों को जिन्हें विश्व के बड़े से बड़े दार्शनिक यथावत समझने में अंत तक उलझे रहे, भूख और अशिक्षा में मानव मात्र को बचाने के लिए जिसने विश्व के कोने कोने में जाकर शरण प्रदान की, सत्य और अहिंसा के आधार पर जिसने विश्व को शांति के साथ रहना सिखाया, जिसने विश्व राजनीति को एक नया मार्ग दिखाया, उस महामानव की महान विचारधाराओं से प्रेरणा लेकर देश सद्भावना के मार्ग पर चलता रहे और विनाश से अपनी रक्षा कर सके, विनोबा जी के सत्य और अकाट्य तर्क जनता के हृदय को प्रभावित करते हैं। भारतवर्ष की आध्यात्मिक संस्कृति में त्याग और बलिदान और दया और दान का महत्वपूर्ण स्थान रहा। भूदान आंदोलन सर्वथा इसके अनुकूल है। सत्य और शांति के आधार पर ही भारतवर्ष ने अपनी खोई हुई स्वतंत्रता प्राप्त की थी। सत्य और शांति के आधार पर ही वो अपना आर्थिक वैषम्य दूर करना चाहता था। भूदान आंदोलन इस दिशा में विनोबा जी का सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम पदन्यास है। देने वाले और लेने वाले दोनों ही प्रेम, मैत्री, सहयोग और सहानुभूति की पवित्र भावनाओं से भर जाते हैं। मनुष्य में मानवता के शुभ संस्कारों का उदय होता है। परोपकार के नाम पर भूमिदान का ये महान यज्ञ इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। विश्व के किसी भाग में इतने विशाल स्तर पर भूमि का बंटवारा स्वेच्छा से नहीं हुआ, परंतु विनोबा जी के प्रभाव से युग बदला, वातावरण बदला। उस समय प्रसन्नता पूर्वक भारतीय स्वयंभू ही अपनी भूमिहीन बंधुओं को उन्होंने भूमि दिया। विनोबा जी का कथन था, भूदान यज्ञ से प्राप्त हुई भूमि का वितरण मुझे स्वयं करना है। संभव है कहीं कहीं मुझे ग्राम पंचायतों की सहायता लेनी पड़े और कहीं कहीं उनके ही ऊपर छोड़ देना पड़े, परंतु इसकी देखभाल मुझे ही करनी होगी। ग्राम पंचायतों को अपना काम ईमानदारी और निष्पक्षता से करना चाहिए। भूदान आंदोलन भारत के भविष्य के नव समाज का प्रभात गीत है। इसकी सफलता और पूर्णता में असंख्य भारतीयों का मंगल निहित है। प्रत्येक भारतीय का ये पुनीत कर्तव्य है कि वो अपनी शक्ति के अनुसार इस यज्ञ में आहुति देकर परलोक और इस लोक में आदरणीय स्थान प्राप्त करे, तभी आर्थिक वैषम्य की अग्नि शांत हो सकती है। एक लेखक ने भूदान के महत्व के विषय में लिखा है, भूदान यज्ञ विश्व का अभूतपूर्व शांति और समानता का यज्ञ है। युग युगांतर और कल्प कल्पांतर की अनंत तपस्या और साधना का अमृत है। ये यज्ञ विश्व की विषमता का आहुति यज्ञ है। ये क्रांति सृष्टि की अभिनव देन है। ये विश्व गरिमा का

0: हिमालय शिखर है।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, विनोबा भावे और भूदान यज्ञ। आलेख था सैमुअल खान का, प्रस्तुति थी के परेश की। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:25 होने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए श्री राम चरित मानस का गायन। गायिका हैं शोभा जोशी और संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

श्री रामचरितमानस के आरंभ में देवताओं, संत, असंत तथा वाल्मीकि जैसे सरस्वती पुत्रों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी ने श्री राम के भक्तों, बंधु बांधवों, सहयोगियों आदि की अभ्यर्थना की है और उसके बाद किया है प्रभु के नाम की महिमा का गान। राजा जनक, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, पवन पुत्र हनुमान, सुग्रीव, जामवंत आदि की वंदना कर भक्त कवि ने अपने आराध्य के चरणों में मस्तक नवाया है। उन्होंने माता सीता को भी प्रणाम निवेदित किया है। श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करते हुए र, आ तथा मा अक्षरों में उन्हें ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के दर्शन हुए हैं।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन। गायिका थी शोभा जोशी और संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि सामयिक की बेड़ा खड़ा चुगोट।
1: मेथी गोटो गुणकारी फसल आए, ये भाजी बले आए आरु मसला बले आए, ये बल बपू काजे खूबे नगद फसल आए। ये फसल चो कमानी उन्नत वाट ने कसन करतो राय, एके मैं सांगे से ध्यान देहुन सुना। ये चो नगद किसी मनात LAM सिलेक्शन, पूसा अर्ली बंचिंग, कसूरी सिलेक्शन, प्रभा मेथी नंबर 47 और 14, राजेंद्र क्रांति RMT अदाय जाना बेड़ा तैयार करतोर। बुनतोर पहिल 2 ले 3 हार बेड़ा के नंगत जो पुन भाती माटी के बिरबिरा बनाउन देतो राय। सरासरी हार जोप तो पहिल सरलो गोबर चो खत के हिसाब ने भूई ने मिसाउन देतो राय, फिर समान चौरस कियारी बनाउन देतो राय। बीज आरु बुनतो समया 2.5 एकड़ काजे 15 ले धरून 20 किलोग्राम बीज खूबे होय से। बीज के अगर तो काजे 6 ले 8 दिन चो समया लागे से। बुनतो पूरे बीज के राइजोबियम कल्चर ले बीजोपचारित करलो ने खूबे लाभकारी होय से। बीज के आगर करुन पेरुन भाती बुनाई करुवात, मांतर धाड़ी हिसाब ले बुनलो ने 15 ले 20 सेंटीमीटर चो लाफी ने आरु 10 सेंटीमीटर बूटा ले बूटा चो लाफी संगाउन बुनाई करतो राय। असन करलो ने मुरबेरा मिजानी करतो काजे सुविधा रहे से। अदा जाना खत भात, बेड़ा के तैयार करतो बेरा 10 ले 15 टन कार्बनिक खत नहाले कंपोस्ट 2.5 एकड़ चो हिसाब ने माटी ने मिसातो राय। 40 किलोग्राम नत्रजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस आरु 20 किलोग्राम पोटास 2.5 एकड़ चो हिसाब ने उपयोग करतो राय। एचो मिजानी कसन करतो राय हुनके जाना। जेबे बूटा 3 ले धरून 4 पाना चो होन जाए दे, तेबे आगर गोछा बूटा मन के निष्काउन देतो राय। एचो ले धाड़ी बूटा मन चो लाफी 8 ले 10 सेंटीमीटर होन जाए दे, फिर बूटा नानी रलो समयाने 1 हार मिजानी करतो राय। फिर बुनलो 45 ले 50 दिन पाछे फिर मिंजानी करतो राय और लाटा बूटा मन के निकराउन देतो राय। अदाय जाना सिंचाई चो वाट, बुन तो पहला पानी पलालो ने बीज नंगत अखरे से, पाछे माटी और बतर दखुन 4 ले 6 दिन चो फरक ने सिंचाई करुक लागे से। रोग आरु कीड़ी मन चो वाट के अदाय में सांगे से। गोटोक रोग होय से चूर्णिल आसिता, ए रोग होले पाना ने दोनों पाटे पंडरी गुंड महा दखा देवाय। एक थेबा तो काजे कार्बन डाजिम 50%, WP 0.1%, नहाले घुलनशील गंधक 0.2% चो छिड़काव रोग होलो ने करतो राय। गोटोक रोग होय से मृदु रोमिल आसिता, ए रोग आगर फरवरी और मार्च महीना ने होय से। ए रोग होलो ने पाना मंच उपरे हरदया बाना महा आरु खाले बाटे कापस असन कुमटलो महा दखा देवाय। एके थेबा तो काजे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50%, WP फफूंदनाशी के घोरुन छिड़काव करतो राय। कीड़ी, ए फसल ने तो कीड़ी आगर नी जाउटोत, मांतर केबे जेबे पाना खाओ सुंडी आरु फर काना करु कीड़ी जाउटुन जासोत। उदल दाय ए मन के मरला तो काजे 0.5% मैलाथियान नहाले 0.4% क्विनाल फास के छिचतो राय। अदा में सांगे से कटई और उपजन, कसूरी सिलेक्शन किसिम ने जोन थाने फूल बेरले फुटवाए हुंचो पहिल हर कटई बुनलोर 25 ले 30 दिन पाछे पाना काजे करतो राय। फिर 15 ले 25 दिन चो फर ने फूल फुटतो पूरे तक कटई करून साग रांधुक सकू। और सामान्य मेथी ने 2 ले 3 पाना होलो ने टूटातोर मूर होन जाए से। बुनलोर 20 ले 25 दिन ने भूईले बूटा के टूटाउन पहिल हार टूटा तो काम के आमी करुक सकूं। पाछे 30 ले 35 दिन ने झिकुन भाती एके निष्काउ पड़े से। बीज काजे मेथी फसल ने फूल फूट तो पूरे 2 हार टूटाउन बूटा के फूल तो फर तो काजे छांडून देतो राय। पाछे पाकलो ने फसल चो कटाई करतो राय, काटून बूटा के घाम ने सुखातो राय। सुखलो पाछे बूटा मन के मिंडून ओसाउन बीज के अलगाउन देतो राय। एचो उपजन, सामान्य मेथी ने 70 ले धरून 80 कुंटल 2.5 एकड़ चो हिसाब ने मिरे से, आरु कसूरी मेथी ने 90 ले धरून 100 कुंटल अढ़ाई एकड़ चो हिसाब ने मिरे से दादा दीदी मन असन करून मेथी फसल चो कमानी करून तुम्हें आगर फसल पाऊ सकास आरु आगर फायदा वाले कमाऊ सकास।
0: आप सुन रहे थे कृषि समय की बेड़ा खड़च गोट, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:40 हुए हैं। हुलहुली कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए रनहा कासन पाड़। वादक कलाकार हैं धर्मू और साथी।

वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम साहित्य भारती, इसे हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 8:30 पर सुना जा सकता है कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह। सुबह 9 बजे आप सुन सकते हैं समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर नमस्कार जगदलपुर के आकर्षण होंगे। काव्य सरिता में आप सुन सकते हैं काव्य पाठ अलका पांडे से और होगी फिल्मी गीतों की मधुरिमा। सुबह 9:15 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। 9:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इसमें आज आप सुन सकते हैं काला पत्थर फिल्म के गाने। सुबह 10 बजे आजी तो सगा कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं श्री मणिराम कश्यप से भेंटवार्ता। मणिराम कश्यप सेवानिवृत्त शिक्षक और समाज सेवक हैं। इनसे बातचीत करेंगे सीआर कश्यप। सुबह 10:30 पर लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में सुना जा सकता है राज किशोर नाग और साथियों का गाया छत्तीसगढ़ी लोकगीत। सुबह 11 बजे एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार होंगे संगीतकार आदेश श्रीवास्तव। 11:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। दोपहर 12 बजे लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे संपतराम नाग और इस कार्यक्रम की संयोजिका होंगी चंद्र ऋषि ठाकुर। दोपहर 1:05 पर बेड़ा खड़ा जो गोठ कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 1:10 पर आप सुन सकते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। दोपहर 2:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारे मेहमान। हमारे आज के अतिथि होंगे श्री सलभ कुमार सिन्हा पुलिस अधीक्षक, भेंट करता होंगी डॉक्टर मधु जैन, प्रस्तुति होगी चंद्र ऋषि ठाकुर की और इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे त्रिवेणी एंटरप्राइजेस। शाम 5 बजे हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी। 5:05 पर आप सुन सकते हैं देशभक्ति गीत। 5:10 पर युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी सुना जा सकता है। 6:35 पर आप सुन सकते हैं मधुराम और साथियों के गाए हलवी लोकगीत। शाम 7 बजे कार्यक्रम होगा बस्तर के स्वर। शाम 7:30 पर आप सुन सकते हैं प्रायोजित कार्यक्रम फोन इन किसान वाणी।

0: रात 8 बजे जूनी यूजर कार्यक्रम में आप सुनेंगे हल्बी लोकगीत। कलाकार होंगे दिलीप कुमार पांडे, और साथ ही रात 8:30 पर पीला मन का जयगोट कार्यक्रम में सुना जा सकता है पंडित जवाहरलाल पर कार्यक्रम। प्रस्तुति होगी विनेश कुमार पानीग्राही की। रात 9:15 पर आमचौरान आमचौ जीवना कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं फूल सिंह नाग से भेंटवार्ता। भेंटकर्ता होंगे बलबीर सिंह कच्छ। और रात 10 बजे आदिवासी लोकवाद्य धुनों के कार्यक्रम पाड़ में डुम्मा देव पाड़ और डोकरा देव पाड़ सुना जा सकता है। वादक कलाकार होंगे पाकलू और साथी। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः स्लोवाक गणराज्यं प्रति प्रस्थास्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अस्यां यात्रायां स्लोवाक देशस्य प्रधानमंत्रिणा फिको इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति, तथा च सहकारस्य नूतनान् मार्गान् अन्वेषयिष्यति। प्रवासावधौ प्रधानमंत्री राष्ट्रपतिना पेलेग्रिनी इत्यनेन सहापि मेलनं करिष्यति। द्वैपाक्षिक व्यापारे निरन्तर वृद्धेः दृष्ट्या प्रधानमन्त्रिणः यात्रायाः महत्त्वं वर्धते। यच्चतुर्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे 1 बिलियन US डॉलर परिमितम् अतिक्रम्य गतवर्षे 8.1 बिलियन US डॉलर परिमितम् आसीत्। अनया यात्रया यूरोपीयसङ्घस्य सदस्यराष्ट्रैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं भारतस्य प्रतिबद्धताम् अपि सुदृढं भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य देहरादूननगरस्य भारतीय सैन्य अकादम्यां पासिंग आउट परेड इत्यस्य समीक्षां करिष्यति। अस्मिन् वर्षे पासिंग आउट परेड इतीदम् ऐतिहासिकं भविष्यति, यस्मिन् प्रथमवारं महिलाः पुरुषैः सह पथसञ्चलनं करिष्यन्ति। अस्मिन् भव्यसमारोहे 500+ पुरुषाः महिलाः च अन्तिमं पदं स्वीकृत्य भारतीयसेनायाम् अधिकारित्वेन नियुक्ताः भविष्यन्ति। भारतीय सैन्य अकादम्याः पासिंग आउट परेड न केवलं सैन्य परम्परा अस्ति, अपितु राष्ट्रसेवायां समर्पितानां युवाधिकारिणां कृते नूतन यात्रायाः आरम्भोऽपि अस्ति। केन्द्रीय गुरुद्योग इस्पात मन्त्रिणा HD कुमारस्वामिना उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विनिर्माण आधारित वृद्धेः वृत्त्यावसर निर्माणस्य च विषये अभूतपूर्वं महत्त्वं प्रदत्तम्, येन औद्योगिक वृद्धिः त्वरिता अभवत्, बृहद् वृत्त्यावसराश्च कल्पिताः। विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन सह वार्तालापं कृत्वा गल्फ प्रदेशे US नौसेनया कृताक्रमणस्य विषये प्रबलं विरोधं प्रकटितं, यस्मिन् त्रयः भारतीयाः नाविकाः मृताः। सामाजिकान्तर्जालीये पटले एकस्मिन् लेखे डॉ जयशंकरः अवदत् यत् वाणिज्यिक नौवहनं विरुद्धं एतादृशानि प्राणघातक आक्रमणानि न्यायोचितानि न सन्ति इति। ओमान तटस्य तटे पलाव ध्वजयुक्तस्य MT सेटेबेलो जलयानस्य उपरि अमेरिकादेशस्य आक्रमणे भारतीय दलस्य त्रयः सदस्याः मृताः, येन नवदिल्ल्या तीक्ष्ण प्रतिक्रिया प्रदत्ता। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः दृढतया उक्तवान् यत् ऑपरेशन सिन्दूर अभियानस्य समये स्वदेशीय प्रक्षेपास्त्राणाम् असाधारणं प्रदर्शनं भारतस्य रक्षाशोधस्य विकास पर्यावरण व्यवस्थायाः वर्धमान शक्तेः परमाणम् अस्ति। रक्षा अनुसंधान विकास संघटनस्य रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशालायाम् उन्नतास्त्र प्रणाली परिसरस्य उद्घाटनावधौ रक्षामन्त्रिणा उक्तं यत् शक्त्यै शान्तेः आवश्यकता अस्ति तथा च तस्याः शक्तेः सर्वाधिकः विश्वसनीयाधारः आत्मनिर्भरता एव अस्ति। दिल्ली एनसीआर क्षेत्रे गतरात्रौ निरन्तरं द्वितीय रात्रौ प्रचंड वृष्टिः अभवत्। वृष्ट्या सह मेघगर्जनं तीव्रवायुः विद्युद्योतनं चाभवत्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन दिल्ल्याः तथा समीपस्थानां क्षेत्राणां कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। आईएमडी इत्यनेन सावधानं कृतं यत् आर्द्रकालः अनुवर्तयितुं शक्यते। अग्रिमेषु कतिपयेषु दिनेषु मेघवृष्टिः निरन्तरं भवितुमर्हति। क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशालायां तिसृणाम् ओडीआई क्रीडायां श्रृंखलायाः प्रथमायां क्रीडायां भारतम् अफगानिस्तान दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडा सार्धैकवादने आरभ्यते इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिफ्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि भारत को यूरेशिया की ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा संपर्क और अवसर के ढांचे से प्रेरित है। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इन बैठकों का उद्देश्य नीट पुनर्परीक्षा के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना, तैयारियों को मजबूत करना और परीक्षा की निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता बनाए रखना है। परीक्षा 21 जून को होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित कराने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देश की खुदरा मुद्रास्फीति दर इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। नई मुद्रास्फीति श्रृंखला के अंतर्गत लगातार पांचवें महीने में महंगाई में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। स्वीकार कीजिए हरि प्रिया का नमस्कार। आज हम नमस्कार जगदलपुर में आपके लिए लेकर आए हैं काव्य सरिता, मधुरिमा के गीत और बहुत सारी बातें।

0: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
1: पवन के ठंडे झोंके के साथ
0: हिलोरे लेगी
1: आकाश की वाणी।
0: आकाशवाणी
2: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
0: या फोन करें 222150 या 222400,
1: 222150 या 222400।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 15102।
6: कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर में पुनः आपका स्वागत है। हमने अपनी कमी को ही खूबी बना ली, हमने अपनी कमी को ही खूबी बना ली, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जीवन को वरदान मान लिया। ये अनुपम जीवन देने के लिए हे ईश्वर आपका लाख लाख शुक्रिया। मुझे लगता है ऐसा कहते हैं एल्बिनिज्म पीड़ित लोग। जी हाँ श्रोता साथियों, आज का दौर कई मायनों में पिछली पीढ़ी से ज्ञान विज्ञान और जागरूकता में आगे है। ऐसा तो आप भी मानते होंगे, यकीनन ऐसा ही है। जो सच है स्वीकार्य है उसे खुले दिल से स्वीकार करना ही एक बुद्धिजीवी का धर्म है। एल्बिनिज्म एक अनुवांशिक स्थिति है जिसमें शरीर में मेलेनिन नामक पिगमेंट की कमी होती है जिससे त्वचा बाल और आंखों का रंग सफेद या बहुत हल्का हो जाता है। आपने भी इससे पीड़ित लोगों को देखा होगा। तो कुछ उदाहरण हैं इससे पीड़ित व्यक्तियों के। दी आंड्रा फॉरेस्ट, न्यूयॉर्क में रहने वाली दी आंड्रा दुनिया की सबसे पेशेवर एल्बिनो सुपर मॉडल है। इन्हें जीन पॉल गार्डियर और वेरियन वेस्टवुड जैसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर के लिए रैंप वॉक किया था। उसी तरह बहुत सारे उदाहरण हैं। कोनी च्यू, हांगकांग में जन्मी कोनी पहली प्रसिद्ध एल्बिनो मॉडल है। 90 के दशक में उन्होंने फैशन की दुनिया में कदम रखा था और गोरी त्वचा के सुनहरे बालों के पारंपरिक सौंदर्य के मानकों को चुनौती दी थी। ऐसे ही कई उदाहरण हम ले सकते हैं जैसे जूलिया नोज, शिवान सेठ उमर। इस तरह के लोग हैं जो इस बीमारी से पीड़ित होते हुए भी अपनी एक अलग पहचान बनाई, वो भी मॉडलिंग की दुनिया में। इस तरह हम देखते हैं कि एल्बिनिज्म से ग्रस्त लोगों को धूप से अत्यधिक संवेदनशीलता और दृष्टि संबंधी समस्याएं हो सकती है। दुनिया भर में एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के अधिकारों का जश्न मनाने और उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव को मिटाने के लिए हर साल 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो आज है 13 जून और ये दिवस हम मना रहे हैं और हमें भी जागरूक होने की जरूरत है कि सारे व्यक्ति समाज के हिस्से हैं। एल्बिनिज्म से पीड़ित महिलाओं को एल्बिनो कहा जाता है। फैशन मॉडलिंग और मनोरंजन की दुनिया में इन एल्बिनो डिवाइस ने अपने अद्वितीय और आकर्षक रूप से रूढ़ियों को तोड़कर एक नई पहचान बनाई है और कई उदाहरण हमने आपके सामने रखे। तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारा ख्याल तो कुछ ये है।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782-222-666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
2: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
3: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
2: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। छोटा सा घर मेरा, छोटा सा मन मेरा, छोटी सी साइकिल, छोटी सी कार, दिन भर खेलूं हो इन पर सवार। जी हाँ, ये थी एक छोटी सी कविता। इस तरह आप भी कभी कविताएं लिखते होंगे या आपके बच्चे लिखते होंगे, तो आप उनकी कविताएं पढ़ते हैं? जी हाँ, कविता लिखना एक बहुत अच्छा शौक है और इसमें बड़ा आनंद आता है। यदि आप लिखने की कोशिश करें तो ही इस आनंद का आनंद ले पाएंगे। अब नमस्कार जगदलपुर में हम आपको लिए चलते हैं काव्य सरिता की ओर और आपको सुनवाते हैं कविता पाठ। हमारी कवि हैं अलका पांडे। आइए सुनते हैं अलका पांडे से काव्य सरिता में कविता पाठ।
5: मेरी पहली कविता है, बंधन से परे होती है मुस्कान, उन्मुक्त होती है हंसी, हवा का कोई देश नहीं, खुशबू की कोई सीमा नहीं, भावनाओं की परिधि नहीं, जज्बात का कोई नाम नहीं, धड़कन की कोई भाषा नहीं, होती है सिर्फ अभिव्यक्ति। जिसने भाव भंगिमाओं को पढ़ा, जिसने गहरे अंतर्स के भावों में गोता लगाया, केवल वही समझा, वही जाना, वही पहचाना। मेरी दूसरी कविता है रेलगाड़ी। मैं इस प्लेटफार्म को रोज देखती हूँ, मैं इस प्लेटफार्म को रोज देखती हूँ अंतर्मन की आंखों से, जिस पर एक रेलगाड़ी रोज आती है नियत समय पर, बिना विलंब से प्रायः नित, जिन्हें जाना हो बैठ गए, बैठ गए, जिसे नहीं जाना हो ठहर गए, जाने वालों को कहने अलविदा, जाने वालों को कहने अलविदा। न जाने मेरे कितने परिचित अपरिचित चले गए, कुछ जाने को हैं तैयार। मुझे पता है, मुझे पता है, एक दिन ऐसे ही रेलगाड़ी आएगी और जाना है मुझे भी, और जाना है मुझे भी एक लंबे सफ़र पर, एक लंबे सफ़र पर, एक यात्रा करनी है पूर्ण। अभी तो मैं हूँ मुसाफिर खाना में, सिर्फ जाते हुए लोगों को देखते हुए, सिर्फ जाते हुए लोगों को देखते हुए मुसाफिर बनना है मुझे उस अदृश्य रेलगाड़ी का और जाते जाते कहना है, ऐ दोस्तों, अलविदा अलविदा अलविदा। मेरी अगली कविता है जिसका शीर्षक है कुछ कविता लिखूं। सोचती हूं इस बीते वर्ष पर, उन गुजरे दिनों पर कुछ कविता लिखूं। सोचती हूं इस बीते वर्ष पर, उन गुजरे दिनों पर कुछ कविता लिखूं। छल कपट ढोंग दिखावा से मन है भर गया, छल कपट ढोंग दिखावा से मन है भर गया। सोचती हूँ अब कुछ अन्यथा लिखूं, सोचती हूँ अब कुछ अन्यथा लिखूं। सोचती हूँ इस बीते वर्ष पर, उन गुजरे दिनों पर कुछ कविता लिखूं, कुछ कविता लिखूं। देवता तलाशते हैं सभी, देवता तलाशते हैं सभी, दे सके जो सुख शांति, पूरी हो मनोकामना, पूरी हो मनोकामना। सोचती हूँ ऐसी ही कुछ आस्था लिखूं, सोचती हूँ ऐसी ही कुछ आस्था लिखूं। सोचती हूँ इस बीते वर्ष पर, उन गुजरे दिनों पर कुछ कविता लिखूं, कुछ कविता लिखूं। हर तरफ हो हरियाली, ये बसंती हवा हो खुशहाली, हर तरफ हो हरियाली, ये बसंती हवा हो खुशहाली। रहे राम राज्य हमेशा यहाँ, रहे राम राज्य हमेशा यहाँ। सोचती हूँ ऐसी ही कुछ व्यवस्था लिखूं, सोचती हूँ ऐसी ही कुछ व्यवस्था लिखूं। सोचती हूँ इस बीते वर्ष पर, उन गुजरे दिनों पर कुछ कविता लिखूं, कुछ कविता लिखूं। बहुत सुहाने पल थे जो हंसी खुशी में बीत गए हंसाते हुए, बहुत सुहाने पल थे जो हंसी खुशी में बीत गए हंसाते हुए। सोचती हूँ इन्हीं पर कुछ व्यथा लिखूं, सोचती हूँ इन्हीं पर कुछ व्यथा लिखूं। सोचती हूँ इस बीते वर्ष पर, उन गुजरे दिनों पर कुछ कविता लिखूं, कुछ कविता लिखूं। मेरी अगली कविता है जिसका शीर्षक है तुम्हें जी भर कर देखा भी नहीं। ये हवा भी मेरे गम से गमगीन हो गई है, ये हवा भी मेरे गम से गमगीन हो गई है। इस कठोर धूप में भी एक कली खिलते खिलते कमल हो गई है, खिलते खिलते कमल हो गई है। मिलन की इन हाथों में रेखा नहीं है, मिलन की इन हाथों में रेखा नहीं है। विरह वेदनाओं का लेखा नहीं है, विरह वेदनाओं का लेखा नहीं है। आंसुओं से यूं आंखें धुंधला सी गई हैं, आंसुओं से यूं आंखें धुंधला सी गई हैं। अरे तुम्हें तो जी भर कर देखा भी नहीं है, अरे तुम्हें तो जी भर कर देखा भी नहीं है। क्यों तुम सहरा में बादल बुलाने चले हो, क्यों तुम सहरा में बादल बुलाने चले हो। किसे हाले दिल तुम अपना दिखाने चले हो, किसे हाले दिल तुम अपना दिखाने चले हो। यहाँ तो अब हो रही तिजारत कला की भी, यहाँ तो हो रही तिजारत कला की भी। किसे गीत अपने तुम सुनाने चले हो, किसे गीत तुम अपने सुनाने चले हो। ना है कोई खता हमें तो सफाई ने मारा है, ना है कोई खता हमें तो सफाई ने मारा है। ना है कोई मर्ज हमें तो दवाई ने मारा है, ना है कोई मर्ज हमें तो दवाई ने मारा है। मुझे दुश्मनों का, मुझे दुश्मनों का तनिक भी डर नहीं है, मुझे दुश्मनों का तनिक भी डर नहीं है। अरे हमें तो दोस्तों की वफाई ने मारा है, अरे हमें तो दोस्तों की वफाई ने मारा है। मेरी अगली कविता है जिसका शीर्षक है आखिर क्यों। नदी के दो किनारे साथ चलते हैं मगर मिल नहीं पाते, नदी के दो किनारे साथ चलते हैं मगर मिल नहीं पाते। यदि हटा दो एक किनारे को, यदि हटा दो एक किनारे को, अस्तित्व खत्म हो जाएगा नदी का, अस्तित्व खत्म हो जाएगा नदी का। दूसरा किनारा मिट जाएगा, दूसरा किनारा मिट जाएगा, किंतु फिर भी लहरें उठती हैं सदा। इस किनारे से उस किनारे तक आखिर क्यों, इस किनारे से उस किनारे तक आखिर क्यों। धरती और आकाश है, आसमान का प्रकाश है पूर्ण, धरती के लिए परावर्तन है। धरती का आकाश हेतु किंतु फिर भी तरंगे परावर्तित होती हैं, किंतु फिर भी तरंगे परावर्तित होती हैं। इस छोर से उस छोर तक आखिर क्यों, इस छोर से उस छोर तक आखिर क्यों। सिक्के के दो पहलू हैं, सिक्के के दो पहलू हैं, एक चिन्ह से चिन्हित है दूसरा, एक चिन्ह से चिन्हित है दूसरा। फिर भी एकाकार नहीं होते, फिर भी एकाकार नहीं होते, किंतु चिन्ह बनते हैं एक दूसरे के लिए, किंतु चिन्ह बनते हैं एक दूसरे के लिए, इस पहलू से उस पहलू तक, आखिर क्यों, आखिर क्यों। जिंदगी के दो रूप, खिलौना और आधार, सुख और दुख के दो विकल्प। सुख है दुख के लिए, फिर भी सुख दुख साथ नहीं रहते, फिर भी हमें प्रतीक्षा रहती है दुख में सुख के लिए, आखिर क्यों, दुख में सुख के लिए आखिर क्यों। जीवन जन्म और मरण के मध्य की कड़ी है, जीवन जन्म और मध्य के मध्य की कड़ी है। जो जीवित हैं वो निर्जीव नहीं हैं, जो जीवित हैं वो निर्जीव नहीं हैं। जन्म लेने वाला मरता है, जन्म लेने वाला मरता है, मरने वाला जन्म लेता है आखिर क्यों, मरने वाला जन्म लेता है आखिर क्यों। मेरी अगली कविता है जिसका शीर्षक है ठूंठ। एक लता पुंज की लेती हुई अंगड़ाई ने मुझे आकर्षित किया, एक लता पुंज की लेती हुई अंगड़ाई ने मुझे आकर्षित किया। मैंने पूछा इतना इठलाती क्यों हो, मैंने पूछा इतना इठलाती क्यों हो। इस गगन की ऊंचाई पर पहुंच गई, इस गगन की ऊंचाई पर पहुंच गई, तुम तो बड़ी खुशनसीब हो। उस अमर बेल ने कहा, उस अमर बेल ने कहा, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरी कलियों पर कितने भौरे मंडलाते हैं, कौन है मेरे जैसा, कौन है मेरे जैसा। मेरे गाने से गाते हैं सरगम, मेरे गाने से गाते हैं सरगम, खिलने से होता है सवेरा, खिलने से होता है सवेरा। मैंने ठीक उसी पल नीचे दृष्टि दौड़ाई, मैंने ठीक उसी पल नीचे दृष्टि दौड़ाई, देखा कि जिसका सहारा लेकर, देखा कि जिसका सहारा लेकर लतापुंज बुलंदियों पर थी, वह पैरों के नीचे था अपना पूरा रस स्रोत। लतापुंज को देकर मौन खड़ा सूखा हुआ पत्र विहीन वीरान पेड़, मौन खड़ा हुआ सूखा पत्र विहीन वीरान पेड़। ठूंठ में बदला हुआ उजड़ा सा, ठूंठ में बदला हुआ उजड़ा सा, ठीक कुड्ज की तरह, सिर कुड्ज की तरह, लेकिन कुड्ज जैसा हरा भरा नहीं, लेकिन कुड्ज जैसा हरा भरा नहीं। मेरी अगली कविता है जिसका है शीर्षक है शुभकामना, जिसका शीर्षक है शुभकामना। शुभकामना देने के लिए मेरे पास अलग से शब्द नहीं है, शुभकामना देने के लिए मेरे पास अलग से शब्द नहीं है। मैंने खुशी और दुख प्रकट करने के लिए, मैंने खुशी और दुख प्रकट करने के लिए अलग शब्द नहीं बनाए हैं, अलग शब्द नहीं बनाए हैं। उसी से ठंडा उसी से गर्म, उसी से ठंडा उसी से गर्म। जिन शब्दों से प्रसन्नता स्पष्ट होती है मेरी, जिन शब्दों से प्रसन्नता स्पष्ट होती है मेरी, वही शब्द गम के लिए भी हैं, वही शब्द गम के लिए भी हैं। इसलिए इसलिए तुम्हारे मिलन और जुदाई के लिए सिर्फ एक शब्द है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
4: अलका पांडे से आप सुन रहे थे कविता पाठ काव्य सरिता कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। श्रोताओं, भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण गर्मी की छुट्टियां मई के बदले 20 अप्रैल से ही शुरू हो गई थी, तो हमने तो गर्मी की छुट्टियों का फायदा पहले ही ले लिया था, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन ने गर्मी की को देखते हुए छुट्टियां बढ़ाने की घोषणा की थी, जो कि मानसून के आने पर रद्द हो गई हैं। अब 16 जून से ही सभी शासकीय और गैर शासकीय स्कूल शुरू होंगे। शाला प्रवेश उत्सव 16 जून से ही मनाया जाएगा। इस दौरान बच्चों ने नई किताबें, साइकिल, यूनिफॉर्म सब खरीद लिए होंगे और जिन्हें स्कूल से मिलना हो वो स्कूल में भी तैयारियां हो रही होंगी बच्चों के लिए। तो देखिए, चाहे छुट्टी हो या स्कूल, हमें तो बहुत खुशी से और बहुत मस्ती से अपने ये बचपन के दिन और स्कूल के दिन बिताने हैं। बच्चों को भी खुश होना चाहिए।

0: कि स्कूल शुरू होने वाले हैं और बड़े तो खुश होंगे ही, क्योंकि उनका रूटीन की दिनचर्या जो शुरू हो जाएगी। तो हम ये कहना चाहेंगे कि 16 जून से स्कूल खुलने वाले हैं, तो आप उसकी तैयारी जल्दी से कर लीजिए और खूब खुश रहिए।
1: चकरकचीचा चो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकरक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगड़दुम चकड़दुम चिकिचकचो।

0: जी हाँ श्रोताओं, नए शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए आप सभी अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं। वो खूब खुश रहें, अपनी रचनात्मकता को दिशा दें और नए नए कीर्तिमान गढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब वक्त है मधुरिमा का, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संदेश।
1: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
0: पेश है मधुरिमा। आपकी हर अदा मेरे लिए बहुत खास है, आपकी हर अदा मेरे लिए बहुत खास है, यही शायद मेरे पहले प्यार का एहसास है। चुरा लिया है आपने मेरे दिल का सुकून, अब हर धड़कन में सिर्फ आपकी ही प्यास है।

प्यार करने से पहले हमें तो प्यार के बारे में कुछ भी न मालूम था। प्यार करने से पहले हमें तो प्यार के बारे में कुछ भी न मालूम था, लेकिन अब यूं लगता है कि प्यार के एहसास को हमने जितना समझा जाना है, शायद ही इस जहां में कोई और समझ पाया है। खो जाते हैं हम तेरी आंखों में अक्सर, खो जाते हैं हम तेरी आंखों में अक्सर, जैसे कोई दरिया मिल जाता हो समुंदर में जाकर। दिल में बसी है वो जो सिर्फ तुम्हारी सूरत है, तुम्हारी हर अदा में हमें एक नई जन्नत दिखती है।

हो सकता है इंतजार मेरी उम्र से लंबा हो शायद, हो सकता है इंतजार मेरी उम्र से लंबा हो शायद, पर तुम्हारा आना ही हर मर्ज की दवा है।

आपसे मिलकर जाना मोहब्बत क्या होती है, आपसे मिलकर जाना मोहब्बत क्या होती है, कैसे दिलों में चाहत की शमा जलती है। हर लम्हा हम संग बिताना चाहते हैं, हर लम्हा हम संग बिताना चाहते हैं, अब तो बस दिन रात दिल यही इबादत करता है।

मधुरिमा के इन मधुर गीतों के साथ ही आपके शुभ दिन की कामना करते हुए हरिप्रिया आप चाहती है नमस्कार जगदलपुर से इजाजत। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।

आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है, समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे सुबह 8 बजे।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के,
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: घर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
6: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि डीआरडीओ ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
7: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की।

0: जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड जैन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
3: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
2: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
5: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष

0: से मेघना शर्मा।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमरीका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमरीकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स ने कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-level

0: श्रोताओं नमस्कार। डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में मैं प्रवीणा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। श्रोताओं, कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी, चाहे वो पोषक तत्वों की हो या आनुवांशिक कमी हो, हमारी शारीरिक संरचना पर गलत प्रभाव डालती है, तो उसका असर हमारे मन पर भी पड़ता है। ऐसी ही एक त्वचा की बीमारी है एल्बिनिज्म। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हम मना रहे हैं। ये क्या है, किस तरह की परेशानी है, इसी विषय पर बात करने के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा को। डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार प्रवीणा जी,
0: आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, एल्बिनिज्म क्या है और क्या ये एक आनुवांशिक शारीरिक समस्या है या कोई स्किन डिजीज है?
1: देखिए, एल्बिनिज्म का मतलब है कि आपके शरीर में, त्वचा में खास के, कहीं पे भी पिगमेंट्स नहीं बन रहे, मतलब आपके मेलानिन नहीं बन रहे, जिसके कारण आपकी जो त्वचा का भूरा रंग है वो नहीं बन पा रहा। तो आपकी त्वचा का रंग सफेद या क्रीमिश कलर का होता है। इवन आपके बाल भी सफेद या क्रीम कलर के होते हैं, और कभी कभी आपकी आंखों की पुतलियां भी बहुत लाइट कलर की होती हैं, जो कि ओकुलोक्यूटेनस एल्बिनिज्म में होता है। ये एक तरह का जेनेटिक कंडीशन है, जहाँ पे पैदाइशी ही रंग बनना बंद रहता है। अच्छा। तो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ऐसा होता है। सो ये त्वचा की बीमारी तो नहीं कहेंगे, बट एक अनुवांशिक स्थिति है जहाँ पे शुरू से ही एम्ब्रियो में ही आपके रंग नहीं बन रहे हैं, तो आप पैदा ही बिना रंग के होते हो।
0: अच्छा, तो तब क्या रीजन है, क्या कारण है कि इस तरह का जो एल्बिनिज्म है उसको लेकर कोई बच्चा पैदा होता है?
1: देखिए, ये ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है, जहाँ पे म्यूटेशन कुछ जीन्स होते हैं जो मेलानिन को रिप्रेजेंट करते हैं आपकी बॉडी में। लाइक हमारे डीएनए में कुछ कोड्स होते हैं जो बताते हैं कि ये वाला कोड ये कलर देगा, या फिर ये वाला कोड ये शारीरिक संरचना देगा। उसी के किसी कोड में अगर डिलीशन हो जाए या म्यूटेशन हो जाए, मतलब बदल जाए, कोडिंग चेंज हो जाए, तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। अगर ये म्यूटेशन माता और पिता दोनों में है, तो बच्चों में अनुवांशिक रूप से एल्बिनिज्म हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि माता और पिता को एल्बिनो होना पड़ेगा।
0: अच्छा।
1: उनमें ये नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव है, मतलब आपको दोनों जीन चाहिए। दो जीन एक जैसे होंगे तब जाके आपका रंग बनना बंद होगा। यदि आपके किसी भी पेरेंट से एक तरफ से ही म्यूटेटेड जीन आया, तो आप सिर्फ कैरियर होंगे, तब आपको वो नहीं होगा। अच्छा। लेकिन हो सकता है कि आपके बच्चों को हो।
0: अच्छा।
1: तो जब दोनों ही पेरेंट्स में जेनेटिक म्यूटेशन होता है, तो 25% चांस है कि आपका वो दोनों जीन मम्मी पापा से आपको मिल गया, तो अब आपको एल्बिनिज्म होगा। 50% चांस है कि आपको एक से ही जीन मिला है, अब वो प्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसको दोनों जोड़े में चाहिए वो जीन। तो सिंगल रहने से वो प्रेजेंट नहीं करता, बट आप कैरियर हो जाते हो। और 25% फिर से चांस होता है कि आपने वो म्यूटेटेड जीन दोनों ही पेरेंट्स से नहीं लिया
0: जी,
1: तो आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो सकते हो। तो ये बहुत बारी हो सकता है कि फैमिली में रन कर रहा हो, बट कभी भी आपके दोनों पेरेंट, मतलब माता और पिता से जीन कभी मिला ही नहीं, तो कभी प्रेजेंट नहीं किया, बट संयोगवश किसी बच्चे में माता और पिता दोनों में वो जीन है और वो प्रेजेंट करता है, तब जाके वो बच्चे को एल्बिनिज्म होता है, जहाँ पे फिर सारे पिगमेंट्स नहीं होते बचपन से या बहुत हल्के होते हैं
0: जी। तो ये छूने से या साथ रहने से या साथ में खाना खाने से इस तरह से भी हो सकता है, या केवल माता पिता के द्वारा ही ये कैरियर है इसका?
1: जी, पहला तो एल्बिनिज्म कोई ऐसा विकार नहीं है, जेनेटिक प्रेजेंटेशन हम बोलते हैं कि जीन्स में थोड़ा चेंज हो गया, तो जैसे नाक कभी लंबी हो जाएगी, कभी छोटी हो जाएगी, बट हाँ, कुछ चीजें जैसे बेसिक हैं। अब मेलानिन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और वो नहीं बन रहा, तो ऑफकोर्स हम इसको थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, आम जनता देखती है, डॉक्टर्स नहीं देखते
0: जी।
1: तो ये कोई बीमारी नहीं है, एक कंडीशन कहेंगे कि एक स्थिति है जहां पे हमको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है।
0: अच्छा।
1: ये छूने से नहीं फैलता, साथ बैठने से नहीं फैलता, कोई जरूरी नहीं है कि भाई बहन को भी होगा ही। सो बीमारी तो नहीं है, बट एक कंडीशन है, एक अवस्था है, एक स्थिति है जहां पे आपके मेलानिन नहीं बन रहा। अब क्योंकि मेलानिन एज अ प्रोटेक्टिंग मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपके आंतरिक जो भी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनको धूप की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने के लिए बहुत जरूरी है, तो ऑफकोर्स ये कुछ कुछ परेशानियां डेवलप कराता है। ये आपके विजन में भी डिफिकल्टी दे सकता है एल्बिनिज्म, जब आपके रेटिना में भी मेलानिन नहीं है। यूजुअली हमारे पिगमेंट्री जितने भी पिगमेंट्स होते हैं वो स्किन में तो होते ही हैं, बाल में होते हैं, हमारे आईज में भी होते हैं, तभी हमारा विजन होता है। कभी कभी हमारे आयरस में भी पिगमेंट्स की कमी होती है, तो अलग अलग रंग के हमको पुतलियां दिखती हैं, इसमें भी बहुत हल्की पुतलियां होती हैं, तो विजन इम्पेयर्ड हो सकता है, और इसका इफेक्ट आपके डे टू डे लाइफ में पड़ता है। ऑफ कोर्स बच्चों को या जो बड़े हो गए हैं, बट उनके छूने, बोलने, बैठने, खाने पीने से नहीं होता, लेकिन इसको आप छू के या साथ में रह के नहीं फैला सकते।
0: तो जिन्हें एल्बिनिज्म की समस्या है उनको किस किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, धूप में ना निकलें या क्या करें वो?
1: जी, क्योंकि मेलानिन हमारा फोटो प्रोटेक्टिव एजेंट है, ये हमको धूप के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के डैमेज से बचाता है, ये हमको फोटो बर्न से भी बचाता है, तो हमारी चमड़ी धूप में जलती नहीं है।
0: जी,
1: हम यूजुअली कहते हैं धूप में गए तो टैन हो गए, तो टैन हो गए मतलब हमारे मेलानोसोम ने और थिक लेयर बनाया और हमारे इंटरनल स्किन को बचा लिया जलने से, बट मेलानिन गाढ़ा हो गया, तो टैनिंग ऐसे प्रिवेंट करती है। अब क्योंकि यहाँ पे मेलानिन है नहीं तो वो प्रिवेंशन वाला पार्ट नहीं होता, तो धूप में स्किन जल्दी जल जा सकती है, जल्दी लाल हो जा सकती है, आपको बहुत ज्यादा जलन महसूस होगी, और इवन धूप में आंखों में, क्योंकि पुतलियों में भी रंग नहीं होता, तो आपको धूप में बहुत ग्लेयरिंग होगी, मतलब आंखें चौंधिया जाएंगी।
0: अच्छा।
1: इवन विजन भी इसमें कम होता है, तो आपको हो सकता है कि बहुत अच्छा नहीं दिखता हो, आपको नजदीक की दिखने की समस्या हो सकती है, दूर की दिखने की समस्या हो सकती है, कभी कभी किसी किसी केस में आंखें स्ट्रैबिस्मस होता है, इवन आंखें घूमती रह सकती हैं या बैलेंस नहीं रहती, मतलब फोकस नहीं कर पाती।
0: जी,
1: तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जहां पे एल्बिनिज्म में आंखें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, तो धूप में उसमें भी उनको बहुत दिक्कत होता है।
0: जी,
1: तो उनको सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि कोशिश करनी चाहिए कि कवर्ड कपड़े पहनने होते हैं, धूप में हमेशा सनस्क्रीन लगा के निकलना होता है, जो भी एक्सपोज पार्ट है, छाता और धूप के बड़े चश्मों का जरूर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा रोशनी शरीर पे पड़ेगी वो उतनी ज्यादा लॉन्ग टर्म में उनको परेशानी देगी।
0: अच्छा।
1: और हाँ, क्योंकि आप जितना फोटो प्रोटेक्शन अगर आप मेलानिन से नहीं कर सकते हो तो आपको फिजिकल प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी।
0: जी जी, डॉक्टर साहब, हमारी बातें चल रही हैं एल्बिनिज्म के ऊपर, और ये कार्यक्रम में हमें और भी ज़्यादा जानकारी आपसे जाननी है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या आप गीत संगीत में भी रुचि रखती हैं?
1: जी।
0: तो बताइए कि आपकी पसंद का कोई गाना जो आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, मुझे वो गाना बहुत पसंद है, मेरा गोरा रंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे, छिप जाऊंगी रात में ही, मुझे पी का संग दे दे।
0: जी, तो जरूर आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के बारे में, और हमारे साथ हैं डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा जी। एल्बिनिज्म वाले जो लोग हैं, भोजन में वो किस तरह का चीजें लें कि जिससे उनके शरीर को ज्यादा तकलीफ ना हो?
1: भोजन में एल्बिनिज्म वाले लोग कोशिश कर सकते हैं कि जितनी ज्यादा विटामिन ए, बीटा कैरोटीन वाली चीजें लेंगे वो उतना धूप से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। बट ऑफ कोर्स, क्योंकि मेलानिन मिसिंग है तो ये उस तरीके से नहीं काम करेगा जैसे नॉर्मल करता है। तो कुछ फल सब्जियां, जैसे कि हरी सब्जियां जितनी भी हो गई वो बीटा कैरोटीन रिच होती हैं। गाजर, पपीता, आम, ये सब बीटा कैरोटीन रिच होते हैं, विटामिन ए रिच होते हैं। इवन अगर जो नॉनवेज खाते हैं वो अंडे खा सकते हैं, खासकर येलो वाला पार्ट जो विटामिन ए रिच होता है। इस तरीके से आप विटामिन ए, बीटा कैरोटीन आप बढ़ा सकते हो अपने बॉडी में
0: जी।
1: और विटामिन सी भी आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ होता है। आप जितना हो सके फल सब्जियों का उपयोग करना, बिकॉज यहाँ पे हमारा फ्री रेडिकल इंजरी बहुत चलेगा स्किन में
0: जी।
1: तो उसको स्कैवेंज करने के लिए या उसको शरीर से हटाने के लिए हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। हमारे सेल्स हमेशा काम करते रहते हैं बॉडी के डैमेजेस को कम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर मिसिंग है तो ऑफकोर्स हमारे सेल्स को थोड़ी जरूरत पड़ेगी ज्यादा सपोर्ट की। तो न्यूट्रिशन एक बहुत ही मेजर फैक्टर होगा। बॉडी को ल्यूब्रिकेट करके भी रखना चाहिए, बिकॉज आप जितना ज्यादा अच्छे से हाइड्रेट, ल्यूब्रिकेट और ऑयलिंग करके रखोगे, सूरज की जो भी रोशनी होती है वो स्किन पे परावर्तित हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो बहुत हद तक अंदर नहीं जाएगी। बट ऑफकोर्स सनस्क्रीन या फिजिकल प्रोटेक्शन ज्यादा हद तक आपको हेल्प करेगा।
0: जी, आपने बताया कि सनस्क्रीन लगा सकते हैं शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, त्वचा को। घरेलू कोई उपाय हैं जिनको हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो हमारे श्रोता हैं वो उसको उपयोग कर सकें?
1: देखिए, घरेलू तो बहुत ज्यादा फोटो प्रोटेक्शन नहीं होता। जैसा मैंने कहा, आप थिक लेयर तेल जब लगाते हो तो वो आपकी चमड़ी को इतना ज्यादा चमकदार करता है कि सूरज की जो भी किरणें शरीर पर आती हैं वो अंदर नहीं घुसती, बहुत हद तक परावर्तित या रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो अब क्या है कि आप ये जो तेल है ये आपके रिफ्लेक्शन में बहुत हेल्प करता है। आपने देखा होगा गांव के लोग

0: स्पोर्ट्स में या जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, रोज़ाना के जो रोज़मर्रा के शारीरिक व्यायाम हैं या खेल हैं, क्या वो कर सकते हैं? उसमें कोई समस्या तो नहीं
1: नहीं
0: आती
1: नहीं
0: उन्हें?
1: फिजिकली दे आर परफेक्ट फिजिकली. देखिए, उनको कोई भी शारीरिक समस्या ऐसी नहीं होती. विजन का दिक्कत तो जरूर होता है, पर
0: जी
1: शरीर में कमजोरी नहीं होती.
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: सभी तरीके के खेल कूद कर सकते हैं, बट हाँ, बशर्ते उनको आउटडोर खेल से परहेज करना चाहिए.
0: जी
1: वो इंडोर खेल करे तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज आउटडोर में आपका सन एक्सपोजर होगा.
0: तो वो कैसे जाने कि मतलब उनको उनके शरीर में जैसे रेडनेस है, तो वो कैसे जाने कि ये किस तरह की परेशानी है या किस कंडीशन में उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
1: जिनको भी एल्बिनिज्म है, यानी रंग नहीं बन रहा, अगर उनको धूप में जाने के बाद स्किन रेड रहती है और बहुत देर तक रेड रहती है या जल रही होती है, तो उनको तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए, स्किन वाले डॉक्टर को मिलना चाहिए, जो
0: जी,
1: चमड़ी के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स
0: त्वचा
1: हैं.
0: रोग विशेषज्ञ हैं
1: बिल्कुल.
0: जो जी
1: और शरीर पे यदि कहीं पे भी नया पिगमेंटेशन या कोई नया घाव बन रहा है जो भर नहीं रहा, या कोई तिल आना शुरू होता है तो भी, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मेरे कुछ पेशेंट्स में मैंने देखा है कि एल्बिनिज्म में 17-18 साल के बाद भी कभी, जब कभी भी रंग नहीं बना और सडन गालों पे रंग बनना नॉर्मल शुरू हो जाता है,
0: जी
1: तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका कहीं पर रंग भी बनना शुरू हो जाता
0: अच्छा, मतलब शरीर में कुछ भागों में कलर आना,
1: है.
0: जो डार्कनेस है
1: बहुत
0: वो शुरू हो
1: रेयर
0: जाती है?
1: है, बट
0: जी
1: मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें रंग बनना वापस शुरू हुआ है, जो कि नॉर्मल पिगमेंटेशन शुरू होती है, बट उनके लिए फिर परेशानी की सबब वो पिगमेंट है,
0: अच्छा
1: बिकॉज अब तक वो कंफर्टेबल थे रंग के बिना, और वो ब्राउन कलर, बिल्कुल डार्क ब्राउन उनको फिर सही गालों पे अच्छा नहीं लगता,
0: जी
1: तो
0: जी
1: फिर उस स्थिति में वो रंग भी हटाना होता है.
0: अच्छा, तो उसका अलग इलाज
1: जी,
0: मतलब?
1: उसके लिए फिर अलग इलाज होता है, कुछ
0: जी
1: दवाइयां होती हैं जो आपके कुछ एरिया में अगर रंग बहुत ज्यादा बन गया है तो कम कर सकते हैं.
0: हाँ
1: ये खास के उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जिनको जनरलाइज्ड विटिलाइगो होता है, सफेद दाग की परेशानी, कि
0: अच्छा
1: पूरे शरीर में सफेद दाग हुआ जा रहा है बट कुछ एरिया है जहां पे रंग बना ही हुआ है, तो अब वो एक जैसा नहीं फील करते, पैची फील करते. तो उस केस में कुछ ऐसे मिलानोटॉक्सिक मेडिसिन होती हैं जिनको लगाने से जो बचा खुचा रंग होता है वो भी हम हटा सकते हैं,
0: जी
1: क्योंकि विटिलाइगो में कभी भी आईज इन्वॉल्व नहीं होते तो वो थोड़ा ठीक रहता है.
0: जी जी
1: एल्बिनिज्म में भी ऐसे केसेस देखे हैं मैंने जहां पे रंग वापस बनने लग जाता है, तो फिर आप उस पिगमेंट्स को भी हटा सकते हो, बट उनका रेगुलर स्किन चेकअप होते रहना जरूरी होता है, क्योंकि आप प्रोन टू एक्जिमास भी होते हो और प्रोन टू कैंसर्स भी होते हो.
0: अच्छा, मतलब ऐसे लोगों को एक्जिमा?
1: देखिए, कोई भी फोटो डैमेज होगा ना तो वो
0: हाँ,
1: एक्जिमा डर्माटाइटिस की तरफ जा सकता है.
0: जी तो डॉक्टर साहब, आगे बातें हमारी और भी होंगी, अभी एक वक्त हो गया है कि आपसे एक गीत की और जो आप सुनना चाहती हैं।
1: जी, लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ चंदन सा बदन चंचल चितवन.
0: जी, सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गीत
1: जी
0: है, तो सुनवाते हैं आपको।

0: तो श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं आज अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस पर और कार्यक्रम चल रहा है डॉक्टर की सलाह। हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं क्या एल्बिनिज्म का कोई परमानेंट इलाज है या इसका कोई क्योर है क्या?
1: जी, अभी तक तो ऐसा नहीं है क्योंकि एक बार ही जेनेटिक म्यूटेशन हो चुका है तो आप उसको ठीक तो नहीं कर सकते
0: जी।
1: अब आप सिर्फ उसको मैनेज कर सकते हो या मेंटेन कर सकते हो।
0: जब भी हमारे शरीर में कोई विकार होता है या हमारे शरीर में किसी तरह की समस्या होती है तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक मिथक होता है, चाहे वो समाज में हो चाहे परिवार में हो। और हर बीमारी में इस तरह होता है कि भाई अगर उसको शरीर के में अगर उसको कलर चेंज हो गया है या स्पॉट्स आ रहे हैं तो उनका कुछ और सोचना हो जाता है। तो इस तरह से जो कॉमन जो लोग इस चीज के बारे में एल्बिनिज्म के बारे में सोचते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जो लोग सोचते हैं?
1: देखिए, क्योंकि आपने जो बोला कि शारीरिक विकार आ जाता है, तो मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारी स्थिति में तो शारीरिक विकार नहीं आता। और सिर्फ एल्बिनिज्म का नहीं बोल रही हूँ, मैं विटिलाइगो में भी बोल रही हूँ
0: जी,
1: ठीक है, सिर्फ रंग नहीं बनता, सफेद दाग की परेशानी में भी रंग नहीं बनता, बट मुझे लगता है कि समाज का मानसिक विकार तो जरूर है।
0: हाँ हाँ,
1: क्योंकि ये जितनी भी परेशानी है ना इंसान के, जिसको है उसके जीवन का, वो उनकी खुद की शरीर की परेशानी नहीं होती,
0: जी जी
1: ये समाज के लोग, परिवार के लोग, दादी नानी चाची फूआ मौसी अड़ोसी पड़ोसी जो आपके सबसे सगे बनते हैं ना, ये उनके मानसिक विकार के कारण परेशान रहते हैं, त्रस्त रहते हैं।
0: जी जी जी
1: वरना न ही कोई सफेद दाग का बीमारी वाला इंसान फंक्शनली या मेंटली वीक होता है और ना ही एल्बिनिज्म वाला इंसान फंक्शनली या मेंटली वीक होता है। विजन ऑफ कोर्स अफेक्टेड रह सकता है बट कोई मानसिक विकार नहीं होता, शारीरिक विकार नहीं होता, आपको सिर्फ देखने में ऐसा लग रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स कुछ एल्बिनिज्म में उनको परेशानी हो रही है विजन में, या किसी किसी में बिल्कुल आंखें बिल्कुल नहीं देख पाती, वो सीवियर कंडीशंस में होता है, तब तो आप ठीक है। बट सोसाइटी के मन का विकार मुझे ज्यादा लगता है, क्योंकि हो सकता है वो इंसान अपनी उस परेशानी से उतना परेशान नहीं हो जितना वो इस बात को सुन के परेशान हो कि अरे तुमको क्या हो गया,
0: जी
1: तुमने दिखाया नहीं, अरे उसको हुआ था तो उसके पूरे शरीर में हो गया, फिर उसको ऐसे हो गया, बिल्कुल नहीं ठीक होता। बिकॉज देखिए, हम लोग प्रतिदिन ऐसे लोगों से मिलते हैं, इनका जो कॉन्फिडेंस लो होता है ना वो अपनी वजह से नहीं होता, ये उनके जो शुभ चिंतक होते हैं ना ये उनकी वजह से होता है, ये जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते अपने बारे में बुरा सोचते हैं ये उनके शुभ चिंतकों की वजह से होता है।
0: जी जी जी
1: तो मुझे जैसा लगता है कि ये शारीरिक विकार ना होके सामाजिक मानसिक विकार है।
0: जी जी जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से समझाया आपने इस चीज को। और सच में अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई समस्या है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो विशेषज्ञ हैं उनके पास लेकर जाएं और उनसे सलाह मशवरा करें, बजाय इसके कि हम अपने दिमाग में कोई मिथक बना लें या उस बच्चे को उस तरह से हम परेशान करें। बहरहाल डॉक्टर साहब, जो एल्बिनिज्म है इसके साथ में एक हेल्दी स्वस्थ और विश्वासपूर्ण अपने ऊपर भरोसा करके इंसान कैसे जी सकता है?
1: देखिए, सबसे पहले आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपने मेरा रंग नहीं देखा, आप मुझसे बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने पढ़ाई करी
0: जी,
1: मैंने अपने करियर में कुछ पाया।
0: तो
1: समाज में ना आपके ज्ञान का, आपके कर्म का महत्व है
0: जी।
1: आप उनकी बातें सुनते हो जिन्होंने कुछ हासिल किया होता है। तो सबसे पहले ये जानने वाली बात है कि इंसान को उसको फॉलो करना चाहिए जो उसका मोटिवेशन बढ़ाए या जो उसको सफलता प्राप्त करने में हेल्प करे। रंग कोई बहुत मायने नहीं रखता,
0: बिल्कुल
1: ठीक है, आप सांवले हो सकते हो, काले हो सकते हो, आपको चेहरे पे झाइयां हो सकती हैं, आपके लहसन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके बाल हो सकते हैं नहीं हो सकते, लेकिन यदि आप अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हो, जो कि हो सकता है कि आप बौद्धिक स्तर पे करो, हो सकता है कि आप शारीरिक स्तर पे करो या आप समाज में हेल्प करो, तो आपका लाइफ कितना फ्रूटफुल है और समाज के प्रति कितना हेल्पफुल है, या आपकी वजह से किसी की जिंदगी में कोई अंतर पड़ रहा है कि नहीं, पॉजिटिव अंतर ऑफ कोर्स
0: जी,
1: आपका जीवन वही सार्थक हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन यदि आप सोचते हो कि मैं गोरा हूं या मैं काला हूं या मेरे को रंग नहीं बन रहा या फिर मेरे पास ये कमी है, लोग क्या कहेंगे, सबके पास सब अच्छा है, किसी के पास कुछ अच्छा नहीं है, सब अपने अपने दुख में हैं, सबके पास एक छोटी सी परेशानी है जो शायद आपको बस नहीं पता है
0: जी।
1: तो आप अपने जो भी स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, आपका जो भी शारीरिक मानसिक या बौद्धिक क्षमता है जिसको आप बढ़ा सकते हो और जिससे फिर आप और बेहतर हो सकते हो, आप उस पे काम करो
0: जी।
1: कोई जरूरी नहीं है कि आपको भीड़ के जैसा दिखना है, तो आप अपनी क्षमता पे काम कर सकते हो और अपना लाइफ में एक मकाम हासिल कर सकते हो जिस भी फील्ड में करो।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और अब चलते चलते हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे जो सुनने वाले हैं, जो श्रोता हैं हमारे, उनको आप एल्बिनिज्म के बारे में क्या संदेश देना चाहती हैं, उन्हें किस तरह से जागरूक करना चाहती हैं?
1: देखिए, एल्बिनिज्म क्योंकि मेलानिन की कमी की वजह से है, तो एक तो मैं एल्बिनिज्म के लोगों को ये कहूंगी कि आप प्लीज धूप से बचिए, कवर्ड कपड़े पहनिए, सनस्क्रीन्स लगाइए, हैट्स पहनिए, चश्मे पहनिए और प्लीज डॉक्टर्स को बीच बीच में मिलते रहिए
0: जी।
1: और मैं नॉर्मल लोगों से ये कहना चाहूंगी कि ये जो हम गोरे और सांवले हो गए, टैन हो गए या झाइयां बन गई, इसके पीछे पड़े रहते हैं, आप देखो कि मेलानिन कितना जरूरी है कि उसका नहीं होना एक बीमारी हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: तो इसमें मतलब सबसे बड़ी सावधानी ये है कि धूप से जितना ज्यादा बच सकते हैं उतना बचकर रहें और अपने शरीर की इस समस्या को लेकर डॉक्टर से जरूर मिलें
1: जी।
0: तो डॉक्टर साहब, आपने आज अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस पर हमारे श्रोताओं को बहुत उम्दा जानकारी दी और इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद प्रवीणा जी।
0: इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह। इसमें अभी आप सुन रहे थे एल्बिनिज्म रोग के कारण लक्षण और उपचार, इस विषय पर त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा से ली गई भेंटवार्ता। भेंट कर रही थी प्रवीणा त्रिपाठी और प्रस्तुति रमा शंकर की थी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बातों बातों में। इस कार्यक्रम में आज सुनिए, मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति विकल्प शुक्ला की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 से शुरू हुई इस यात्रा में देश ने विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल परिवर्तन, सामाजिक कल्याण और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका के कई नए आयाम देखे हैं। श्रोताओं, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 10 जून को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल 4,399 दिन का हो गया है। इस तरह से उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जो 12 वर्ष पूरे किए हैं और इस दौरान जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार श्री शशांक शर्मा जी। शशांक जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
2: विकल्प जी नमस्कार, श्रोताओं को भी नमस्कार।
1: जी शशांक जी, जैसा भी हम परिचय में बता रहे थे कि 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, शशांक जी, इन 12 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धियां आपकी नजर में क्या है?
2: विकल्प जी, मुझे लगता है कि इस 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि एक स्टेबल सरकार,
1: मतलब
2: जो स्थिर सरकार
1: जी,
2: जो विकास के अभी आपने जो आंकड़े गिनाए
1: जी,
2: ये सारा जो कुछ है वो इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक स्थिर सरकार 1990 से लेके 2014 तक
1: जी,
2: जो अस्थिरता थी जिसके कारण भारत को विकास की जिस गति से और दूसरे आयामों में जिस तरह से एक अपने आप को स्थापित करना था
1: जी,
2: उसमें जो हम चुके
1: जी,
2: मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक और महत्वपूर्ण बात
1: जी,
2: अभी आपने पंडित नेहरू से मोदी जी की एक तुलना की,
1: उनके कार्यकाल की
2: हाँ। तो देखिए कितना एक गजब का एक वो है कि 52 में वो निर्वाचित हुए
1: जी,
2: 52 से 64 तक वे रहे
1: जी,
2: और ये 14 से अभी 26 हुआ है
1: जी।
2: इस दौरान
1: जी
2: वो भी बहुत स्थिर सरकार थी
1: जी,
2: और इसलिए उस समय भी जो भारत का एक जो बुनियाद बनना चाहिए था वो शुरू हुआ। लेकिन एक देखिए कि जहां कमियां थी उस कमियों को इस 12 साल की सरकार ने, 1962 का एक बड़ा युद्ध हुआ
1: जी
2: चीन के साथ
1: जी,
2: और उसमें हम बुरी तरह से हारे थे
1: बिल्कुल जी।
2: मोदी जी की सरकार का जो एक बड़ी उपलब्धि के रूप में आप देखेंगे
1: जी,
2: तो जो सामरिक शक्तियां हमारी जो बनी है
1: जी,
2: और अभी लगातार जिस प्रकार से हम अपने विरोधी देशों को जो आतंकवाद फैलाते हैं
1: जी,
2: चाहे वो उरी हो
1: जी,
2: चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो
1: जी,
2: ये जो तैयारी है भारत की, ये जो क्षमता बढ़ी है 12 वर्षों में, हमारा संविधान भी जो है
1: जी,
2: जब उसकी उद्देशिका की बात हम करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व राष्ट्र के रूप में।
1: जी,
2: तो भारत की संप्रभुता किसमें होगी? जब उसकी सामरिक शक्ति इतनी होगी कि हम किसी दूसरे को डराएंगे तो नहीं, लेकिन कोई अगर हमारी ओर आंख उठाकर देखेगा
1: जी
2: तो उसका माकूल उसको जवाब देंगे।
1: बिल्कुल।
2: तो आज भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ा संतोष भारत के नागरिकों को इस बात के लिए होना चाहिए
1: जी
2: कि भारत अपनी सामरिक शक्ति के आधार पर वो किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। अब भारत 1962 की स्थिति से बहुत आगे निकल चुका है।
1: बिल्कुल। एक बात और शशांक जी, जैसे हम पिछले 12 वर्षों में यदि देखते हैं तो केंद्र सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आधार बनाकर अनेक योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए। यदि हम वित्तीय समावेशन की बात करें तो जनधन योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है, और डिजिटल इंडिया की बात करें तो ये सारी चीजें एक बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। लेकिन इससे अलग हटके मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जब 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी तो क्या लगता है उस समय क्या चुनौतियां थी उनके सामने, देश के सामने, और आज जब 12 वर्षों के सफर को देखते हैं तो हमने उन चुनौतियों से कितना पार पाया है?
2: विकल जी, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चुनौती 2014 में देश के समक्ष थी
1: जी
2: वो आर्थिक चुनौती थी
1: जी।
2: जिस प्रकार 2008 में अमेरिका सहित पूरे विश्व में एक जो मंदी का दौर आया था
1: जी,
2: उस मंदी के दौर से निकलने के लिए जिस तरह के भी प्रयास अपने देश में हुए थे
1: जी,
2: वो प्रयास मुझे लगता है कि देश को कई आर्थिक चुनौतियों से घेर लिया था।
1: अच्छा।
2: तो उससे ये हो रहा था कि देश का विकास, देश में अधोसंरचना का विकास
1: जी,
2: देश में विनिर्माण जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है
1: जी,
2: वो हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे थे
1: जी।
2: तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चुनौतियों के समक्ष भारत की जिस तरह से हमारे पड़ोसी देश हमको घेर रहे थे
1: जी,
2: आतंकवाद जिस तरह से मुंह फैलाए हुए था
1: जी,
2: नक्सलवाद अपने चरम पर था 2014 को अगर आप देखेंगे
1: जी,
2: तो ये जो आंतरिक चुनौतियां थी, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां थी, और उसके साथ भारत का विकास, रोजगार एक बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय, भारत की अधोसंरचना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। अपने संविधान की बात मैंने इसके पहले प्रश्न का उत्तर जब आपका दिया
1: जी,
2: तो उसका पहला जो शब्द है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व राष्ट्र बनाना चाहते हैं
1: जी,
2: और हमारे संविधान के उद्देशिका का अंतिम शब्द आता है हम एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना। और भारत के अंदर में कश्मीर में जिस तरह के हालात थे, अभी हम 2-3 दिन पहले देखा है कि हमने मनाली से लद्दाख तक का एक हमारा मार्ग तैयार हुआ है। देखिए ये कितनी बड़ी घटना है कि भारत का ही एक क्षेत्र लद्दाख
1: जी,
2: जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप देखेंगे तो लद्दाख जाने का भारत का सीधा कोई रास्ता नहीं था,
1: वो कोई सुगम रास्ता नहीं,
2: कोई सुगम रास्ता नहीं था
1: जी।
2: तो लद्दाख को भारत के मुख्य भूमि से जोड़ने का एक बहुत बड़ा जो कदम है
1: जी,
2: वो इस सुरंग से संभव हो पाया है।
1: बिल्कुल।
2: तो ये चुनौतियां उस समय मैं देखता हूँ
1: जी। एक बात और है कि जैसे ये 12 सालों की यदि हम बात करें तो गरीब कल्याण जो है वो सरकार की प्राथमिकताओं में प्रमुख रहा है। फिर चाहे हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना की, आयुष्मान भारत और जनधन जैसी जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से करोड़ों लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कि इन 12 वर्षों में चाहे वो युवा हो, महिला वर्ग हो, किसान भाई बहन हो, इनको सशक्त बनाने में केंद्र सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपका क्या मानना है यदि हम विभिन्न वर्गों की बात करें?
2: देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक चुनौती जो बहुत बड़ी थी उस समय
1: जी,
2: वो भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी
1: जी,
2: एक पारदर्शिता बहुत बड़ी चुनौती थी
1: जी।
2: हमारे तो पूर्व के हमारे देश के नेताओं ने कहा कि 1 रुपए भेजते हैं तो 85 पैसा पहुंचता है
1: जी जी जी।
2: उनको ठीक करने के लिए जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी आई
1: जी,
2: उसमें हमने जो जनधन योजना को मोबाइल के साथ कनेक्ट करना
1: जी,
2: और उससे हम 50 लाख करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया हमने इस जनधन योजना के माध्यम से। देखिए इससे लाभ क्या हुआ, 4.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुए
1: जी।
2: दूसरी चीज कि जो हमारे जितने भी बल्ब लगते थे वो पहले के जो पीले रंग के जो बल्ब आते थे वो लगते थे, जो 40 वाट के, 25 वाट के, 60 वाट के
1: जी।
2: जब टेक्नोलॉजी बदल गई तो एलईडी का जब उपयोग होने लगा
1: जी,
2: तो सरकार ने कहा कि भाई आप एलईडी बल्ब का उपयोग करिए
1: जी।
2: 65 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए
1: जी।
2: देखिए विकल्प जी, इनसे फायदा क्या हुआ
1: जी?
2: इनसे फायदा हुआ कि कम से कम 2025 लाख किलोवाट
1: जी,
2: इतनी बिजली की बचत हुई।
1: बिल्कुल,
2: पिछले अगर 12 वर्षों में देखेंगे ना तो बहुत सारे पावर प्लांट इस देश में नहीं लगे
1: जी,
2: क्योंकि उससे प्रदूषण बढ़ता है। तो हमने गैर परंपरागत सोर्स की तरफ गए, हमने ऊर्जा जो है सोलर एनर्जी को आगे बढ़ाया
1: जी,
2: और पूरे देश में उत्तर प्रदेश बिहार सहित ऐसे हजारों लाखों गांव थे जहां पर बिजली की पहुंच नहीं थी, वहां तक हम बिजली की पहुंच तक ले। तो गरीबों को जो चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती थी, सड़क, बिजली, पानी, उज्ज्वला योजना, हर घर में जो एलपीजी का सिलेंडर पहुंचा
1: जी,
2: गरीबों की समस्याओं को निराकरण करने की जो एक सोच और पहल होती है
1: जी,
2: वो हमको इन 12 सालों में दिखाई देता है
1: जी।
2: हर व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि उसका खुद का घर हो
1: जी।
2: तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये केवल एक मकान बनाकर देना नहीं है, मकान बनाकर देने की योजना तो बहुत पहले से चल रही
1: जी।
2: है, लेकिन एक ऐसा घर दे देना केवल एक कमरे का नहीं, मध्यम वर्ग के लोगों को भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना के, आपके पास जमीन होनी चाहिए
1: जी।
2: तो एक जो जमीन से जोड़ने, समाज से जोड़ने और अर्थव्यवस्था जिसे जोड़ने का जो उपक्रम पिछले 12 वर्ष में सरकार ने अलग अलग तरीके से किया है, उसका लाभ हमको इन 12 वर्षों में कहीं ना कहीं दिखाई देता है।
1: एक बात और शशांक जी, अभी आपने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है। यदि हम युवा कल्याण की बात करें, युवा वर्ग के कल्याण की बात करें, तो देखिए एक युवा जब पढ़ाई करता है तो शिक्षा वो हासिल करता है, ज्ञान हासिल करता है, लेकिन उसका उद्देश्य होता है कि वो रोजगार प्राप्त करे। इन 12 वर्षों में हमने देखा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से जो विनिर्माण क्षेत्र है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको मजबूती देने का प्रयास किया गया है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल निर्माण, रक्षा उत्पादन और अन्य क्षेत्रों में निवेश भी आकर्षित किए गए हैं। आपका क्या मानना है?
2: देखिए, अगर आप 12 साल में देखें कि भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी विकल्प जी, कि हमने विनिर्माण क्षेत्र जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है
1: जी,
2: उन क्षेत्रों पर हमने काम नहीं किया जो भारत में उत्पादन ही नहीं होता था
1: जी।
2: 1991 में जब हमने उदारीकरण का जो काम शुरू किया था
1: जी,
2: तो हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स की बात हमने की थी 1992 में
1: जी,
2: लेकिन इसमें बहुत काम नहीं हुआ
1: जी।
2: अब इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल का सबसे बड़ा बाजार आज भारत बना हुआ है
1: जी,
2: लेकिन 2014 में कितने मोबाइल भारत में बनते थे? आज 33 करोड़ मोबाइल केवल बन नहीं रहे हैं भारत से, वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं।
1: सिर्फ मोबाइल ही नहीं,
2: सेमीकंडक्टर
1: यूनिट सब लग रही हैं।
2: तो इसके लिए सोच क्या है
1: जी?
2: आप देखिए, रक्षा उपकरण
1: जी,
2: जो पहले हम केवल इंपोर्ट करते थे
1: जी,
2: आज भारत 23,000 करोड़ रुपए का जो रक्षा उपकरण है
1: जी,
2: वो दुनिया के अनेक देशों को बेच रहा है। तो आप मुझे बताइए, जब हम मोबाइल बना रहे हैं, जब हम रक्षा के उपकरण बना रहे हैं, तो रोजगार तो किसी ना किसी स्तर से मिल रहा है।
1: बिल्कुल,
2: इसके लिए सरकार ने बहुत सारे जहां पर रोजगार जनरेट हो ऐसे पीएलआई एक योजना लाई थी
1: जी।
2: उस पीएलआई योजना में 2,00,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया था
1: जी,
2: और उससे मुझे लगता है कि लगभग 14,00,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला।
1: मतलब श्रोताओं को बता दें कि प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट, उत्पादन आधारित
2: जी, जो ये मेक इन इंडिया है
1: जी,
2: और ये आत्मनिर्भर भारत की जो सारी चीजें हैं, हमने अपने वैक्सीन्स बनाए
1: जी।
2: तो ये भारत के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का एक जो बहुत बड़ा प्रकल्प शुरू हुआ
1: जी,
2: मुझे लगता है कि ये भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन लाने की दिशा में काम करता है, इससे रोजगार भी मिलता है। 12 साल कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता किसी भी देश के लिए
1: जी,
2: लेकिन 12 साल में जिस नैतिकता से, जिस ईमानदारी से जो काम हुए हैं
1: जी,
2: लेकिन अच्छा करने का जो मन से जो प्रयास हुआ है
1: जी,
2: उसका परिणाम दिखने लगा है
1: जी। एक बात और कि प्रधानमंत्री जी ने जब ये 12 वर्ष सरकार को पूरे हुए तो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा कि सरकार ने राष्ट्र प्रथम की भावना से काम किया है, और इन्हीं अथक जो प्रयास है उनका परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है, और विकसित भारत के संकल्प के साथ ये सरकार आगे बढ़ रही है। शशांक जी, विदेश नीति के मोर्चे की यदि हम बात करें तो भारत की जो वैश्विक पहचान है वो इन 12 वर्षों में मजबूत हुई है, आपका क्या विचार है?
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपने जो पहला प्रश्न पूछा उसमें मैं संक्षेप में आपको बता दूं
1: जी
2: कि जो राष्ट्र प्रथम की अवधारणा है
1: जी,
2: वो राष्ट्र प्रथम कैसे? तो संयोग से हमने अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे किए
1: जी।
2: इससे हम जो एक उपनिवेशवादी मानसिकता है
1: जी,
2: उसको छोड़कर स्वदेश की मानसिकता अपने देश के प्रति प्रेम करें, अपने देश के उत्पादों से प्रेम करें, ये भी भावना कहीं ना कहीं आपको पिछले 10-12 वर्षों में ज्यादा प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देती है
1: जी।
2: तो आपका देश जब अपने ऊपर निर्भर होगा तो दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है
1: जी,
2: और उस लोकतंत्र में जब एक सर्वप्रिय
1: जी
2: और बहुमत से बनी हुई सरकार का मुखिया
1: जी
2: और सरकार जब बनती है तो पूरी दुनिया आपकी तरफ सम्मान से देखती है।
1: बिल्कुल।
2: तो ये विदेश नीति में आपको झलकता है
1: जी।
2: प्रधानमंत्री जी आज किसी भी देश में जाते हैं तो ये भारत जैसे एक बड़े लोकतंत्र, एक सफल लोकतंत्र का बहुमत से निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के रूप में एक सम्मान अपने आप बढ़ता है
1: जी।
2: तो भारत के अपने जो ताकत बनेगी
1: जी,
2: चाहे वो सामरिक हो, आर्थिक हो, अधोसंरचना हो, जब ये ताकत बढ़ेगी तो दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करती है। G20 का सफल आयोजन होना हो
1: जी,
2: चाहे G7 हो
1: जी,
2: मुझे लगता है कि भारत ओवरऑल, और वो सब इसलिए हुआ है क्योंकि भारत की जनता ने एक बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार बनाई है
1: जी। शशांक जी, वैसे तो इस 12 वर्षों की जो उपलब्धि भरी यात्रा है उसको 15 मिनट में समेटना जो है वो सागर को गागर में भरने के समान है, लेकिन आपने कमाल भी कर दिखाया और श्रोताओं को बहुत समग्रता के साथ में सारगर्भित रूप में आपने इन 12 वर्षों के सफर को समेटा है। हम आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं
2: जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: आप सुन रहे थे समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में। इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:16:30 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए दंडनायक फिल्म का गाना सोनू निगम और साधना सरगम की आवाज में।

0: कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: आकाशवाणी की जगदलपुर केंद्र से आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। लीजिए अब सुनिए जावेद अख्तर का लिखा गाना, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, संगीत है ए आर रहमान का और इसे हमने लिया है फिल्म जुबैदा से।

लीजिए अब सुनिए स्वानंद किरकिरे का लिखा गाना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में। इस गाने को संगीतबद्ध किया है शांतनु मोइत्रा ने और इसे हमने लिया है फिल्म परिणीता से।

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:30 बजे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काला पत्थर फिल्म के गाने। ये फिल्म के निर्माता और निर्देशक हैं यश चोपड़ा। फिल्म की कहानी लिखी है सलीम जावेद ने और संगीतबद्ध किया है गीतों को राजेश रोशन ने और गीत की रचना की है साहिर लुधियानवी ने। फिल्म के सारे गीत बहुत ही सुरीले और अर्थपूर्ण हैं। श्रोताओं, अक्सर हम मंजिल मंजिल की बात कहते हैं, मंजिल पाने की बात की जाती है, पर जिंदगी को जीने का जो मज़ा है वो मंजिल को पाने में नहीं बल्कि रास्तों से गुजरने में आता है। यही बात बताती है इस फिल्म का ये गीत। आइए सुनते हैं ये गाना, एक रास्ता है जिंदगी।

काला पत्थर फिल्म में उस समय के बड़े कलाकारों ने उसमें अभिनय किया था, जिसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी गुलजार, परवीन बाबी और नीतू सिंह थे। यह कहानी धनबाद के चासनाला खदान में हुई उस हादसे पर आधारित थी, जिसमें सैकड़ों मजदूर खदान के अंदर फंस गए थे और पानी भर जाने से उनकी जान चली गई थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन एक पूर्व मर्चेंट नेवी कैप्टन विजय का किरदार निभाते हैं, जो पिछले जीवन के अपराधबोध से बचने के लिए कोयला खदान में एक आम मजदूर की तरह काम करते हैं। फिल्म में शशि कपूर इंजीनियर की भूमिका में है और जो खदान मालिकों की लापरवाही और सुरक्षा अनदेखी के खिलाफ लड़ते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा एक फरार अपराधी का किरदार निभाते हैं, जो बाद में बाकी मजदूरों के रक्षक बन जाते हैं। फिल्म का संगीत बहुत ही लोकप्रिय है, इसलिए हमने इस कार्यक्रम में इसे चुना भी है। और ये फिल्म काफ़ी लोकप्रिय रही। 1980 के फिल्म फेयर पुरस्कारों की श्रेणी में इसे नामांकित भी किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के साथ सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए राजेश रोशन शामिल थे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

साहिर लुधियानवी के लिखे गीतों को संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने, और आवाजें थी किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और साथियों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला सुरीला गाना।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म से कार्यक्रम में काला पत्थर फिल्म के गाने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, महेंद्र कपूर की आवाज में गाया ये बहुत ही शानदार गाना। इस गीत को भी

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इसमें आज आप सुन रहे थे काला पत्थर फिल्म के गाने। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: हुए हैं, लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बुनकरों और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक डिजाइन, प्रशिक्षण और नए उत्पाद विकास पर जोर दिया। और शिक्षा विभाग में 16 जून से ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने रायपुर में रेशम, खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की समीक्षा की। उन्होंने बुनकरों और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक डिजाइन, प्रशिक्षण और नए उत्पाद विकास पर जोर दिया। स्थानीय उत्पादों को निर्यात एजेंसियों से जोड़कर वैश्विक बाजार तक पहुंच दिलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से आधुनिक डिजाइन तैयार करने की बात कही गई। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और कुटीर उद्योग क्षेत्र के उद्यमियों की वार्षिक आय 5 लाख रुपए तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। एक अन्य कार्यक्रम में श्री सिंह ने विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में विकास के कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने गरीब कल्याण, डिजिटल सेवाओं और आत्मनिर्भर भारत अभियान की उपलब्धियों का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। सम्मेलन को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने भी संबोधित किया। केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री सिंह अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन आज रायपुर में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा वे ऑक्सीजोन गार्डन में पौधरोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में 16 जून से ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य होगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को डिजिटल माध्यम से हाजिरी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों में वीएसके ऐप और कार्यालयों में बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज होगी। ऑनलाइन हाजिरी नहीं मिलने पर जून माह का वेतन रोका जा सकता है। वहीं अब ऑफलाइन छुट्टी आवेदन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में नए शिक्षा सत्र से राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्यगीत सहित विभिन्न गतिविधियां अनिवार्य रूप से कराई जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सुबह की प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और अन्य गतिविधियां होंगी, जबकि मध्यान्ह भोजन के समय भोजन मंत्र और छुट्टी के समय राज्यगीत का सामूहिक वाचन कराया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को इसकी रोजाना निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी रायपुर के नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष और महिला तथा सब जूनियर बालक बालिका चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय कायाकिंग कैनोइंग और छत्तीसगढ़ कायाकिंग एंड कैनोइंग के संयुक्त तत्वावधान में 14 जून तक किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव विक्रम सिंह सिसोदिया ने गुब्बारा छोड़कर प्रतियोगिता का आगाज किया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 24 राज्यों से करीब 800 खिलाड़ी और अधिकारी शामिल हो रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बुनकरों और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक डिजाइन, प्रशिक्षण और नए उत्पाद विकास पर जोर दिया और शिक्षा विभाग में 16 जून से ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आजीचो सगा। इस कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं सेवानिवृत्त शिक्षक और समाज सेवक श्री मनीराम कश्यप। इनसे बातचीत कर रहे हैं सीआर कश्यप।
3: आजीचो सगा ये कार्यक्रम सुनतो सपाय गांवकारी भाई बहन मन के जुहार। तो सगा बोलो ने आमचो गांव पारा हिसाब ने असन होए से कि सगा बोलो ने कई लोग आम संग जुड़न रहे सोत और लोग आमके जसन सगा बोलो ने आमी भगवान आ बोलू आऊ उसनी ची आमचो सगा ये कार्यक्रम ने आमचो स्टूडियो ने आजी अमरला सोत जसन की आमी ये थान ले कई कसन प्रतिष्ठित लोग मंचो जसन जीवन शैली होली उन मंचो परिचय होली ये थाले गोटबात करोन उन मंचो जीवना ने काय काय होली सब गोटबात के आमी सरसराले सुनाते रहूं से जानाते रहूं से असनी ची आजी बले गोटक दादा आमच लगे अमरला सोत। तो ये मंच नाव गांव और ये मंच पूरा परिचय ये मंच ही टोंड ले जानुक लाय हो दे। तो दादा तू के सब ले आगे जुहार ना
4: जुहार ना
3: ए तुम चो नाव और गांव चो नाव सांगों दिया।
4: मोचो नाव मनीराम कश्यप, ग्राम हिरिकपाल, पोस्ट मालगांव, विकासखंड बकाउंड।
3: अच्छा अच्छा। तो दादा खिनिक तुचो बारे में खिनिक आम चो रेडियो सुन तो लोग मन के खिनिक सांगो दे तुचो जीवन परिचय बोलन कहाँ ले तुचो पढ़ाई लिखाई ली मोर होली कौन तान ले काय होली खिनिक सरसरा ले सांगो दे।
4: मोचो

0: शिक्षा प्राइमरी स्कूल पहली पांचवी तक इरिकपाल ने होली गांव ने ची
1: हाँ
0: हाँ बाद ने मिडिल स्कूल छठवीं सातवीं आठवीं माल गांव ने होली
1: अच्छा
0: आओ और नौवीं दसवीं ग्यारहवीं राष्ट्रीय विद्यालय जगदलपुर ने होली
1: अच्छा
0: आओ
1: हाँ
0: उनचो बाद ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल
1: हाँ
0: ये पीजी कॉलेज धर्मपुरा ने
1: अच्छा
0: आओ और फाइनल ने रली उदल दाए फिर मचो नौकरी ऑर्डर रोली
1: अच्छा ये तो फाइनल ने रही
0: पढ़ते रेगुलर ने रही और
1: टीचर नहीं होली
0: टीचर नहीं होली फरवरी ने पोस्टिंग होली
1: हाँ हाँ तो जक पोस्टिंग संग संग बटे ग्रेजुएशन तू कर ली इसकी
0: नहीं ग्रेजुएट कर ली
1: अच्छा
0: हाँ कसबल ग्रेजुएट नहीं रही
1: हाँ हाँ
0: फिर प्राइवेट रूप ने होली
1: अच्छा
0: हाँ और मोचो संजोग तू के सांग से नौकरी चो मटनार ने रही 8 साल
1: अच्छा
0: उनचो बाद ने ये ली बकाउंट कन्यासालन रही 8 साल फोटियावन ने रही 8 साल
1: अच्छा
0: मालगांव ने रही 8 साल और बजावन ने रही 10 साल
1: हाँ
0: मतलब टोटल 42 साल होली
1: अच्छा अच्छा
0: नौकरी
1: नौकरी चो और तक पहला जसन पोस्टिंग तू चो
0: हाँ
1: होली
0: पहला
1: बटे
0: पोस्टिंग मटनार ने रही
1: हाँ हाँ
0: और मटनार ने रलो बेरा उदलदाय बैंक में तो गोटक नहीं रहे संजोग ने उन स्कूल फिर पे सेंटर स्कूल रही
1: अच्छा
0: पूरा तन का जगदलपुर मेन ब्रांच SBL निकरा तो रहे और तन का ने उन उता मास्टर मन के बाट तो रहे
1: अच्छा
0: कई पुराना मास्टर मन के तो याद बल ज्यादा नहीं रहते तो रहे
1: हाँ हाँ
0: फिर उन तन का काम पहुंचा देते तो रहे
1: अच्छा अच्छा
0: पूरा गारेगा मरेटा जयबेल लावा गांव मतलब बकावट ब्लॉक जो आखिरी बॉर्डर मान कोंडा गांव
1: हाँ
0: बस्तर ब्लॉक लोग बॉर्डर ने
1: हाँ हाँ
0: मास्टर मन के हमी तनका चाड़ू जाते रहे
1: अच्छा दक तुचो 42 बरक ले जन तुचो गुरुजी काम तुचो रली तुचो उन जन अनुभव खिनिक सांगो देस कसन रली उदलने कसन लागी जक उसन उन जमाना ने बोलो ने सरकारी नौकरी और जसन गुरुजी काम है बोलो ने दक आगे लोग स्कूल बोले जात का डर ते बोल रहो कि गुरुजी मन मारुआ तो हम बोल ना ना तो सुनते बोल रहे हो कि डर बोल रहते रहे आगे चो और एबे चो खिनिक कहीं असन फरक तो खूबे दखा दिली से बीच पीला मंच और आगे पीला मंच तो उन चुकीन का अनुभव तो चलो किन आल जाल सांगो ने
0: मोचो दृष्टिकोण ने नहीं मोचो नजर ने
1: हाँ।
0: आगे चो कम साधन सीमित साधन ने ज्ञान के लेखा लेखी में अच्छा खेच करते रहला
1: हाँ।
0: अच्छा खेच करते रहला और पढ़तो रहा राम भूख रली उदल दाए भूख रली ज्ञान चो और उन ज्ञान चो भूख कारण ने लोग किंडिक अच्छा दिल दिमाग से पढ़ते लिखते रहे
1: हाँ।
0: आर उदल जाए तो ज्ञान माने खूब प्राइमरी स्कूल बोले बड़े बड़े गांव ने रहे नानी नानी गांव ने नहीं रहे मिडिल स्कूल तो कम से कम 4-5 प्राइमरी स्कूल ने एक टन मिडिल स्कूल होते रहे और उदल जाए तो 5वीं पास और 8वीं पास करतर पने बहुत अच्छा
1: मतलब उधर जाए चो आठवीं पास अरे बेचो ग्रेजुएशन
0: हाँ ग्रेजुएशन
1: उसने ही पर आवर रहता रहे
0: थोड़े टाइट रहे पास उस करतर बोले नकल पकल पने और चीज मन बोले ज्यादा उधर दे लीग नहीं होते रहे उन जमाना में और ज्ञान चो गोटो को मान और गुरु चो मान शिक्षा चो मान और शिक्षक चो मान पने बहुत सम्मानित कायत रहे
1: हाँ तो आई ची
0: हाँ ये बेचो एकदम बिल्कुल भाटा ठीकरा माँ ज्ञान होली और उन चो ज्ञान ने बल दम नहीं है आगे चो हिंदी हो इंग्लिश हो उन पाठ चो नाम मन ने दम रहे उन चो अर्थ ने कहानी अर्थ मन ने और ये बेचो का एकदम सरल माँ लागे से बिना ब्रेक चो गाड़ी माँ लागे से
1: तो आई ची अर्धक आगे चो गुरु और शिष्य बोलो ने उन चो मान सम्मान बोले अच्छा रहे अरे बेर तक पीला मन ये बे जसन मशीन मन बल होली कल मशीन मन बल होली
0: मोबाइल मन
1: होली ये सब तो कहे भी कहे पीला मन घरे बसन बल खिनिक ज्ञान धर सोत मातर आगे चो पढ़ाई हिसाब ने अबे दखलो ने उन संगे बराबरी करोग लाई नहीं होए
0: नहीं होए
1: नहीं
0: लेकिन उन दोनों को दखन बात अगर मान लो तुलनात्मक कर ले नहीं उन चले आज ही परिस्थिति हिसाब ने बेच ज्ञान टीका से लेकिन कैच कर नहीं सक
1: उन तो आए से हाँ तो आए बल्लूबे वे काय होए से जसन मोबाइल टीवी कंप्यूटर मन होली और जसन कोरोना काल बेरा ले ऑनलाइन पढ़ातो बल होली पीला मन कुसन बल आदत होली नानी नानी पीला मन के बोले उमन चो आदत होते जातो के फिर जसन आगे चो पढ़ाई हिसाब ने कैच करतो जन पावर आए सब मोबाइल मन ने व्यस्त रह सो तो उसने ये खिनिक धीरे धीरे ये पीला मन बल खिनिक कैच करोगला नहीं सक
0: नहीं सको और उदल दास का पढ़ाई और एवेच पढ़ाई हिसाब ने आगे क्या कमजोर लेखा मन फेल पन होते रुक लागते रहे सप्लीमेंट्री और फेल कर रुक होते रहे ये भी तो फिर नु आए
1: हाँ
0: मतलब फास्ट करते रहे
1: असल
0: मतलब एक
1: नियम बना
0: नियम बना
1: तक है ना हो
0: तो फास्ट करते रहे
1: हाँ
0: कसन फास्ट करते रहे उन मास्टर ऊपर फिर ये भी आसे कलाकृति
1: अच्छा अच्छा तो देख मनीराम दादा मैं ये बोल देखे से कि तु सामाजिक क्षेत्र बोले कई कसन काम मन बल कर ली सी जुड़न बोल रही लागे साल एवे बल जुड़ ली सी लागे से तो असन कहीं जसन सामाजिक क्षेत्र ने जसन तुझो काम आए जो खिनिक काम छो रेडियो सुन तो लोग बोल सांगो दे
0: मैं 84 ले दरुन बाती
1: हाँ हाँ
0: नौकरी संगे संगे ज्वाइंट फैमिली इरिक पाल हाँ गाँव ने अच्छा। हमें कबड्डी कराते रहू लगभग 84 ले
1: अच्छा
0: 45 किलो भी थी
1: अच्छा अच्छा
0: ये ता ये सांसद मले तेरे महेश का से
1: हाँ हाँ
0: उन बले उता तबला उन बाती कबड्डी खेलू के तो
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ
1: हाँ
0: तो ये मन पना हमी कबड्डी वगैरह खेला लू से
1: अच्छा
0: और एबे तक मैं उताचो संरक्षक है
1: अच्छा ये भी बले
0: ये भी बले संरक्षक है 84 लेवे तक
1: अच्छा तो ये भी बल खेला हुची आज
0: ये भी थोड़े दूसरा दूसरा उन खेल मन गेली
1: खेल मन गेली
0: क्रिकेट
1: आई ची तक आगे चो खेल जसन रहे ये भी चो पीला मन नहीं जानो
0: नहीं जानो
1: अरे बेच पीला मन के बल जसन तू बोल से नहीं जसन कबड्डी खो खो धीरे धीरे बेच पीला भुलकते जा सब का है कि मोबाइल ने खेल तो बीती मनी ली तो आगे चो जसन गाँव पारा ने कूड़ा हूं बाती जो खेलो गीत गाओ एक बोले बेच पीला मन नहीं जाना कबड्डी कभी कभी खेला आज के साथ
0: नहीं कबड्डी अभी थोड़ी कम होली क्रिकेट खिंडिक ज्यादा
1: अच्छा
0: का तो चेपाते की
1: हाँ, हाँ।
0: कबड्डी के
1: अच्छा
0: उन चले से उनके बाद ने मैं आदिवासी विकास परिषद तो बकावड़ शाखा चो अध्यक्ष बन रही
1: अच्छा अच्छा उता कित बरग रही
0: उता 3 साल रहे
1: अच्छा अच्छा
0: 3 साल रहे उता रहे 86 दरुन 92 तक रहे
1: अच्छा
0: बकावंड ब्लॉक ने
1: हाँ हाँ
0: हाँ
1: तो उता दक आदिवासी समाज चो जसन जितलो बोले काम असन होते रहे जसन आमचो रीति नीति जो आमचो समाज चो बोलो बे अपना अपना समाज चो सब चो अलग अलग रहे तो उता जसन तुमन मन अध्यक्ष वैसो सचिव वैसो तुसन उन मन चो काय काम रहे जान आमचो जसन रीति नीति के संरक्षण कर दो काज कहीं असन
0: आमी उन्हीं हिसाब ने जसन दुख करे
1: हाँ हाँ
0: थोड़े पुराना चीज मन कुन खराब चीज मन के चाड़न बारी नया चीज मन के दर तो बिया शादी ने किंडी खर्चा पर्चा कम कर तो
1: हाँ हाँ
0: तो ये सब चीज मन के आमी जागरण हिसाब ने और पुराना आस्था परंपरा मन के किंडी मान तो
1: हाँ
0: ये सब चीज की आमी इकट्ठा करूं असन आदिवासी समाज की आमी जागरण हिसाब ने बनाते रहूं
1: अच्छा ये भी बोले तक ये भी बोल तो सब समाज चो अध्यक्ष बना बोला सो ये भी बोले उसन कहीं बचा तो काची बोल चले से तुम चो बकावंड ब्लॉक
0: चले से
1: हाँ
0: चले से
1: अच्छा
0: मैं सांगे से थोड़ी लाइन से उनके बाद ने मैं रही 89 से 92 तक मध्य प्रदेश शिक्षक शाखा चो मैं अध्यक्ष रही
1: अच्छा
0: निर्वाचित रही
1: निर्वाचित अच्छा निरउदल नाय
0: चुनाव
1: चुनाव
0: चुनाव बोले और मैं चुनून बाती मैं जीतून बाती बन ले
1: अच्छा
0: मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जो
1: अच्छा
0: हो
1: तो उदल नाय जैसा नाम चो छत्तीसगढ़ राज्य निर उदल नाय
0: हाँ उदल नाय उनके बाद ने फिर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जो फिर 3 साल और अध्यक्ष नहीं था
1: अच्छा
0: मनोनीत रहे
1: हाँ हाँ
0: उदल दे मनोनीत रहे
1: अच्छा
0: हाँ 97 तक फिर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ जो मनोनीत रहे
1: अच्छा
0: ब्लॉक चो
1: ब्लॉक चो
0: हो
1: हाँ
0: हाँ और 94 दरुन बाती एबे तक 94 दरुन बाती एबे तक बस्तर जनजागरण नवेक मंडल बस्तर संभाग बोलते गोटो कमेटी आची
1: अच्छा
0: बकावंड ने उनचो मैं महासचिव है
1: अच्छा
0: उता लकेश्वर बघेल विधायक संरक्षक आय रतन कश्यप एसडीओ फॉरेस्ट और बोले खूबे जना से तो उता हम 94 ले पूरा देव दामी और पुराना चीज मन जैसे टूड़का नाच नाट
1: अच्छा
0: उड़िया नाट ये सब चीज हम कॉम्पिटिशन करते रहे और एक दखुन दखुन पास सरकार दख लो
1: हाँ,
0: मध्य प्रदेश सरकार
1: हाँ,
0: उनचो बाद ने फिर सामूहिक शादी
1: हाँ, हाँ,
0: कराते
1: हाँ,
0: रहे तुझो 100, 200, 300, 400, 500 कराते रहे
1: अच्छा
0: गरीब लोग मन के
1: हाँ, हाँ,
0: उन शादी विवाह करा कर पाचे सरकार पन देख लो पाचे उन सरकार बोल करके
1: ये भी फिर उन चलते
0: चले से
1: तो
0: हम स्टार्ट 94 ने बदल दिया हमें कर लो
1: अच्छा
0: बदल दिया अरविंद नेता महेंद्र कर्मा मन काय तो रहे वो तो आसे कम से कम 8-10 विधायक सांसद बना से
1: अच्छा अच्छा
0: स्टार्ट ने और लास्ट ने
1: हाँ, हाँ,
0: हाँ, हाँ। चलते रहे और अभी तक उन जागरण तो मैं महासचिव है और एक ले दरुन चार तक आदिवासी विकास परिषद कर्मचारी अधिकारी प्रभास जिला अध्यक्ष रही।
1: अच्छा
0: हो और उनचो बाद ने फिर चार ले सात तक मैं संभागीय अध्यक्ष रही।
1: अच्छा
0: हो पूरा संभागीय अध्यक्ष रही सातों जिला चो।
1: अच्छा
0: हाँ हो और बयानबे ले एवे तक मैं भतरा समाज चो महासचिव है।
1: अच्छा अच्छा
0: संभाग चो
1: संभाग चो
0: पूरा ये सब चीज काम मना भी अभी करूँ से।
1: अच्छा अच्छा
0: बाकी कोनी कोनी नया नया लेखा मन के जवाबदारी मन दिलू से उन मन कर सो।
1: अच्छा
0: संघीय संभागीय मुख्यालय आठ गुड़ा न्या से
1: ये तुम चो भद्रा समाज भी थी।
0: भद्रा समाज भी थी। एक करोड़ रुपया सरकार दे रहे बिल्डिंग दुई मंजिला बन ली से।
1: अच्छा
0: कहीं कहीं कार्यक्रम जोन बोले आदिवासी और अन्य समाज चो बोले कहीं ट्रेनिंग समाज के जागरण करते कार्यशाला काचामी मिनिमम रेट या असनी बोले लेखा में देसो।
1: अच्छा अच्छा और देखना दादा असन है कि जसन गांव पारा ने ये बिचो लोग जसन ये बिचो हिसाब ने आगे चो जन चलते ये तो जितलो बोलाम चो रीति नीति नियम आसे ये बिचो लोग भुलकते जासो तो तुम जो असन समाज ने कहीं असन संरक्षण का ची कहीं बना लो ना से लोग के कि तुम जो समाज के कि असन नहीं करा बोलते जसन के वे सारिज बिया बोल तक आगे चो लोग का है कि असनी डारा बूटान बोले मांडो आया असन है सब करत टेंट नहीं रहे डीजे बाजा नहीं रहे ये बैंड नहीं रहे उन बाजा मोहरिंच करो तो असन कहीं ये भी तुम चो समाज ने असन संरक्षण गीत जसन बिया चो हर नियम चो गीत मन बोला से तो असन कहीं
0: खाए वे से आमचो लोग बोले आमचो समाज चो और आस पास वो समाज
1: हाँ, हाँ,
0: हाँ, तो बोल सो
1: हाँ,
0: एक आने सुन सो और एक आने नहीं करा दे
1: हाँ,
0: आधुनिक मॉडल के ज्यादा
1: कर सो
0: और पुराना मॉडल के जसन तू बोल ली डारा चापर
1: हाँ,
0: या आगे चो गीत गोविंद आए खोटनी पटनी जन शादी विवाह ने जो ने उपयोग करते रहे उन मन बल वैसे चले से
1: हाँ,
0: लेकिन कम चले से
1: हाँ, हाँ,
0: आधुनिक मॉडल के लोग ज्यादा खेच कर सो
1: तो आई हाँ, हाँ,
0: आमी जहाँ जहाँ जाऊं से पूरा जगह तो जाऊ नहीं हुए जहाँ जाऊं से उतना आम के देखो उन बात की मान का चे या डर का चे उन कर सो और बाकी तंता ने उन जगह दे से चले से चे उनका तो एक डेढ़ लाख सो डीजे और उन काय काय बीती मन
1: हाँ
0: आधुनिक मॉडल चो टेंट पेंट मन
1: हो आई ची
0: बाकी का आम चो लोग ऐसा पन नहीं आर्थिक रूप ने कमजोर हो सकत।
1: हाँ उन तो आए हाँ
0: आर्थिक रूप ने कमजोर हो
1: सकत हो सकत
0: ये के अंदर ले नहीं जान सकत अंदर ले नहीं जान सकत
1: हाँ
0: लेकिन जान तो लोग जान सकत
1: उन तो आए
0: ये दुई जन जान तो लोग आसत 98 लोग आसत विरोध कर चो लोग तो ये दुई जन पने वो कौन दे सकत
1: उन तो आए
0: हो
1: हाँ और दक असन आए जसन आम के आमचो जन जितलो बोले पुरखती बरा जन सियान मन आसत उन मन बोले बुला देवे तो कम आसत जसन कम आसत मात्र अच्छा सियान मन बोला सत उसन मन लगे काय के बेच लोग बसुन उन मन चो गोट के सुनुक बोल नहीं चाहत क्योंकि भी जसन तुम्हें सांगलास की आधुनिक स्थिति परिस्थिति भी जसन खूब सारा बोलो भी पढ़ा लिखा बोल होसत और उन्हीं साहब ने ढल सोत बोले तो उन्हीं का आगे चो जितलो बोल रीति नीति है उनके असनी लोग धीरे धीरे भुलकते बोल जा
0: भुलकते जा सत बहुत सारा आम चो बस्तर संभाग चो जन बोली के दिनों दिन लुप्त होते जाए
1: उन तो आए
0: और उन बोली नहीं फिर जीवन ने के भी मीरो
1: नहीं मीरे
0: उनके नहीं समझ सो
1: नहीं उन तो आए थी लोग का एक बोलो आज दसन की आमी ची बोले जैसे आम चो पीला झीला आसोत तो ये बेचो ही साहब ने मन के बोल जैसा अंग्रेजी माध्यम ने पढ़ाऊ से तो उन मन का है कि शुरू ले अंग्रेजी बोल सोत और हिंदी गोठे आसोत तो आमचो जो मूल बोली है उनके भुलकते जा सोत आमी ची मतलब आमचो जो माँ बाप हूँ से आमी तो आमी उन मन के पीला मन का परवरिश दे से तो उन मन उसनी ढलते जा सोत तो आम केवल खिन सोल विचार कर रुक पड़े साम सियान मन
0: ई गोट ने मई गोट थोड़े दुई बाग करूं मैं तुके सांगे से काय वैसे जहाँ चुपन जोन गांव चो बोले आदिवासी लेखा या लिखी पढ़ लिख सोत और नौकरी करून बाती शहर जगह ने सोत चाहे जगदलपुर रहो चाहे कोंडा गांव जाओ चाहे दंतेवाड़ा जाओ चाहे कौन शहर जगह तो उता उन काय वैसे उन सनातन आदिवासी वैसे आदिवासी ने पन दुई बाग वैसे सोच विचार एक जंगल चो आदिवासी देवदामिक माने से सांस्कृतिक माने से प्योर आदिवासी है प्योर चीज के माने से और पढ़ून लिखन जन सर ऐसा नहीं उन मन दुई प्रकार चो चीज के मान सो नयाकपन રેડિયો
1: સુનસો તો એ કેમ કે બચાતો કાચે તુચો પાટલે કાય આસન સલાહ દે
0: મોચો તો સીધા સીધા મોચો એક પ્રાર્થના કે હર બ્લાક ને એક કમિટી બનો શાસન પ્રશાસન આવ આમચો પ્રાઇવેટ બોડી બાર લેવલ સબ સલાહ સુતુર હોન બ્લાક ને એક ટન કમિટી બનો ઉતા આમચો સ્થાનીય લોગ રોત આર ઉંચો બાદ ને ફિર જિલ્લા ને બનો આર જિલ્લા ભીતી ફિર એક સંભાગ ને બનો તીન બોડી બનો દેખરેખ કરતો કાચે આમચો પરંપરા કે બાચા તો કાચે ખસમ બાર બાર ચો લોક કોની બોલવેલ મોચો વિરોધ નહીં હૈ લેકિન ઉનમન એ આકાશવાણી જન ખુલ્લો એક ભાવના એતા ચો લોક કે આપસ ને સલાહ મસુરા કરુન બાતી આર્થિક સામાજિક રાજનીતિક શૈક્ષણિક સ્તર ઉઠા તો કાચ તો ખોલ્લો બીતી હૈ તો ઉન ભાવના ચો સ્વરૂપ કામ નહીં બોલે ફિર એ આકાશવાણી ઓર આમ ચો ચર્ચા વિચાર કરલો કાય
1: મતલબ નહીં દે તો આય છી
0: મતલબ શોર્ટકટ મચો પ્રાર્થના હૈ બ્લાક ને કમિટી બનો કોની બાટલે પણ બનો ચાહે ઉપર ચો સરકાર ને બનો ચાહે મજલા સરકાર બનો એતા બનો કાચી તાલે પણ બનો લેકિન ઉન કમિટી બ્લાક લેવલ ને બનો આર ઉનકે બિલકુલ સક્રિય કરો આર ઉતા એકદમ જાણકાર લગ રહો
1: ઉન તો આય છે
0: જાણકાર લગ બ્લાક લે અગર ઉઠલો બોલે ને ઉન બાડે પૂરા બ્લાક ઓર જિલ્લા ઓર સંભાગ ને જાઉન બસ બઢિયા કામ કર દે મોચો એ મોચો દ્રષ્ટિકોણ હૈ
1: હા તો દાદા મેં બોલ એ બોલ દખે છે જસ જો પહેલ બોલ બલ્લાસ તુમી બસ્તર જનજાગરણ નવયુક્ત મંડળ છો મહાસચિવ બસ્તર સંભાગ છો તો એ તા કાય કાય કામ હોય જાલે તા બોલ કસન
0: ઉની પુરાના ચીજ મન કે માનતે રહું બોલતે
1: માને
0: પુરાના ચીજ મન કે આમી ની ચાડુ જસન દેવદામી હૈ લોગ મન દેવદામી પણ ભૂલક સોત નહીં નાટકે તો લગભગ ભૂલક સોત
1: ઉન તો આય છી નાટકે લોગ ભૂલકતે બોલ જાસો તા ઓર એ બેચ પીલા મન નાટાય બોલ લરું મન બોલ નહીં જાનો
0: નહીં જાનો નાટક કહાની મા બોલી
1: કહાની અસન
0: હોય કહાની અસન હોય છે
1: આય છી અરે બેચ લોગ બોલ નહીં સીખો
0: લોગ બોલ નહીં સોત આજકાલ શોર્ટકટ તો
1: શોર્ટકટ હોય
0: ચીજ કે ડિસિઝન તત્કાલ હોતો લંબા ચોડા બી તીન
1: તો આવરે છે સંગે સંગે આદિવાસી વિકાસ પરિષદ ચો અધ્યક્ષ બોલો મેતા કાય કાય કામ ધામ હોય જાય
0: બ્લાક ને નહીં બ્લાક લે ફિર પાતે મેં જિલ્લા નહીં લી મને મેન જગદલપુર ને ઉધર લે કામ ધામ પણ બઢિયા હોતે રહે
1: અચ્છા
0: એક ટીમ રહે ટીમ બામના બઢિયા હોતે રહે એબે તો મેં દકે સે મોચો ચાર લોટ બાદ ને નહીં હું આ દુઈ બાગોલી
1: અચ્છા
0: દુઈ બાગોલી એબે મેં સુને સે આદિવાસી પણ દુઈ પાર્ટી ચુના ઓલા સત સમાજ ને
1: અચ્છા
0: રાષ્ટ્રીય પાર્ટી દુઈટના સે એ દુઈ બાગ ઓલા સત એવું બોલે છે એ અસન આય બોલે નુઆ નુઆ અસન આય બોલશે કાલી આરોપ પ્રત્યારોપ લગે છે તો ની કારણે મેં દુનો બાટે બરાબર જે મેં લેખિન મોકે સોય ઠીક નહીં લાગે
1: આવર દકે એ છે પહેલી બલા અમે ખીન ગોટ બાત કરલુ ખેલકૂદ ચો ગોટ કે તો ફેર આર ખીન ગોટે આવું છે બારે જસન કબડ્ડી સંગ સંગે આવર કાય ખેલ
0: મેં કબડ્ડી ચો કમસે કમ મેં નહીં લગભગ 30 સાલ તક મેં કબડ્ડી ખેલ લેશે કુછ મેં પ્લેયર
1: રહ્યો અચ્છા અચ્છા તો દક બોલું ભાઈ આમચી બસ્તર નેચી ખેલીસ કે આ જસ બ્લાક સ્તર
0: મેં બસ્તર લેવલ ખેલી આર ઉડીસા પ્રાંત પણ ખેલે છે આર એ બાઢે રાજીમ બાગબારા એ રાયપુર બાટ પણ ગેલે છે
1: અચ્છા અચ્છા
0: મદન બગલ કે જાની સે કોઈ જાને મદન બગલ સો બાદ ને આમી ઉતારા ના આમી ખેલતો
1: જાસર
0: એ ગોટ મદન બોલતો એતા પૂરા આમ ટાઉન ક્લબ એ પૂરા છત્તીસગઢ લેવલ ચો કબડ્ડી હોતો રહે
1: અચ્છા
0: વિવેકાનંદ સ્કૂલ લગ બોલે એ ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ લગ બોલે ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ લગ બોલે મોચો સંગ છો લેખા લેખી મને ખૂબ જન નહીં આપતી બે
1: અચ્છા અચ્છા
0: હા હા લગભગ 30 સાલ તક ખેલ લેશે
1: અચ્છા હા તો દક એ બેચો જસન લેખા લેખી જસન કબડ્ડી ખેલુક ચાહસો અગર ઉનમન ચો મન નેસન ઇલો નેસન એ બી બોલ કરાવક સકાશે
0: એ બી બોલે કરાવક સકુ લેખી નહીં ઉદલ દે સો સ્ફૂર્ત હોય મતલબ મન સે દિલ સે હોય મને કાય નહીં ફલાના ગાઉ ને કબડ્ડી કરતો રહે તો પુરાવતા કરતો રહે પૂરા લેખા લેખી આદમી મન તન મન ધન સંગે છંદા ઓર મન સે આસે એતા એ બી નહીં એવે લોક કાય ઠગ ઓલા આર ખેલ તો ખુદ તો કાય શાસન બાટલે બોલે આગે કાય નોકરી ચાકરી કાય બોલે ખેલ કૂદ તો લોક એક્સ્ટ્રા ટાઈપ ચો કાય તો પણ મિલે મને એક માન સમાન નોકરી બોલે મિલે એવે બોલે મીરે છે કે ની મીરે મતી તો ની જાને લેકિન ખિલાડી કે એક એક્સ્ટ્રા બોનસ અંક જોન મીરતો રાય ઉન બીતી મન બદલ દાય મીરે આર મીરલો છે આર રમ તકલો છે
1: एबे काय होयसे कि खेल चो क्षेत्रन बोले कई कसन खेल मनासे जो लोग नहीं जानत मातर उनता ने बोल कई कसन पदक मन जीत सोत तो हम के बोल उसन खेल मन के बोल खिन आगे आंतु पड़े कसन जसन एबे काय लोग क्रिकेट ची जान सोत खिन गिने चुने मतलब दो तीन खेल के छाड़न बाती बाकी लोग नहीं जान सोत खेल के
0: ये खेल न मैं बोले हाँ काय होयसे जगदलपुर ने खेलकूद आयोजन होयसे या धर्मपुरा होयसे 20, 25, 30, 40, 50 किलोमीटर चो गांव चो लेखा लिखी मन नहीं जान सो चाहे लौंडीगुड़ा बलाक चो चाहे अमर बस्तर जिला चो चाहे बस्तर संभाग चो काय सर जगह नोए से जे चो माए बाप थोड़े पढ़ा लिखा और जाने तुन परिवार के लोक मन के आम सोता और दखा सो बाकी अशिक्षित लोग बोलते उतर क्या तो प्रतिभा कहाँ आई है सिकुन प्रतिभा उतना ले नहीं है नहीं चाहे कौन ही खेल चो हॉकी चो क्रिकेट चो कबड्डी चो कई बोले जो राष्ट्रीय खेल हो चाहे राज्य स्तरीय खेल हो उन कारण ने कहा उन असली प्रतिभावान के अनु नहीं सक सकते आज इस परिस्थिति ने चाहे कोई नहीं बोले
1: और दादा ये संग संग यार तू काय काम बुदा करवास ना जितलो बोले सांगली जैसे छाड़ून बात
0: है चाड़ून बात खाए था खेती बाड़ी बोल कर खुद मैं ट्रैक्टर उक्टर बल चलाऊ आजकल काम दाम लोग मन मीरत नहीं
1: तो,
0: तो खुद करो नहीं तो फिर छोड़ो
1: बोली
0: से ये भी मैं नौकरी पीरियड नहीं तो करते नहीं जोन बोले लेकिन ये भी रिटायर होली में छो अगस्त ने उदल दाल काय करें से थोड़े मोड़े खेती बाड़ी करून बात जोंदरा फोंदरा या एक्स्ट्रा कहीं कहीं तो गोटक मचो लेका आसे उनके थोड़ी गाइड वाइड करे से उन बल बीएससी कर लो से 18 ने हो रे उन तो पाचे उन ओरल ने कट लो
1: अच्छा अच्छा
0: डीआई ने तो उनके बाद ने फिर भी असनी घरे आसे गोटक नाती आसे उनसे सम खेलून खेलून और ये सब चीज की कायत करून गोटक मैं बस्तर विकास मंच बोलते गोटक कायत बना ले से
1: अच्छा
0: हो माने नानी रूप ले मैं कुछ कुछ जसन ये सहयोग ये भी थी है ये भी दिख दक तो ये नानी रूप ले कर ले से ब्लाक ने एक दो ब्लाक ने बस्तर और बकाउ ने भी करें
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ हाँ तो ये मांग पत्र मन के लिखून
1: ज्ञापन दक तू तो अच्छा सामाजिक कार्य हिसाब ने तू और अच्छा काम कर सी खूब सारा तुझ लगसन काम करते और हुनर बला से जसन था दखे से कि अस्पताल ने सीट मंचो बढ़ोतरी करते तो आई चीज आई कसन बकाउ ने भी जगह अस्पताल
0: खोल ला सो
1: अस्पताल चो अगर थीन गोठ्यालो ने उता चो काय स्थिति आस जाले
0: बिल्कुल दयनीय स्थिति आस
1: असन
0: बकांडोली खरपांडोली मैं बस्तरोली ये तीन मैं तीनों काच बोलने से
1: अच्छा
0: प्रॉपर बस्तर काय अस्पताल कोलन दिला सो लेकिन उन लायक चो ट्रीटमेंट जानकार आदमी मन नहीं आता
1: आई
0: भाई अस्पताल ने जानकार रिफर सेंटर होली से
1: क्या
0: और मैं तुके ये सांगे से भले को कि अच्छा लागो या बुरा लागो आम चो आदिवासी और आदिवासी संघ जो नासत ओबीसी लोग चाहे जनरल लोग ये जो आदिवासी इलाका नासत छोटे छोटे चीज का जो मरुन जासत दुखा नाक दुखा पेड़ दुखा थोड़े थोड़े चीज का जो मरुन जासत बड़ा दुख और दयनीय स्थिति है 80 साल वाली आम चो आजाद होलो लेकिन बहुत सारे चीज ने हमें गुलाम में नहीं आसू
1: तो आए जी
0: बहुत चीज ने गुलाम नहीं आसू इतना बल तो कर तो लो कौन ही नहीं आता बिना बिना माँ बाप चो दूर ही मावली से
1: उन तो
0: गाय बैला मावली
1: और जाकू ता ये तो होली अस्पताल जैसन पढ़ तो लिख तो काजे जैसन स्कूल कॉलेज मना सुन चो बल्लो भी खीने
0: उन चो ताने पने भाई इतनो जब काय तो वैसे करोड़ों अरबों रुपया चो खर्चा हुए से भाई लेखा लेखी काचे हॉस्टल बना उन दिले बढ़िया एक नंबर चो काय होती लोग मन सुकमा कुंटा लेता धमतरी लेता दूसरा जगह लेता एक बात के बने भाई असम चीज के बना जो आकर्षक केंद्र लायक उन मन नहीं है
1: उन तो है
0: स्कूल चुका लोग चांद ने पहुंचला सूरज ने पहुंचला लेकिन कम से कम ये बेसिक बुनियादी समस्या मन के तो करा ये आम मैं जितना जितने बोल मैं 11 टन बिंदु लिख ले सुना ये बेसिक चीज है
1: और जैसे ये बोलो भी सिंचाई चो जो सुविधा का जो लिख लो राशि ये बोलो भी उमट नहीं आएगा ऐसा कहीं
0: एकदम विडम बना विडम बना है
1: अच्छा
0: मैं जो इलाका में मास्टर रहे नहीं उदलदा ये नाला मन 12 महीना पानी बहते रहे पानी बहते रहे पूरा काय तोली वाटर लेवल थले गेली और नाला मन सुके से चाहे बस्तर ब्लॉक छो चाहे बाकाउंटी ब्लॉक छो नाला मन पूरा सुके से कोनी एक बोल तो उठा तो लोग या कहीं कोनी ताले स्टार्ट कर तो लोग कोनी नहीं
1: ये चो जसन तुम चो जोन 11 बिंदु लिखला साथ तुम्ही ये चो काचे बोलो बे काय प्रयास करुक पड़े ना असन के आमचो ये बेचो आमचो असन आमचो ये समाज छो लोक छो लेना लेबे जोन लेका लेके आसो पढ़ा लिखा बोल होला से गांव छो ना शहर छो तो उनमन के काय जागरूक कर पड़े दे कि जन तुम छो जसन 11 बिंदु आसे संग संग और बोले गांव छो बाढ़ती उन्नति का छो
0: काय ये 11 बिंदु को मैं जगह जगह गांव गांव ने जाए से
1: सरपंच
0: मन पन बोलून दखे से हो ची बोलसो कोन कोन पढ़ा लिखा लेखा लिखी नौकरी साकरी सब तो मेरे तो लाइक तो नहीं है सबक तो मुश्किल है आज इस तारीख कॉम्पिटिशन ज्यादा बढ़ ली तो ये सब चीज के कम से कम देखो आम चो लोग के जनपद स्थानीय जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि तो अधिकार के जान तो जरूरी होली आम चो आदिवासी इलाका खूब सारा संविधानिक चीज मन प्राप्त आ से लेकिन उनके कहाँ मिले से
1: तो
0: नहीं मिले से नहीं सरपंच के अधिकार मालूम नहीं है
1: तो है
0: बाकी का है वोट का चीज बन सो खुआन पियोन या कॉम्पिटिशन है जीतून जा सत लेकिन पंचायत ने ये भी कई पंचायत में सरपंच मन बोल सत कि हम सड़क नहीं हुआ हूं मतलब सुना दे से कि कहीं आम चो मूलभूत सुविधा काई काई बीती मन जो पंचायत मत नहीं वही नहीं उन्हों कहीं नहीं एक काम मतलब कहीं चीनी है बोल सो
1: हाँ तो मनी दादा दख इतलो अच्छा तुम चो बोलो बे पद ने रहू रहू पद चो बाद ने जोन तुम्हें रिटायरमेंट होली उन चो बाद ने बोले बे कई कसन सामाजिक क्षेत्र में योगदान दिलास और अच्छा काम बल कर साथ तो ये बे तुम चो एक काम जितलो बोले ये बे चले से कर साथ बोले उन आगे तक जितलो तुम चो हाथ पाए चले से तो करती चरा
0: सर कर
1: हाँ तो अच्छा है दख सामाजिक क्षेत्र ने बोले तुम चो समाज का चो हो ना तुम चो गांव चो हो ना ले गांव पारा
0: समाज
1: चो हो
0: समाज चो नहीं
1: सामाजिक क्षेत्र ने
0: इलाका ने जोन बोले हम चो लेवल चो जोन समाज आ सब का
1: हाँ तो सामाजिक क्षेत्र ने इतलो अच्छा तुम्ही काम कर सात असन करते रहा और इतलो अच्छा सरसराले तुम चो बकाउंड ब्लॉक हो ना बस्तर संभाग चो इतलो अच्छा गुड बात के सरसराले सांगलास ना इसका तुके तुमके खूबे खूबे जुहार
0: नहीं जुहार जुहार जुहार
2: आज जो सगा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भेंट वार्ता सेवानिवृत्त शिक्षक और समाज सेवक श्री मनीराम कश्यप से इनसे बातचीत कर रहे थे सीआर कश्यप आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

0: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
3: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में लीजिए, अब सुनिए राजकिशोर नाग और साथियों के गाए छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में राजकिशोर नाग और साथियों के गाए छत्तीसगढ़ी गीत।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में राज किशोर नाग और साथियों के गाए छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

गुड़दुम कार्यक्रम में आप सुन रहे थे राजकिशोर नाग और साथी से छत्तीसगढ़ी लोकगीत। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। हमारे कार्यक्रम आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

कार्यक्रम एक ही कलाकार में हमारे आज के कलाकार हैं संगीतकार आदेश श्रीवास्तव। श्रोताओं, मुंबई इंडस्ट्री के माने जाने संगीतकार और गायक आदेश श्रीवास्तव का जन्म 4 सितंबर 1966 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। आदेश के पिता रेलवे में सुपरिटेंडेंट और माँ एक कॉलेज में लेक्चरर थीं। बचपन से ही उन्हें संगीत में रुचि थी, जिसकी वजह से उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रखा। उन्हें स्कूल कॉलेज में जब कभी संगीत प्रदर्शन और सीखने का कोई मौका मिलता तो वे झट से वहां पहुंच जाते। आदेश को पहला ब्रेक सन 1993 में रिलीज हुई फिल्म कन्यादान से मिली। सन 1994 में आओ प्यार करे फिल्म में संगीत देकर बतौर संगीतकार उन्होंने कदम रखा। जल्द ही आदेश एक युवा संगीतकार और गायक के तौर पर अपनी पहचान बना ली।

आदेश को असली पहचान वर्ष 2000 में आई फिल्म रिफ्यूजी से मिली। इस फिल्म में संगीत देने के लिए उन्हें कई अवार्ड भी मिले। इसके बाद रहना है तेरे दिल में, कभी खुशी कभी गम, बागवान, राजनीति, चलते चलते, बाबुल जैसी फिल्मों में उनके तैयार किया गया संगीत बेहद लोकप्रिय हुआ।

श्रोताओं, 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दे चुके आदेश कई फिल्मों में अपनी आवाज का जादू भी बिखेर चुके हैं। इन्होंने अपना पहला गीत हिंदी सिनेमा की स्वर कोकिला लता मंगेशकर के साथ गाया था। आदेश ने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन गीत गाए, जिनमें गुस्ताखियां, सोना सोना जैसे गीत शामिल हैं। वर्ष 2010 में फिल्म राजनीति का क्लासिकल सॉन्ग मोरा पिया चार्ट बस्टर में सबसे ऊपर था। उस समय खास करके युवा वर्ग की यह गीत पहली पसंद थी।

बॉलीवुड में अपने गीतों से आदेश श्रीवास्तव ने इतना नाम कमाया कि उन्हें हॉलीवुड से भी कई ऑफर आने लगे। फेमस हॉलीवुड पॉप सिंगर के साथ कई बार इन्होंने स्टेज शेयर भी किया, शकीरा एकॉन जैसी कई हस्तियों के साथ गाने गाए। श्रोताओं, आदेश ने 1994 में आओ प्यार करे फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की और अपना आखिरी म्यूजिक 4 सितंबर 2015 को रिलीज हुई वेलकम बैक के लिए दिया।

श्रोताओं, आदेश श्रीवास्तव की पत्नी विजेता म्यूजिक कंपोजर जोड़ी जतिन ललित की बहन है। विजेता एक एक्ट्रेस भी हैं। इनके अविनतेश और अनिवेश नाम के दो बच्चे हैं। श्रोताओं, आदेश को मल्टीपल माइलोमा कैंसर था। लंबे समय तक उनका इलाज चला। कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद भी वो काम में खुद को बिजी रखते थे, लेकिन अगस्त 2015 में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और 5 सितंबर को इस बीमारी ने आदेश श्रीवास्तव को संगीत प्रेमियों से यकायक छीन लिया। लेकिन उनका संगीत और उनकी शख्सियत श्रोता, दर्शकों और करीबियों के बीच एक याद बनकर हमेशा रहेगा।

0: अभी आप सुन रहे थे एक ही कलाकार कार्यक्रम में संगीतकार आदेश श्रीवास्तव के संगीत से सजे गीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
4: रुक जा बुड्ढू।
5: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
3: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
6: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
7: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
8: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
9: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है गैर फिल्मी गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। श्रोताओं, दिन की उज्ज्वल किरणों के बीच हम सजा रहे हैं गुलदस्ता। यह गुलदस्ता उन फूलों का है जो कभी मुरझाते नहीं, क्योंकि ये फूल सुरों से सजे हैं, शब्दों से महकते हैं और भक्ति से खिलते हैं। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये पहला भजन अनूप जलोटा के स्वर में।

0: के।
1: लेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बुनकरों और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक डिजाइन, प्रशिक्षण और नए उत्पाद विकास पर जोर दिया। शिक्षा विभाग में 16 जून से ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य होगी। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में हल्की वर्षा होने की संभावना जताई, वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने रायपुर में रेशम, खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की समीक्षा की। उन्होंने बुनकरों और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक डिजाइन, प्रशिक्षण और नए उत्पाद विकास पर जोर दिया। स्थानीय उत्पादों को निर्यात एजेंसियों से जोड़कर वैश्विक बाजार तक पहुंच दिलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से आधुनिक डिजाइन तैयार करने की बात कही गई। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और कुटीर उद्योग क्षेत्र के उद्यमियों की वार्षिक आय 5 लाख रुपए तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। एक अन्य कार्यक्रम में श्री सिंह ने विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में विकास के कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने गरीब कल्याण, डिजिटल सेवाओं और आत्मनिर्भर भारत अभियान की उपलब्धियों का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। सम्मेलन को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने भी संबोधित किया। केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री सिंह अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन आज रायपुर में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा वे ऑक्सीजन गार्डन में पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में 16 जून से ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य होगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को डिजिटल माध्यम से हाजिरी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों में वीएसके ऐप और कार्यालयों में बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज होगी। ऑनलाइन हाजिरी नहीं मिलने पर जून माह का वेतन रोका जा सकता है। वहीं अब ऑफलाइन छुट्टी आवेदन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण किया जाएगा। वहीं बोर्ड और स्थानीय परीक्षाओं में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में नए शिक्षा सत्र से राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्यगीत सहित विभिन्न गतिविधियां अनिवार्य रूप से कराई जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सुबह की प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और अन्य गतिविधियां होंगी, जबकि मध्यान्ह भोजन के समय भोजन मंत्र और छुट्टी के समय राज्यगीत का सामूहिक वाचन कराया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को इसकी रोजाना निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में मॉनसून छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के तापमान में लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के भीतर प्रदेश के अधिकांश जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं तेज हवा चलने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। महिला और बाल विकास विभाग, श्रम विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास से लोगों को बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बुनकरों और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक डिजाइन, प्रशिक्षण और नए उत्पाद विकास पर जोर दिया। शिक्षा विभाग में 16 जून से ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य होगी। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में हल्की वर्षा होने की संभावना जताई, वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और
0: मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। आइए सुने फोन इन कार्यक्रम लोकरस। प्रस्तुति संपत राम नाग की, संयोजक है चंद्र ऋषि ठाकुर।

0: फोनिन लोगरस के सुनतो सपा दादा दीदी मन के मच बाटले जुआर हाले सुनु पहिल फोन काचो आए।
1: हेलो कौन इन लोग रहे
2: हैं? जो है वंदे मातरम। जो जो है
1: वंदे मातरम
2: दादा, मैंने रेलवे कॉलोनी जगदलपुर, जगदलपुर बस स्टैंड रमेश भारद्वाज।
1: रमेश भारद्वाज
2: दादा।
1: हाँ भारद्वाज दादा, संगा ना का आजकल काय काय काम करते चले
2: ना? हाल चाल ठीक है। पानी तो गिरा थे दादा। हाँ। पानी बहुत पानी गिरी। आज देखो मानसून तो आ गए है करीब करीब।
1: हाँ।
2: मानसून पहुँच गए है।
1: हाँ पानी तो आजकल मारे से ना जगदलपुर बाट बोले।
2: अब देखो खेती किसानी वाले मतलब भी थोड़ा आराम होगी से।
1: और रमेश दादा संगा आज कौन गीत के सुनते काज फोन लगा ला
2: दादा? हाँ, ए मोर गीत सुने के राशि दे मन के संगवारी मन गाए है दादा। गीत के बोल है ए बाटो जंग से आची चुरी लो रहा।
1: हाँ।
2: चुरी घेरी दे दादा मो के कर सुना के रिस दादा।
1: हल ठीक है रमेश दादा, तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए।

0: हेलो फोन लोगराज।
1: हाँ जी हाँ दादा फोन लोगराज।
0: ज्वार कौन बोला थी? आगे ना संगास नहीं तुम्हें।
1: मैं विवेक कुमार चौधरी बोले से दादा।
0: हाँ कहाँ ले दादा?
1: सरसागुरा जिला बस्तर छत्तीसगढ़ ले बोले दादा।
0: हाँ ओ, दादा सांगा ना कसो ना सच तुम्हें।
1: ये तो दादा खरे आते छुट्टी आए। मैं मास्टर रायगुर सर भाई दादा।
0: कहाँ पढ़ा वाल दादा?
1: फर्स्ट रायगुर आवे दादा। फर्स्ट रायगुर आवे घर आते छुट्टी आए।
0: अच्छा गांव ने ची पढ़ा वास?
1: अरे हाँ गांव ने पढ़ा है। ये 16 तारीख खुलवा दी स्कूल।
0: हाँ
1: हाँ इसका तो भी चला दिया दादा।
0: कौन भी तिकी दादा?
1: ये बनवीर कच्च गाँव में गीत आए बुटे से आंचो। ये भूई ने जन्म धर लू यही भूई ने मर लू माता सिरहा आए झाड़ा सिरहा आए। ये गीत के सुनावा से?
0: हाँ
1: दादा मैं 1 साल ले लगा दादा।
0: नहीं, आगे बढ़ लगाते
1: रहे आगे बढ़ लगाते रहे 1 साल ले भी बाप करू रहे नहीं लगाए।
0: अच्छा ये भी 88 में जन्म दादा?
1: ये भी 88 दादा। लखो हम आदमी का करू अरे कुछ नहीं सके को निहास के धर्म में ही रुखो है ना हल्दी है का करू आप दादा हम कम भाई फरकस रहे ना। कोनी लोक सी कारी होते चंद्र जी सी ठाकुर के बोले जी हार करे थे। और बलवीर कर बूटी से आनाते हूँ तो रिटायर हो के रिटायर हो लो हूँ नहीं साग ले रिकॉर्डिंग सुनो आप मैं सुन के रहूंगा दादा जमा चीज सुनो है। आप मन कथा दासा दादा
0: सब बचा सा दामी
1: हमी बोला सा पानी पाना मारे तो नहीं पड़ा है।
0: अरे ठीक है दादा तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से सुनाते हुए ना।
1: अरे ठीक है दादा जी।

बेरा चो गोट आए बड़ियारा पुरगा बीर माने भूत जन्म लो झाड़ा सिरहाना जुना बेरा चो गोट आए बड़ियारा पुरगा बीर माने भूत जन्म लो झाड़ा सिरहाना अंग्रेज मन उदलता राज करते रला राजा मन बले अंग्रेज चो हाथ चो खेल ना होला अंग्रेज मन उदलता राज करते रला राजा मन बले अंग्रेज चो हाथ

राज दीवाना रे तो ऊपर खूबे जुर्म करला खूबे डंड होली ते वे आदिवासी मन झूला राजा चो दीवाना।

झाड़ा सिरा जन्म धर।

0: हेलो, फोन इन
1: हेलो।
0: लोग रहा।
1: हाँ जोहार दादा। तो
0: हाँ जोहार ना, कौन बोला था दादा?
1: कुमार साहू बोला तो दादा कर्मा चौक लोहारी डीहा जिला समर्थक से।
0: हाँ, और अशोक दादा सांगाना है पानी ओकरा कसन मार ले जाले।
1: पानी तो नहीं गिरा थे दादा, घाम टपक थे। अभी तो मौसम एकदम गर्मी है ना, सप्पा ले सप्पा हो गया अभी तो।
0: हाँ, ए बस्तर बाटे किंडी किंडी कौन कौन बट मारे से ना पानी आजल।
1: हाँ,
0: हाँ
1: बस्तर थोड़ा बहुत हरा भरा हो जाए अगर गर्मी के असर कम पड़ जाए दादा।
0: हाँ ऐता किंडी उतलो गाम तो नहीं आए के
1: हाँ हाँ
0: सकाए पैर बोले उतलो नहीं आए।
1: हाँ
0: हाँ, और अशोक दादा काय काम बुता करवास ना तुम्हें?
1: अभी तो दादा गर्मी में कुछ काम बूता नहीं बना थे दादा, का है गर्मी ज्यादा बाढ़ गए है। अभी खेती किसानी की तैयारी में लगे हवन कि पानी
0: हाँ
1: कब गिरे तो कब खेती किसानी की तैयारी करी चाहिए।
0: हाँ उम्रे उम्रे देवे पानी। अल अशोक दादा सांगा आज कौन गीत सुन तो का फोन लगा ला था ना
1: और
0: दादा
1: आसमान
0: तुम।
1: में सूर्य का है का दादा, कोई
0: चल
1: भी गीत चल ही दादा।
0: हाँ, ठीक है अशोक दादा, तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए।

0: हेलो पोनिन लोगराज।
1: हेलो।
0: हाँ पोनिन लोगराज।
1: हाँ दादा, राम राम दादा।
0: राम राम ना, कौन बोला सर?
1: मैं मोसी राम नाग बोले दादा।
0: खूब बार लगा अंदकलिस का दादा।
1: हाँ संपत दादा, संपत दादा।
0: मस्त दादा, पानी कसन मार ली ना है?
1: खेत काली तो मार ली दादा पानी।
0: हाँ हाँ कितलो मार ली जाले?
1: तो धान उतने ज्यादा बोल लू है।
0: और धान तुम्हें बुनु आज की रोपा लगावा मस्त दादा।
1: आधा का आधा का रोपा है, थोड़ा निकल रहा था।
0: मस्त दादा, सांगा ना आज कौन गीत के संत का फोन लगा ला सास?
1: वही लकेश्वर कुदराम के गोटे का जिंदा दूर बीती गोटो का था। सब अच्छा है दादा।
0: हाँ सब अच्छा है दादा। तो आकाशवाणी जगदलपुर कार्यक्रम का ने सुनवास दादा? तुम्हें रेडियो ने सुनवास की मोबाइल ने सुनवास ना?
1: मैं तो रेडियो आप
0: रेडियो ने बोला तो सुन को आए जानो।
1: हाँ अच्छा आवाज जी भाई।
0: हाँ
1: क्लियर ही भाई।
0: तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से सुनाते हुए ना।
1: हाँ दादा, राम राम दादा।

0: हेलो पंडित लोगराज।
1: हाँ दादा नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोला सर? दादा के ना संगास नहीं ना।
1: हाँ गीदम रो जगदलपुर से, मैं की राजू राव बोल रहा हूँ दादा।
0: राजू दादा कसना सासना तुम्हें?
1: बस ठीक है दादा, चल रहा है दादा, माता की कृपा से चल रहा है, माई दंतेश्वर की कृपा से सब
0: हाँ।
1: काम चल रहा है दादा।
0: हाँ।
1: दादा आप सुनाइए क्या हाल चाल है, बताइए।
0: सब बढ़िया है दादा, तू संग जानो आजकल पानी माल कल कसन लागे जाले आज।
1: हाँ बतर में अब पानी आ गया है दादा, अब गिर रहा है झिमिर झिमिर, तो बस वही है दादा कि आप थोड़ा अच्छा लग रहा है दादा, थोड़ा गर्मी भी कम हुआ है।
0: हाँ किंडी काली पानी मार तो किंडी शीतर लागे।
1: हाँ दादा हाँ।
0: और राजू दादा संगे आज कौन गीत के सुन तो काज फोन लगा ला सास?
1: पानी मारे गला झाई।
0: पानी मारी गला जाई ने।
1: हाँ दादा
0: हल ठीक है दादा, तुम चो मन कर लो गीत के सुनाओ से सुनाते हुए दादा।
1: हाँ दादा जुआर दादा
0: जुआर ना।

0: हेलो पोनिन लोग्रास
1: दादा जोहार ना
0: जोहार ना कौन बोला सा दादा के ना संगास नहीं ना
1: बागेश्वर मंडाई बोलू से ना फरक गांव जिला कोंडा गांव ले
0: आओ बागेश्वर दादा संगा ना आजकल काय काय काम होता चले से
1: काम वो तो तब काय नहीं दादा ले कोई खेती किसानी तो काम चल रहा है।
0: हाँ ये बोनो कौन डाल आज बेना तुम्हें
1: अभी ना जुन दादा।
0: हाँ हाँ पानी कसा ना जाले हाँ
1: पानी तो नहीं रात ही बरा रहे खेदिक खेदिक अभी तो ना जुन काम शेक लिखे ना।
0: हाँ
1: हाँ
0: और बागेश्वर दादा सांगा ना कितलो तक तुम पढ़ला साथ जाल ना।
1: मैं 12वीं पढ़ने से ना 8 बीता है।
0: हाँ अच्छा 800 बीता है।
1: हाँ
0: एवे खेती बाड़ी करुआस की नौकरी बोल करुआस ना।
1: नहीं मैं ड्राइवर ही करे थे ना।
0: अच्छा ड्राइवर काम करुआस
1: हाँ
0: काय बीत के चलाए से जाले।
1: मैं छोटे गाड़ी चलाऊं थे ना बोलेरो।
0: अच्छा बोलेरो।
1: हाँ
0: और काम बुता कसन अच्छा चले से जानो।
1: हाँ अच्छा है चले और रोहन फसल में जाता जो काम वाले करे थे ना
0: हाँ हाँ
1: तो
0: गच्चो
1: यू का जो
0: हाँ
1: हाँ ये रेडियो सुनन सुनन गीत लिखूं
0: हाँ
1: लिखूं से सुनन सुनन तो यूट्यूब का जो काम करे थे ना।
0: हाँ
1: हाँ दादा
0: हाँ पागेश्वर दादा सांगा जी कौन गीत के सुन तो आज फोन लगा ला ससना।
1: योगेश्वर पुजारी तो सुनाऊं जैसे ना डेंग डोंगरी ने मांदर बाजे। हाँ
0: योगेश्वर पुजारी चो।
1: दादा
0: हाँ ठीक है पागेश्वर दादा तुम चमन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए।
1: अलजुआर ना
0: अलजुआर दादा।

0: हेलो पोनिन लोगरस
1: हेलो
0: कौन बोला सर
1: कौन?
0: दादा आगे ना संगा सुनाई ना।
1: मैं जिला सुकमा ले रितेश यादव बोले थे। गांव चुनाव है जांगनपाल।
0: रितेश दादा सांगा ना पानी कसा ना जाले।
1: पानी तो मौसम बनालीस दादा है बाटे
0: अच्छा
1: बादल छाली से।
0: पानी नी मारली से।
1: पानी आज ही तो नहीं मार ली काली लेके नहीं ली पूरा आंधी तूफान ली पूरा शेड मन के गिरा ली।
0: रितेश दादा काय काम करू आसना थे?
1: मैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट में आसे ना दादा।
0: अच्छा हेल्थ डिपार्टमेंट आसीस।
1: हाँ डाटा एंट्री जो काम करूँ मैं।
0: रेडियो की दल दाय सुनवा दादा।
1: रेडियो में टाइम निकाल सुनवाए ना जो सने बाटले जाऊ ड्यूटी बाटले गेलो में और मकवे शो का सुनकर मैं आगे लेवल सुनवाए। मैं चुप पहला कॉल है
0: अच्छा
1: आकाशवाणी में।
0: हसन जल अरिक लागे सुविधा।
1: अच्छा लागू है तुम जो कार्यक्रम मन सुन तो काजे मतलब और मतलब सुबह दरुम बाती जसन नमस्कार जगदल पुरुली बस्तर डायरी पूरा जितो मतलब प्रोग्राम ये भाई तुम जो अच्छा लागू है मके। और मैं अभी नहीं आगे लेवल सुने से
0: लेकिन
1: जब
0: फोन पहली बार कर ली से
1: पह,
0: इसलिए।
1: पहली बार लगली दादा।
0: नहीं
1: ट्राई
0: लगाते
1: करते
0: रहता
1: रहे।
0: रहेगा
1: हाँ
0: दादा।
1: ट्राई करते रहे। अब केव केव का है बुलकुक बलो है तो आज याद दिली उन्हीं का जी ट्राई करूँ देखें भले।
0: ये भी तुम्हें कहाँ सुकमा आसास की जांगट पला सोता है?
1: नहीं सुकमा में दादा
0: अच्छा
1: इतना
0: सुकमा
1: ड्यूटी
0: में।
1: है। हाँ हेल्थ डिपार्टमेंट में सीएच ऑफिस में।
0: रितेश दादा सांग आज कौन गीत के सुनवास ना?
1: मेघनाथ पटनायक जो कोनी बल गीत सुना दिया।
0: मेघनाथ पटनायक।
1: हाँ
0: हाल ठीक है रितेश दादा तुम जो मन कर लो गीत के सुनाओ से ना सुनाते हुए।
1: हाँ धन्यवाद दादा।
0: धन्यवाद।

दादा दीदी मन कार्यक्रम पोन इन लोगराज चो रिकॉर्डिंग रोज लकीमवार दिन के 3 बजे ले दरुन 3:30 बजे तक वैसे एता तुम्ही बोले फोन करून तुम चमन कर लो गीत के सुनुक सकास। फोन कर तो काजे आमचो नंबर आए 2226666 और गोटक नंबर आए 2221600। फोन कर तो पहल जगदलपुर चो STD कोड नंबर आए 0778 2 लगाऊक नी भूल का। एदाय पोन इन लोगरास ले मके दिया विदा जुआर।

0: अभी आपने सुना फोन इन कार्यक्रम लोकरस। प्रस्तुति थी संपत राम नाग की, संयोजक चंद्र ऋषि ठाकुर का था।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन के 1 बजने को है समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है, जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वह अमरीका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आइए सुने कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चौघोट।
3: मेथी गोटक गुणकारी फसल आए, ये भाजी बले आए, आरू मसला बले आए, ये बल बपू काजे खूबे नगद फसल आए। ये फसल चो कमानी उन्नत वाट ने कसन करतो रहे, एक मैं सांगे से ध्यान देहुं सुना। ये चो नंगत किसी मनात LAM सिलेक्शन, पूसा अर्ली बंचिंग, कसूरी सिलेक्शन, प्रभा मेथी नंबर 47 और 14, राजेंद्र क्रांति RMT अदाय जाना बेड़ा तैयार करतो। बुनतोर पहिल 2 ले 3 हार बेड़ा के नंगत जोपुन भाती माटी के बिरबिरा बनाउन देतो रहे। सरासरी हार जोप तो पहिल सरलो गोबर चो खत के हिसाब ने भूई ने मिसाउन देतो रहे, फिर समान चौरस कियारी बनाउन देतो रहे। बीज आरू बुनतो समया 2.5 एकड़ काजे 15 ले धरून 20 किलोग्राम बीज खूबे हो से। बीज के अगर तो काजे 6 ले 8 दिन चो समया लागे से। बुनतो पूरे बीज के राइजोबियम कल्चर ले बीजोपचारित करलो ने खूबे लाभकारी हो से। बीज के आगर करुन पेरुन भाती बुनई करुआत, मांतर धाड़ी हिसाब ले बुनलो ने 15 ले 20 सेंटीमीटर चो लाफी ने आरु 10 सेंटीमीटर बूटा ले बूटा चो लाफी संगाउन बुनई करतो रहे। असन करलो ने मूर बेरा मिजानी करतो काजे सुविधा रहे से। अदा जाना खत भात, बेड़ा के तैयार करतो बेरा 10 ले 15 टन कार्बनिक खत नहाले कंपोस्ट 2.5 एकड़ चो हिसाब ने माटी ने मिसातो रहे। 40 किलोग्राम नत्रजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस आरु 20 किलोग्राम पोटास 2.5 एकड़ चो हिसाब ने उपयोग करतो रहे। एचो मिजानी कसन करतो रहे हुनके जाना। जेबे बूटा 3 ले धरून 4 पाना चो होउन जाए दे, तेबे आगर गोछा बूटा मन के निस्काउन देतो रहे। एचो ले धाड़ी ले धाड़ी बूटा मन चो लाफी 8 ले 10 सेंटीमीटर होउन जाए दे, फिर बूटा नानी रलो समय ने 1 हार मिजानी करतो रहे। फिर बुनलो 45 ले 50 दिन पाछे फिर मिंजानी करतो रहे और लाटा बूटा मन के निकराउन देतो रहे। अदाय जाना सिंचाई चो वाट, बुन तो पहला पानी पलालो ने बीज नंगत अखरे से, पाछे माटी और बतर दखुन 4 ले 6 दिन चो फरक ने सिंचाई करुक लागे से। रोग आरु कीड़ी मन चो वाट के अदाय में सांगे से। गोटोक रोग होय से चूर्णिल आसिता, ए रोग होले पाना ने दोनों पाटे पंडरी गुंड महा दखा देवाय। एके थेबा तो काजे कार्बेंडाजिम 50%, WP 0.1%, नहाले घुलनशील गंधक 0.2% चो छिड़काव रोग होलोने करतो रहे। गोटोक रोग होय से मृदु रोमिल आसिता, ए रोग आगर फरवरी और मार्च महीना ने होय से। ए रोग होलोने पाना मंच उपरे हरदया बाना महा आरु खाले बाटे कापस असन कुमटलो महा दखा देवाय। एके थेबा तो काजे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50%, WP फफूंदनाशी के घोरून छिड़काव करतो रहे। कीड़ी, ए फसल ने तो कीड़ी आगर नी जौटोत, मांतर केबे जेबे पाना खाओ सुंडी आरु फर काना करू कीड़ी जौटून जासोत। उदलदाय ए मन के मरला तो काजे 0.5% मैलाथियान नहाले 0.4% क्विनाल फास के छींचतो रहे। अदा में सांगे से कटई और उपजन, कसूरी सिलेक्शन किसिम ने जोन थाने फूल बेरले फुटवाए हुंचो पहिल हार कटई बुनलोर 25 ले 30 दिन पाछे पाना काजे करतो रहे। फिर 15 ले 25 दिन चो फर ने फूल फुटतो पूरे तक कटई करून साग रांधुक सकूं। और सामान्य मेथी ने 2 ले 3 पाना होलो ने टूटातोर मूर होन जाए से। बुनलोर 20 ले 25 दिन ने भूई ले बूटा के टूटाउन पहिल हार टूटा तो काम किया मैं करूँ सकूँ। पाछे 30 ले 35 दिन ने झिकुन भाती एके निष्काउ पड़े से। बीज काजे मेथी फसल ने फूल फूट तो पूरे 2 हार टूटाउन बूटा के फूल तो फर तो काजे छांडून देतो रहे। पाछे पाकलो ने फसल चो कटाई करतो रहे, काटून बूटा के घाम ने सुखातो रहे, सुखलो पाछे बूटा मन के मिंडून ओसाउन बीज के अलगाउन देतो रहे। एचो उपजन, सामान्य मेथी ने 70 ले धरून 80 कुंटल 2.5 एकड़ चो हिसाब ने मिरे से आरु कसूरी मेथी ने 90 ले धरून 100 कुंटल 2.5 एकड़ चो हिसाब ने मिरे से। दादा दीदी मन असन करून मेथी फसल चो कमानी करून तुम्ही आगर फसल पाऊ सकास आरु आगर फायदा वाले कमाऊ सकास।
2: अभी आप सुन रहे थे कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चुघोट का पुनः प्रसारण। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 हुए हैं और ये समय है उस कार्यक्रम का जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतजार। मैं हूँ आपकी रेडियो साथी प्रीति और आपके लिए लेकर आई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम श्रोता सुमन। स्वीकारिए प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए खोलते हैं आपके पत्रों को और सुनवाते हैं आपकी पसंद के सुरीले फिल्मी गीत। ये पहला गीत है उदित नारायण और अलका याग्ञी के युगल स्वर में। फिल्म का नाम है आ अब लौट चलें। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। फरमाइशी खत है आपकी। कुम्भार गली कोलगांव से हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, राजी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। झारखंड बड़ा बांबू सुपाई साई गांव से हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश तांती, कुमारो निशा, रेशमा, प्रीति और देवन जी। दंतेवाड़ा बचेली से बलराम सेन, इंदू सेन, पुष्पराज सेन, रितिका सेन, पोषण सेन, भुवनेश्वर सेन और समस्त सेन परिवार। बंगला मटिया बालोद से शिवकुमार अंगारे, अंजनी, त्रैंबिका, लीना, अंश और आशुतोष अंगारे। फरडी बालोद छत्तीसगढ़ से हैं मंतुराम यादव, चित्ररेखा यादव, साहिल यादव, शिवम यादव, केशव यादव, माधव यादव, राकेश यादव, रितेश यादव, पोषण यादव, नेत्राम यादव, संतुराम यादव और विजय यादव। बोरखेड़ा उज्जैन से विनोद मूडत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूडत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूडत। मलोट कैंप पंजाब से हैं सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाटी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण गरोवर, रमेश मिगलानी। बुराला धरण मालेगांव से हैं दत्ता घयाल, सुनीता बाई घयाल, सानिका घयाल, गजानन घयाल। गीदम रोड जगदलपुर से टीराजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, तुलसी जया राव, भाग्य लक्ष्मी राव, कीर्ति राव, आनंद राव, मनीषा राव, नानू राव, रोहिणी और राधिका राव।

अलका यागी के स्वर में सुनिए फिल्म राजा हिंदुस्तानी का गीत। समीर के शब्द संयोजन में धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने। चाहत है आपकी। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से हैं राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति, शशिकांता प्रजापति। अनारकली बाजार जगराव से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा पाठक। गणेशपेठ पारथड़ी महाराष्ट्र से हैं अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत और सुवर्णा शिंदे। किकिर मेटा बिलहारी पाटन दुर्ग से हैं संतोष शर्मा, रुकमणी शर्मा। गुरामी डोंडी लोहारा बालोद से पीयूष नेताम, जोहत्रीबाई नेताम और कोमल नेताम। हथकेरा भाटापारा से पंचू यादव, दादू यादव। बावली से हैं कमलेश साहू, हरेंद्र साहू, सुशील बेल, सुप्रिया। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं रामकुमार राउत, अमरिका राउत, गणेश राउत, कार्तिक राउत, युवराज राउत। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव, राधिका, तुषार तामुरिया, डॉली मास्टर अल कबीर, बेबी पूजा तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया। सागर मध्य प्रदेश से हैं चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक एवं तन्वी गौहर। पन्ना मध्य प्रदेश से कौशल किशोर, संगीता, हर्षित और वैभव मट्टू। भाटापारा से हैं सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, धनेश तिवारी, सावन नायक, अंकिता जोशी, वैदेही जोशी। जगदलपुर से हैं पूनम नायडू, नागपुर से हैं कैलाश प्रसाद शर्मा, किरण शर्मा, आशीष कुमार शर्मा और अमृता शर्मा। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत जिसे गाया है अलका याज्ञिक ने।

दिल खो गया। इस फिल्म का शीर्षक गीत सुनिए कुमार सानू और साधना सरगम के युगल स्वर में। गीत रचना है रानी मलिक की और अनुरोध है आपका। कर्ता बेरडी से हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री दोमने, वैष्णवी दोमने, चंचल दोमने, अर्जुन गवेनकर, धीरज। जमशेदपुर से हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन। गोगावा जिला खरगोन से उस्मान खत्री, रिजवान खत्री, अब्दुल गफ्फार खत्री। बमरचाटी डी से हैं गंगा देवी देवांगन, पूनम देवांगन, धनेश्वरी देवांगन, महेश्वरी देवांगन, कुमारी मिल्की देवांगन, बेबी मीनाक्षी निधि देवांगन। कतियापारा जूना बिलासपुर से हैं सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश देवांगन, आशीष देवांगन, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा, आदित्य देवांगन। मध्य प्रदेश खंडवा से हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ललित, मनीषा, शुभम, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मन पटेल। मध्य प्रदेश रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा। छत्तीसगढ़ पलारी से हैं प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा, यशस्वी वर्मा। पाठरकवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, प्राची बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे। फुटानी चौक से हैं ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या, लल्लू पंडित, भाई फटफटिया झा, गुंजन परासर, डब्बू मिश्रा, छोटू मिश्रा और बीके सुरगनिया। तो लीजिए सुनिए ये गीत।

देव कोहली का लिखा गीत सुनिए लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, संगीतकार हैं राम लक्ष्मण। पत्र लिख भेजा है आपने, उत्तर बस्तर कांकेर भान प्रतापपुर से हैं प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया, नैतिक, मुकुल, दिव्यांश, धैर्य, आराध्या। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से हैं नरेन नेताम, कुसुम नेताम। जतुका किशनपुर से हैं आलम दिलकर, शबाना आलम, रिजवान राही, इमरान राजा आलम, शेख फिरोज आलम नाज, प्रवान चांदी नाज। ताजपुर मोरवा से हैं भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंज राज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नित, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, जयंत कुमार बैरागी। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। छत्री तालाब अमरावती से हैं साधना रानी गुप्ता, किशोर गुप्ता। वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से व्रजेंद्र विश्वकर्मा, ताज देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। सतना बिल्डिंग जबलपुर से हैं अनीता तिवारी, अंजना तिवारी, बीना तिवारी, ज्योति और गौरी। हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची करमकर, तन्या करमकर, ये हैं बेडी से। पांगरा शिंदे हिंगोली से हमें पत्र लिख भेजा है सुनील जबडे, टेलर आरडी इंगोले, देव किशन इंगोले और चांदू बलखंडे। नागेश्वर नगर

उदित नारायण और श्रेया घोषाल के युगल स्वर में सुनिए फिल्म गर्व का गीत। शब्बीर अहमद के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है साजिद वाजिद ने। पसंद है आपकी। बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश से हैं संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, शुभम विश्वकर्मा, अरुण विश्वकर्मा। कलाना राजस्थान से है विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार। नाईवाला राजस्थान से है वेद मीढ़ा, अलका मीढ़ा। जाखोद राजस्थान से शंभु दयाल खटक, बिमला देवी खटक। हिरावली फाजिलका पंजाब से है सुभाष गोदरा, बिमला गोदरा। जलालाबाद वेस्ट पंजाब से है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी अरोड़ा। पदमपुर राजस्थान से हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा। साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता। गांधीग्राम गुजरात से हैं प्रवीण सोनी, कलावती सोनी। राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर कांति गुप्ता, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि गुप्ता। ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता, पंखुरी गुप्ता। राजनगर गांधी चौक क्रांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका गुप्ता, माधवी साध्वी, एमके गुप्ता, राजू गुप्ता और विनीता गुप्ता।

फिल्म तलाश का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं अलका यागी की आवाज में। संगीतकार हैं संजीव दर्शन। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी। गोल बाजार बक्सर से हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित। झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश, कमल, सेतपाल, भूमिका, सुशीला दादी। चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से हैं दरिया नामल, अनीता मोटवानी, राजेश, मुकेश मोटवानी। मूर्तिजापुर से हैं हारून शाह, शाजिया बानो। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामनी वर्मा। राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से हैं राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। महामायापारा ग्राम दरचूरा से फिरंता साहू, दुलौरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू, ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा, मोतीलाल साहू। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविन्द्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा, स्वीटी छावड़ा। अनूपपुर से श्रीमती जयमंत्री, कृष्ण केवट, अंजलि केवट, रेणु केवट। सपना संगीता रोड इंदौर से हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से हैं योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, तुषार, किशु, आनंद जोशी, अभय गुजराती और भवानी सिंह बैस। मयूरी परिसर भोपाल से श्रवण सिंह गिनारे, जगदीश सिंह गिनारे, रेखा, विनीता, शेर सिंह गिनारे, संजय पगारे। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक और समस्त बत्ता परिवार। सुभाष वार्ड भाटापारा से हैं एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित, अमीन यादव, युवान, ढावेश यादव। हथबंद नेवदा से सेवक राम यादव, टुपेंद्र कुमार यादव, तुलेंद्र कुमार यादव और देव कुमार यादव। बीसलपुर पीलीभीत से हैं विमल वर्मा, नीतू वर्मा और प्राची वर्मा। हजदा मनपुर से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर

0: 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम श्रोता सुमन का अगला गीत है फिल्म हम तुम पे मरते हैं, इससे जिसे गाया है उदित नारायण ने। गीत रचना आनंद बख्शी की है, संगीत दिया है उत्तम सिंह ने। फरमाइश करता है, तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से हैं बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवान चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट, कटोरा तालाब रायपुर से मोहनलाल देवांगन, कृष्ण कुमार ध्रुव, दामनलाल भारती, झावेंद्र कुमार ध्रुव, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसू तासु, सरगुजा मैनपाट से हैं सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से हैं परवीन डोम, सरुफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से हैं वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से हैं उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन और वंशिका दिवाकर।

तो श्रोताओं, लीजिए आप इस गीत का आनंद और दीजिए मुझे यानी अपनी रेडियो साथी प्रीति को कार्यक्रम श्रोता सुमन से अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: to face uncertainty and unexpected challenges.
1: The Defence Minister also commissioned the first batch of women cadets trained at the National Defence Academy who had joined the Air Force Academy for branch-specific training after passing out from the NDA last year. The ceremony also featured aerial displays by the Sukhoi 30 MKI, the Sarang Helicopter Display Team and the Surya Kiran Aerobatic Team. Senior officials from various wings of the Defence Forces attended the event. India has lodged a strong protest to the United States over U.S. Navy strikes on oil ship in the Gulf that killed three Indian sailors. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and said that such lethal actions against commercial shipping are not justified. The conversation comes days after three Indian crew members were killed in a U.S. strike on the Palau-flagged tanker MT Setebello off the coast of Oman, triggering a sharp response from New Delhi. External Affairs Ministry today said reports of death of Indian sailors in vessel Yaki Freedom are incorrect. The ministry said it has spoken to the master of the vessel Yaki Freedom, which has confirmed that all crew members are safe. The fact-check unit of MEA has urged people to stay alert against such false and baseless claims and posts on social media. The Enforcement Directorate, or ED, today conducted searches at seven premises in Kolkata and nearby areas in connection with the alleged municipality recruitment scam in West Bengal. The searches are being carried out at locations linked to TMC MLA and former Minister Madan Mitra. According to ED, investigations conducted so far have revealed that Madan Mitra allegedly received bribes in the form of cash and gold through middlemen in connection with the appointment of ineligible candidates to various posts in different municipalities, including the Kamarhati municipality. The agency has alleged that Madan Mitra is linked to more than 125 such illegal appointments. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force has met with an accident at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning. Indian Air Force said that a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. Niti Aayog held a meeting with the German delegation aimed at advancing the Indian-Germany Development Partnership in New Delhi. The India-Germany Development Partnership highlighted the complementarity between Germany's technical expertise and development finance capabilities and India's policy ambition and institutional scale. According to the Niti Aayog, the discussions covered key areas of cooperation, including India's net zero transition, renewable energy, circular economy, agricultural transformation, water resource management and others. The government's flagship initiative, Beti Bachao, Beti Padhao, has emerged as a nationwide movement promoting behavioral change and empowering the girl child across the country. Data from the Health Management Information System show that the national sex ratio at birth has improved from 918 in 2014-15 to 929 in 2024-25, reflecting sustained efforts to prevent gender-biased sex selection and promote institutional deliveries. And in sports, in men's cricket, the toss for the first ODI of the three-match series between India and Afghanistan has been delayed due to rain in Dharamshala, Himachal Pradesh. The match was earlier scheduled to begin at 1:30 p.m. Star India batter and former skipper Rohit Sharma is expected to be in action in today's match. The remaining two matches of the series will be played in Lucknow and Chennai. The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. The weather agency also predicted heavy rainfall conditions over parts of Bihar, Kerala, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi leaves on a six-day visit to France and Slovakia, says his visit will focus on boosting economic and cultural linkages with France and building strong bilateral relationship with Slovakia. Prime Minister Modi will also attend G7 summit at Evian in France. President Draupadi Murmu hails cadets at IMA passing out parade in Dehradun, says inclusion of nine women cadets for the first time reflects India's march towards women-led development. India lodges strong protest to the U.S. over U.S. Navy strikes on oil ship in the Gulf, killing three Indian sailors. Indian Air Force AN-32 aircraft meets with an accident at Jorhat Air Force Station in Assam. And in men's cricket, toss for first ODI of three-match series between India and Afghanistan delayed due to rain in Dharamshala. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
4: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
3: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
5: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: आईएमएस स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
7: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल environments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
6: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
8: रडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम्स आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
2: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
9: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेट बेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
2: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
4: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की, कहा पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला

0: नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
6: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
7: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 ले 4 तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
8: इत बदले मत्ता अच्छा मानेड़ा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्ता जानवर किन इलाज तगवें राहत दरकना उम्मीद मिंदे। यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दरकिता। GST तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
9: GST चो दर के कम करलो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से, बल्कि जानवर मन चो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे। GST ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से, नुआ कीमत ले सामान बनातो लोग और घेंतो लोग दोनों के लाभ मिरे दे। ये नुआ GST दर 22 सितंबर 2025 ले लागू होय दे।
1: हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारे मेहमान। आज की अतिथि हैं सलभ कुमार सिन्हा। इनसे भेंट कर रही हैं डॉक्टर मधु जैन। प्रस्तुति है चंद्र ऋषि ठाकुर की। प्रायोजक है त्रिवेदी इंटरप्राइजेस।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं त्रिवेणी एंटरप्राइजेस।
1: बहनों, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। बहनों, समाज में प्रेरक व्यक्तित्व, जिम्मेदार पद पर आसीन, कर्मठ और संतुलित कार्यशैली के लिए जाने जाने वाले व्यक्तित्व की मुलाकात हम आपसे इस कार्यक्रम के जरिए करवाएंगे, ताकि हम जान सकें कि अपने कार्यशैली के माध्यम से वो समाज को किस दृष्टिकोण से देखते हैं और उनके क्या अनुभव हैं। और बहनों, आपको इंतजार होगा, तो आइए जानते हैं आज के हमारे खास मेहमान से। आप हैं पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, जगदलपुर। सिन्हा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर, हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा, आपका जन्म और आपका कार्यस्थल कहाँ रहा है।
2: मैं मूल रूप से छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला हूँ
1: जी।
2: मेरा जन्म जशपुर जिले में एक गाँव में हुआ था, रायकेरा, जो हमारा नेटिव गाँव है। मेरे पिताजी कोल इंडिया में कार्यरत थे, तो कोरबा में काफ़ी लंबे समय तक उनकी पदस्थापना रही और मेरी स्कूली शिक्षा ज़्यादातर कोरबा में ही हुई। उसके पश्चात रायपुर से मैंने इंजीनियरिंग की, RIT रायपुर एक कॉलेज है, वहाँ पर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा ली। और उसके बाद फिर जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मेरी नौकरी लगी बाल्को में, कोरबा में ही बाल्को कंपनी है जहाँ मेरी पहली नौकरी लगी थी एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। और उसके पश्चात 4 साल मैंने नौकरी वहाँ की, फिर इच्छा हुई कि मुझे कुछ और करना चाहिए, करियर में तैयारी करनी चाहिए। UPSC की तैयारी मैंने चालू की, दिल्ली गया मैं अपनी जॉब छोड़ करके, और फिर 2014 बैच में मैं IPS होकर सेलेक्ट हुआ और अब छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।
1: बहुत बढ़िया। आपके कुछ शौक या आप खाली समय में किस तरह से अपने आप को व्यस्त रखना पसंद करते हैं?
2: बचपन से ही मुझे पढ़ने का शौक रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ने का काफ़ी शौक रहा, जो कि आगे चल के मेरी तैयारी में भी मुझे काफ़ी मदद मिली उससे। उसके अलावा संगीत का काफ़ी शौक है, संगीत सुनने का भी, थोड़ा संगीत गुनगुना भी लेता हूँ, गाने गा भी लेता हूँ। तो संगीत का, पढ़ने का, और उसके अलावा खाली समय में मैं मूवीज़ वगैरह भी देखता हूँ, और सभी तरीके के एंटरटेनमेंट से मैं अपने आप को अप टू डेट रखता हूँ।
1: तभी हम समझ पाते हैं कि इसका संतुलन ही आपकी कार्यशैली में झलकता है। आप कितने संतुलित तरीके से काफ़ी सारी कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं, जिसको हम समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ते रहते हैं। आप बता रहे थे कि हम गुनगुनाते भी हैं, तो आपकी पसंद का कोई नगमा या कोई गीत आप हमें सुनाना चाहेंगे?
2: जी, मैं किशोर कुमार जी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ
1: जी,
2: बचपन से ही उनके गाने सुनते रहा हूँ। पिताजी को भी बहुत पसंद थे, तो हमारे घर में ज़्यादातर गाने उनके चलते थे। तो किशोर कुमार जी का एक गाना है, जिंदगी की यही रीत है,

0: बहुत ही खूबसूरत आपने गीत गाया भी और चुना भी। ये गीत अपने आप में एक संदेश देने वाला है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, आपको हारना नहीं है।
1: जी बिल्कुल, लाइफ में यही सीखा है मैंने। जैसे मैं तैयारी कर रहा था, काफ़ी कठिन तैयारी होती है यूपीएससी के एग्ज़ाम की, और उस दौरान जब भी असफलताएं हाथ लगती थी तो एक तरीके से यही संदेश मन में लेकर चलता था कि अभी हारे हैं लेकिन आगे चल के जीत जरूर होगी।
0: जीतेंगे जरूर, बिल्कुल। और यही संतुलन हर जगह काम आता है। आप बस्तर में काफ़ी समय से पदस्थ रहे हैं और आपने काफ़ी सारी गतिविधियां, मतलब आपराधिक भी, नशे से संबंधित भी, और भी बहुत सारे सामाजिक पहलुओं पर भी आपने काम किया है जो हमने जाना है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं की जो संलिप्तता है आपराधिक गतिविधियों में, जब बस्तर जिले में विशेष करके, वो किस तरह की है ज़्यादातर?
1: बस्तर ज़िले की बात की जाए तो क्योंकि हमारा इलाका जो है वो वनों से भरपूर रहा है, आदिवासी बहुल इलाका है, और जो एक आदिवासी संस्कृति सभ्यता है उसमें बहुत वॉयलेंट नहीं होते हैं लोग, तो अपराध की अगर तुलना की जाए प्लेन इलाकों से तो रिलेटिवली कम है यहाँ पे अपराध। लेकिन अब जैसे जैसे इलाका शांति की तरफ बढ़ रहा है, इलाके में गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रियल गतिविधियाँ और अन्य तरह की गतिविधियाँ, तो हम देख रहे हैं कि अपराध भी थोड़े बढ़ रहे हैं। महिलाओं की जहाँ तक बात करें तो अभी तक बहुत सारे ऐसे कोई जघन्य या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में महिलाओं की संलिप्तता नज़र नहीं आई है। कभी कभार आवेश में आकर के कुछ छोटी मोटी घटनाएँ हो गई, मारपीट की घटनाएँ हो गई, उस तरह की घटनाएँ आती रहती हैं। एक जो हमने ट्रेंड देखा था, क्योंकि हमारा बॉर्डरिंग जिला है उड़ीसा से, यहाँ पे गांजे की तस्करी काफ़ी बड़ी मात्रा में होती थी, और कई बार हमने देखा कि एक तरीके से महिलाओं को सामने रखने से क्या होता है, पुलिस स्वाभाविक तौर पे उन पर शंका नहीं करती
0: नहीं करती है,
1: तो उनके माध्यम से इस तरीके की तस्करियाँ होती थी, तो कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं तो उसमें भी लगाम लगी है। लेकिन ओवरऑल महिला संबंधी
0: अपराधी महिलाओं का इस्तेमाल
1: जी
0: करते,
1: अपराधी जो है महिलाओं को कुरियर के तौर पे इस्तेमाल करते थे ताकि पुलिस को जाहिर तौर पे उनके ऊपर शंका ना हो। तो ओवरऑल जो मैं बता रहा था कि महिलाओं की अपराधों में संलिप्तता रिलेटिवली यहाँ पे काफी कम है, और ऑर्गेनाइज क्राइम्स में तो अभी तक बिल्कुल भी हम लोगों को ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है।
0: और आपके पुलिस में तो बहुत सारे विभाग चलते हैं महिलाओं से संबंधित, परिवार परामर्श केंद्र और बहुत सारी चीज़ें, तो आपको ऐसा लगता है कि महिलाओं में, जो यहाँ की महिलाओं में कानूनी जागरूकता का स्तर क्या है और कैसा है?
1: जी, जो पहले मैं बता रहा था, थोड़ा आदिवासी बाहुल इलाका होने की वजह से शिक्षा का स्तर भी थोड़ा सा पहले कम रहा है। अब जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लोगों को उनको जो भी शक्तियां हैं, उनको सरकार से जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके संबंध में जानकारी हो रही है। लोग जानते हैं कि कानून में क्या लिखा है। आज की डेट में इंटरनेट के माध्यम से सारी जानकारी हमारे मोबाइल फोन पे है, तो जो कानून की जानकारी का स्तर है वो धीरे धीरे करके बेहतर हो रहे हैं। शहर में अगर देखें तो शहर में जो महिलाएं हैं वो हमारे पास आ करके अपने हक की बातें करती हैं, अगर चाहे वो डोमेस्टिक डिस्प्यूट हो, चाहे कोई अन्य तरीके की भी कोई कठिनाई हो रही हो, तो उसके बारे में खुलकर आकर बात करते हैं इश्यूज के बारे में, और न्याय की प्रतीक्षा में भी रहती हैं। उनको उम्मीद रहती है कि पुलिस उनके लिए न्याय करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी देखा जा रहा है कि पुलिस के साथ बहुत ज़्यादा इस तरीके की शिकायत नहीं पुलिस के पास आ पा रही है, क्योंकि एक ट्रेडिशनली यहाँ पे प्रैक्टिस रही है कि गांव में ही डिस्प्यूट्स को निपटा लिया जाता है, तो उस वजह से अभी बहुत ज़्यादा पुलिस के सामने लोग नहीं आते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर जैसे जैसे लोगों को जागरूकता आएगी, लोगों के अंदर कानून की जानकारी बढ़ेगी, तो वो अपने हक को लेकर के पुलिस के समक्ष भी आएंगे।
0: आपके यहाँ से कोई विशेष योजना या प्रचार प्रसार कुछ इस तरह से किया जाता है, या ऐसा कोई मंच दिया जाता है जहाँ पर महिलाओं के साथ बैठ के आप संवाद स्थापित करते हों या उन्हें कानून की जानकारी देते हों?
1: जी, महिलाओं के संबंध में काफ़ी संवेदनशील है जो हमारा डिपार्टमेंट है, शुरू से ही कुछ ना कुछ गतिविधियां इसमें होती रही हैं। अभिव्यक्ति करके एक ऐप भी मोबाइल पे हम लोगों ने काफ़ी पहले लॉन्च किया था जिसमें काफ़ी सारी सुविधाएं थी। उसके अलावा हर एक जिले में महिला थाना स्थापित किया गया है, स्पेशली वो महिलाओं के लिए है, जो भी डिस्प्यूट हो, अगर वो ट्रेडिशनल पुलिस थाने में नहीं आना चाहें, ट्रेडिशनल पुलिस थाने में आने में उनको थोड़ी घबराहट हो रही हो, तो वो महिला थाना जा सकते हैं। हर एक थाने में जो नॉर्मल थाने हैं वहाँ पे महिला हेल्प डेस्क अलग से स्थापित किया गया है ताकि महिलाएं खुल करके वहां करके अपनी बात कर सकती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने शक्ति रक्षा टीम का भी गठन किया है, वो जिले में जगह जगह पे घूम घूम करके न सिर्फ लोगों के अंदर जागरूकता लाती है महिला संबंधी अपराधों और महिला संबंधी इश्यूज को लेकर के, बल्कि वो पेट्रोलिंग के माध्यम से महिलाओं में सुरक्षा की भी भावना जगाती है।
0: अच्छा, शक्ति परियोजना
1: रक्षा टीम,
0: शक्ति रक्षा टीम, ये एक तरह का पेट्रोलिंग वाहन है आपके?
1: जी, ये मतलब एक टीम का नाम दे दिया हमने, महिला रक्षा टीम। वो स्कूल कॉलेजेस सार्वजनिक स्थल में पेट्रोलिंग करके अपनी उपस्थिति भी जाहिर करती हैं और साथ साथ जागरूकता के लिए अलग अलग समय पे।
0: इसका कोई विशेष टोल फ्री नंबर वगैरह है या ये सिर्फ?
1: देखिए, महिला संबंधी अपराध से अगर कोई भी महिला पीड़ित है और वो थाने तक नहीं आ पा रही है तो 1091 हेल्पलाइन नंबर है जिसकी मदद से वो हम तक पहुंच सकते हैं। और उसके अलावा हमारे जितने हेल्पलाइंस हैं, कंट्रोल रूम का नंबर है, सभी अधिकारियों के नंबर हैं, वो सारे के सारे पब्लिक हैं। और उसके अलावा जैसा मैंने बताया था अभिव्यक्ति ऐप है, उसमें भी महिलाएं अपनी शिकायतें रख सकती हैं।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, जो ये शक्ति टीम है। कई बार क्या होता है, पुलिस की वाहन यदि कॉलेज कैंपस में खड़ी है तो शरारती तत्वों को ये एहसास हो जाता है कि पुलिस की नज़र में हम हैं, तो स्वतः ही उस पर अंकुश लग जाता है। वर्तमान समय में जो कि अब महिलाएं बहुत मुखर हो चुकी हैं, हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो, हर जगह अपना प्रबंधन भी सिद्ध कर चुकी हैं, तो जाहिर है कि कुछ समस्याएं भी उनके साथ आती होंगी। और आपको क्या लगता है कि वर्तमान समय में महिलाओं को किस तरह से सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि साइबर क्राइम भी बहुत हो रहे हैं, पैसों के फ्रॉड भी बहुत सुनने में आ रहे हैं, तो आपकी तरफ से आप क्या कहेंगे इसमें?
1: अगर साइबर क्राइम के शिकार होते हैं या ऐसा अंदेशा होता है कि कोई साइबर क्राइम में फंसा सकता है तो 1930 हेल्पलाइन नंबर है जिसमें कॉल करके वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
0: बिल्कुल, इसका तो अनुभव मुझे भी है कि 1930 पे कॉल करने के बाद वो लोग जांच के लिए निकटतम आपका थाना है वहां भेजते हैं, फिर वो थाने वाले पूरी जांच करते हैं उसकी।
1: जी बिल्कुल, और उसके साथ साथ साइबर क्राइम के लिए आजकल पोर्टल भी अवेलेबल है। अगर हम गूगल पे जाकर के सीधे साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल टाइप करेंगे तो हमको वो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पे ले जाएंगे और वहाँ पे भी हम अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हम हमेशा यही मानते हैं कि जानकारी बचाव का सबसे अच्छा उपाय है।
0: जी,
1: आपको कानून की जानकारी हो, आपको जो भी राइट्स मिले हुए हैं उनकी जानकारी हो, तो आप अपना बचाव भी कर सकते हैं और अपनी बात बड़े प्लेटफॉर्म पे रख भी सकते हैं। साइबर क्राइम न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि इन जनरल पब्लिक के लिए भी एक बहुत बड़ा न्यूसेंस हो गया है। हर दूसरा कॉल जो आता है उसको हम शक की निगाह से देखते हैं क्योंकि कुछ न कुछ उसमें साइबर फ्रॉड होने की आशंका रहती है।
0: जी।
1: साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहले मैं यही बताऊंगा, जितने भी फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं।
0: जी।
1: मैंने जैसे बताया, अगर आपको जानकारी है तो आपको कोई भी किसी भी तरीके से बरगला नहीं सकता है। डिजिटल अरेस्ट के केस में हमने यही देखा है, लोग वीडियो कॉल करते हैं पुलिस के ड्रेस में बैठ करके, वो उनको वीडियो कॉल के माध्यम से अरेस्ट करना चाहते हैं या कानूनी प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है। पुलिस कभी भी इस तरीके से कॉल नहीं करती
0: नहीं
1: है। उसी तरीके से कई लोग आपको फोन करके कुछ भी अथॉरिटी बता करके आपसे पैसे निकलवाना चाहते हैं। आपके पास नियरेस्ट थाना है, आपको अगर कोई भी इस तरीके की शंका होती है या कोई भी फोन आता है आपके मन में घबराहट होती है, आप अपने नियरेस्ट थाने में जाकर के बात करते हैं। मैंने जो टोल फ्री नंबर बताया उस पर आप बात कर सकते हैं, कंट्रोल रूम के नंबर हैं। तो कभी भी इस तरीके के फोन आए तो बिल्कुल घबराना नहीं है, दो सेकंड सोच करके उसके बाद अगर आपको शंका हो रही है तो आसपास जो भी कानूनी सहायता हो सकती है वो कानूनी सहायता लें और उसके बाद एक्ट करें।
0: जी, ये बिल्कुल सही बात आपने कहा कि जागरूकता और सावधानी दोनों बहुत अहम चीज़ें हैं जो महिलाओं को रखना चाहिए, और महिलाएं कई बार मानसिक रूप से कमज़ोर पड़ जाती हैं या किसी बहकावे में भी आ जाती हैं, तो महिलाएं यदि खुद को मजबूत समझें और उस तरह से अगर अपना कार्य करें जो भी वो करती हैं तो इस तरह की गतिविधियों पर विराम लग सकता है। और जहां तक हम देख पा रहे हैं कि पहले जो पुलिस का डर होता था, पहले तो हम किसी पुलिस वाले को ड्रेस में देख कर ही डर जाते थे। जैसे मैं अपना स्वयं का किस्सा बताती हूँ, एक बार CRPF के जो हैं हमारे परिचितों में से थे, उन्हें कुछ नंबर चाहिए था मेरा, तो फ़ोन नंबर बंद था, तो उन्होंने अपनी टीम को मेरे घर भेज दिया। तो मेरी मम्मी देखी, इतनी सारी पुलिस क्यों आई थी तेरे पास? तो एक डर होता है कि पुलिस का ड्रेस, लेकिन आज वो डर खत्म हुआ है, आज लोग साथ में बैठकर काम कर रहे हैं। आपने कम्युनिटी पुलिसिंग की भी मैंने देखा है, कई सारी चीज़ें आप बांटते हैं गाँव में ताकि गाँव वालों के बीच आपके संवाद स्थापित हो सके। विशेष तौर अपने महिलाओं के लिए तो काफ़ी कुछ बताया, ये तो बात हो गई थी साइबर क्राइम से और मानसिक जागरूकता से, लेकिन विशेष तौर पे आज यदि हम एक ओवरऑल बातें करें कि हर तरह, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो व्यवसाय में भी ये देखा गया है कि महिलाओं के नाम पे व्यापार किया जाता है, महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि भुगतान कहाँ कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दहेज के मामले तो अब थोड़े कम हुए हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं है, घरेलू हिंसा प्रताड़ना के भी केसेस आते हैं। इन सारी चीज़ों में निकल कर एक बात सामने आती है, और आपने कई ऐसी महिलाओं को भी देखा होगा जो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत भी हैं और अपनी बातों को सही तरीके से रखना भी जानती हैं। तो उन दोनों महिलाओं के, जैसे हम बात करते हैं सशक्त महिला की, तो सशक्त महिला की एक जो परिभाषा होती है, एक परिकल्पना होती है, वो किस तरह से आप देखते हैं?
1: जैसा कि आपने कहा कि महिलाएं जागरूक हो रही हैं और हर एक फील्ड में अपना लोहा मनवा रही हैं
0: जी,
1: और हम देखते हैं कि कई सारी महिलाएं प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन क्योंकि पुलिस में हम लोगों को हर रोज ऐसी शिकायतें मिलती हैं जिसमें मैरिटल डिस्प्यूट की बात होती है, मानसिक प्रताड़ना की बात होती है, उसमें मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि महिलाएं जब परिवार की बात आती है तो थोड़ा सा हिचकिचाती हैं अपनी बात को स्ट्रांगली सामने रखने में। शायद उनके मन में ये बात होती है कि परिवार बिखरे ना, अगर थोड़ा मुझे सहना पड़े तो मैं सह लेती हूँ, लेकिन परिवार के ऊपर आँच ना आए। जितने भी हम लोगों ने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें काफ़ी लंबे समय से इस तरीके की घटनाएं या प्रताड़ना होती रही है, उसमें जब भी हम काउंसलिंग करते हैं, बात करते हैं, तो यही बात निकल करके आती है, हमको लगा कि परिवार न टूटे, धीरे धीरे करके शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब चीज़ें ठीक नहीं होती तो फिर उनको सामने आना पड़ता है। तो सशक्त महिलाएं भी जो प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रही हैं, जो समाज में मुखर होकर के आगे आ रही हैं, लेकिन जब परिवार की बात आती है तो थोड़ा सा वो भी इस चीज को लेकर के हिचकिचाती हैं कि निर्णय नहीं ले पाती कि एकदम से हमको अथॉरिटीज के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और जहां तक रही

0: बस्तर जिला बल्कि पूरे राज्य की सभी महिलाओं को, अपनी माताओं बहनों को यही कहूंगा कि आप अपने आप को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले जानकारी रखें, हर चीज की कानूनन उसकी जानकारी होनी चाहिए। एक बार जब जानकारी आपके पास रहेगी तो उससे बड़ी शक्ति और कोई नहीं होती है। और अपने आप को कभी भी अकेला न समझें, छत्तीसगढ़ पुलिस हमेशा आपके साथ है, कानून हमेशा आपके साथ है। कभी भी किसी भी तरीके की समस्या अगर आपको लगती है, कोई भी शंका मन में होती है, हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर्स आपके पास में हैं, हमारे कंट्रोल रूम के नंबर आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल सकते हैं, या नियरेस्ट थाना भी आपके पास है, आप वहां जाकर के अपनी परेशानियों को कभी भी खुल करके बता सकती हैं। हम सब आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, नक्सली उन्मूलन का काफ़ी आपने, अभी हम सुन रहे हैं कि लगभग 31 मार्च तक सारे नक्सली समर्पण कर देंगी, इस तरह से बहुत सारी महिला नक्सली भी समर्पण में शामिल हुई हैं, उनके व्यवस्थापन या पुनर्वास के लिए आपने क्या सोचा है, और अभी उनमें और पहले की लाइफ में अभी क्या फ़र्क पाते हैं आप, जब से उन्होंने समर्पण किया है?
0: जो भी पूर्व में माओवादी हुआ करते थे, जिन्होंने आत्मसमर्पण करके पुनर्वास का रास्ता अपनाया है, उनके लिए शासन की बड़ी स्पष्ट नीति है। उस स्पष्ट नीति में उनके ऊपर जो भी इनाम था उसकी रकम भी उनके पास में जाती है, साथ ही साथ उनको आगे जीवन यापन के लिए सुविधाएं देने का भी उसमें प्रयोजन है। तो जितनी भी महिला साथी हैं उनके लिए स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था, जो भी उनकी इच्छा हो उसके अनुसार स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था शासन ने कराई हुई है, उनको स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। अलग अलग फील्ड्स में, हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर है, छोटे मोटे घरेलू कार्य हैं, सिलाई कढ़ाई है, उनका उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। और एक बार जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेती हैं, उस दौरान उनको स्टाइपेंड भी मिलता है। एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अगर उनको कोई रोजगार का साधन नहीं मिल रहा है तो रोजगार का साधन उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार पहल करती है,
1: प्रतिबद्ध है
0: जी। और अभी हम देखेंगे कि बस्तर में एक बस्तर पंडुम नाम का, पंडुम नाम का कैफे एक हम लोगों ने
1: खोला
0: कुछ
1: है।
0: कुछ दिन पहले उद्घाटन किया था। उसमें जितने भी काम कर रहे हैं हमारे साथी, ज्यादातर उसमें से वही हैं जो पहले माओवाद का दामन थामे हुए थे और अब पुनर्वास कर चुके हैं या नक्सल विक्टिम है, उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो इस तरीके से जहां भी हमको उचित लगता है कि उनकी सेवाएं ली जा सकती है, वहां हम उनको इंगेज करते हैं।
1: समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने का भी पूरा प्रयास आप लोगों की तरफ से किया जा रहा
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल, ये पूरा प्रयास समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का ही चल रहा है
1: जी। अंत में मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी, आपके पसंद का कोई गीत जो आप सुनना चाहें, हम आकाशवाणी के माध्यम से लोगों के साथ इस गीत को सुनेंगे।
0: जो गाना भी मैंने आपको सुनाया था, अगर वो सुना दें ताकि लोगों को भी ये संदेश मिल सके कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: हमेशा अपने गोल की तरफ, उद्देश्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए और सफलता हमेशा मिलती है।

0: आपने अपना समय दिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपके बहुमूल्य विचार हमने सुने और हम उम्मीद करेंगे आगे भी आपसे इसी तरह मुलाकात होते रहे। और आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारे मेहमान। आज के अतिथि थे पुलिस अधीक्षक श्री सलभ कुमार सिन्हा। इनसे भेंट कर रही थी डॉक्टर मधु जैन। प्रस्तुति थी चंद्र ऋषि ठाकुर की। प्रायोजक था त्रिवेणी इंटरप्राइजेस का।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा संपन्न होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन सकते हैं। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए लेते हैं आज की सभा के शेष और कल की सभा के कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। पहले सुनिए आज की सभा के कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 9:30 पर कार्यक्रम साहित्य भारती का प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। देशभक्ति गीत आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर बाद शाम 5:05 पर। शाम 5:10 पर युवा दोस्त आनंद लेंगे कार्यक्रम युववाणी का। मधुराम और साथियों के गाय हल्बी भजन गीत सुनिएगा शाम 6:35 पर। शाम 7 बजे होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर। प्रायोजित कार्यक्रम फोन इन किसानवाड़ी का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:30 पर। रात्रि 8 बजे बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम जूनियोजर में सुनिएगा दिलीप कुमार पांडे और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। पीला मन काजे गोठ रात्रि 8:30 बजे, इसमें आप सुनेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, प्रस्तुति होगी मिनेश कुमार पानीग्राही की। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आमचो रान आमचो जीवना हल्बी बोली में। वन संसाधन समिति और पर्यटन स्थल नेतानार के बारे में फूल सिंह नाग से बातचीत करेंगे बलबीर सिंह कच्छ। और आदिवासी लोकवाद्य धुनों पर आधारित कार्यक्रम पार सुनेगा रात्रि 10 बजे, इसमें आप सुनेंगे डुमा देवपाड़ और डोकरा देवपाड़, वादक कलाकार हैं पाकलू और साथी। अब लीजिए सुनिए हमारे कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल शाम 6:30 पर इंग्लैंड के एस्बेस्टन बर्मिंघम में भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जाने वाले महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का आंखों देखा हाल आप सुन सकते हैं मीडियम वेव पर मैच की समाप्ति तक। एफएम बैंड और मोबाइल ऐप पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे। कल रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल सुबह 7:10 पर विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी और कल शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से किया जाएगा। कल सुबह 7:30 पर हल्बी समाचार बुलेटिन और शाम 6:30 पर गोंडी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से किया जाएगा। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुबह 6:05 पर। सुबह 6:20 पर प्रकाश किरण। श्री रामचरित मानस का गायन आप सुनेंगे सुबह 6:25 पर। सुबह 6:35 पर और दोपहर 1:05 पर कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट का प्रसारण किया जाएगा। हुलहुली ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 6:40 पर, इसमें आप सुनेंगे भीमा देव पाड़, वादक कलाकार होंगे गणपति कड़ियारी और साथी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 7:45 पर। लोकमंजरी इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विभिन्न बोलियों में लोकगीत सुबह 8:30 पर। सुबह 9 बजे बच्चों का कार्यक्रम बालबाड़ी का प्रसारण किया जाएगा एक ही फिल्म से सुबह 9:30 पर, इसमें आप सुनेंगे फिल्म पीके के गीत। सुबह 10 बजे कार्यक्रम गुलशन में आप सुनेंगे नए तराने। फोन इन चाहत फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर, प्रस्तुति होगी सुखिंदु मलिक की, संयोजक होंगे चंद्र ऋषि ठाकुर। सुबह 11:30 पर कार्यक्रम गुड़दुम में आप सुनेंगे गेलमणि देवी और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम रसूसा लोक गाथा में आप सुनेंगे आंधा राजा, गायिका होंगी सुबरी बाई। दोपहर 12:30 पर शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण किया जाएगा। श्रोता सुमन फरमाइशी फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 1:10 पर।
कला और कलाकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दोपहर 3 से। कल शाम 5 हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी। देशभक्ति गीत आप सुनेंगे शाम 5:05 पर। शाम 5:10 पर होगा युवाओं का कार्यक्रम युवाणी। बस्तर के स्वर हमारा दैनिक कार्यक्रम होगा शाम 7:00। शाम 7:21 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चुगांव। बालीफूल लोकगीतों के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे जयदेव विश्वकर्मा और साथियों के गाय हल्बी लोकगीत रात्रि 8:00। रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम पीला मन काजे गोठ में आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद के बारे में। प्रस्तुति होगी बलराम कश्यप की। पुरानी फिल्मों से ये कार्यक्रम होगा रात्रि 9:15 पर। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे बस्तर के लोकगीतों का कार्यक्रम दौना में जलधर और साथियों के गाए हल्बी गीत। ये तो थी हमारी आज की और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। अब लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत समूह स्वर में।

देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में। न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप पर आप हमें आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से सुन रहे हैं। समय है शाम की 5:10 का। पेश है युवा दोस्तों का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी को ये पल मुबारक। स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। रेडियो साथी प्रशांत दास,
1: मैं हूँ रेखा नायक। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा अभिवादन।
0: नमस्कार।
1: तो प्रशांत,
0: हाँ?
1: आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आज के युवाओं के लिए बेहद प्रासंगिक है, कम उम्र में आर्थिक स्वतंत्रता का महत्व।
0: रेखा,

0: पहले के समय में आर्थिक स्वतंत्रता की बात अक्सर नौकरी लगने या पढ़ाई पूरी होने के बाद शुरू होती थी, लेकिन आज के युवा स्कूल और कॉलेज के दिनों में ही कमाई के नए रास्ते तलाश रहे हैं।
1: बिल्कुल, डिजिटल युग ने अवसरों के कई नए द्वार खोले हैं। ऑनलाइन ट्यूशन, ग्राफिक डिजाइनिंग और कई अन्य माध्यमों से युवा अपनी प्रतिभा को आय के स्रोत में बदल रहे हैं।
0: बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ केवल पैसे कमाना नहीं है। इसका अर्थ है अपने खर्चों और निर्णयों के लिए दूसरों पर पूरी तरह निर्भर न रहना।
1: सही कहा। जब कोई युवा अपनी छोटी छोटी जरूरतों को स्वयं पूरा करने लगता है तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, उसे पैसों की कीमत समझ आती है और वह जिम्मेदार बनता है।
0: मुझे लगता है कि आर्थिक स्वतंत्रता युवाओं को केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है। जब व्यक्ति अपने मेहनत की कमाई देखता है तो उसके भीतर आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है।
1: बिल्कुल, और यही आत्मसम्मान आगे चलकर उसे व्यक्तित्व को निखारता है। वह अपने करियर और जीवन से जुड़े फैसले अधिक आत्मविश्वास के साथ ले पाता है।
0: बिल्कुल, कम उम्र में कमाई शुरू करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पढ़ाई को नजरअंदाज कर दिया जाए।
1: बिल्कुल, शिक्षा और आर्थिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है। पढ़ाई भविष्य की नींव है, जबकि कमाई अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करती है।
0: वैसे रेखा, आजकल सोशल मीडिया पर भी कई युवा उद्यमी देखने को मिलते हैं जिन्होंने छोटी उम्र में ही अपने स्टार्टअप शुरू किए और सफलता प्राप्त की।
1: बिल्कुल, लेकिन हमें सफलता की चमक के पीछे छिपी मेहनत को भी समझना चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि अनुशासन, धैर्य और निरंतर प्रयास का परिणाम है।
0: एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्तीय साक्षरता, यदि कमाई हो रही है तो बचत और निवेश की समझ भी होनी जरूरी है।
1: बिल्कुल, यदि युवा शुरुआत से ही बजट बनाना, बचत करना और अनावश्यक खर्चों से बचना सीख जाए तो भविष्य में आर्थिक चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर सकते हैं।
0: रेखा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आर्थिक स्वतंत्रता युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति भी देता है?
1: बिल्कुल, निश्चित रूप से, चाहे उच्च शिक्षा प्राप्त करनी हो, कोई नया कौशल सीखना हो या अपना व्यवसाय शुरू करना हो, आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्ति को अवसरों का लाभ उठाने का साहस देती है।
0: हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कमाई की दौड़ में जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को न भूले।
1: सही कहा। परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा और नैतिक मूल्यों का संतुलन बनाए रखना उतना ही आवश्यक है जितना आर्थिक रूप से मजबूत होना।
0: तो हम यह कह सकते हैं कि कम उम्र में आर्थिक स्वतंत्रता केवल पैसे कमाने का विषय नहीं है बल्कि आत्मनिर्भरता, जिम्मेदारी और बेहतर भविष्य की तैयारी का माध्यम है।
1: बिल्कुल, और यदि युवा सही दिशा, सही सोच और सही संतुलन के साथ आगे बढ़े तो वे न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज और देश के विकास को भी नई गति दे सकता है।
0: बहुत प्यारा संदेश। इस सकारात्मक विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करें।
1: बिल्कुल,
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: तो दोस्तों, ये थी कुछ ज्ञान की बातें। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। तो दोस्तों, आज है कार्यक्रम हेलो युवाणी, तो चलिए लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं हमारे पहले श्रोता कौन है और वो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। हेलो युवाणी।
4: नमस्कार मैडम, मेरी कुराचा पार्टी कोरोना छत्तीसगढ़ के लिए इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
5: जी इंद्रभान जी, जी बताइए कैसे हैं आप?
4: ठीक है मैडम, आप भी अच्छी? मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ मौसम बिहार में कल कोहरा गिरा और धूप में काफी धूप तेज था। अभी थोड़ा देर हो रहा है, बदल किया है। और हेलो,
5: हाँ जी बोलिए इंद्रभान जी।
4: तो आज मैं दूसरा मरते हुए मैंने सबसे अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है भाग मिलकर भाग,
5: और
4: गीत के बोल है दो झुंड हवन करेंगे गायक।
5: ठीक है इंद्रभान जी, कुछ हमारे श्रोताओं को संदेश देना चाहेंगे आप?
4: जी मैडम, अभी संदेश देना चाहता हूँ कि अभी इस मौसम में उलट पुलट हो रहा है और जैसे तेज धूप, तेज गर्मी, तो उसके बाद उमस गर्मी, फिर बादल पानी एकदम अचानक बढ़ जा रहा है। तो इस मौसम में लोगों से आग्रह करूँ

0: सेहत का विशेष ध्यान दे, और आंधी तूफान जब भी आता है तो उस समय आंधी तूफान के समय में गाड़ी न चलाएं, कहीं पर रुक जाएं, और हो सकता है कि कहीं आप जा रहे हैं तो पेड़ आपके ऊपर गिर सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है या आपका अंग भंग हो सकता है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
1: ठीक है, आइए सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का ये गीत।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
3: वंदे मातरम प्रणाम।
4: वंदे मातरम प्रणाम, आपका शुभ नाम?
3: हम बोल रहे हैं रेलवे कॉलोनी से, रमेश भारद्वाज। सब ठीक है, बरसात शुरू हो गया, अभी बरसात शुरू हो गया, तो मेरे को आज एक गीत सुनना है।
4: जी सर, कौन सा गीत?
3: गीत है मेरा फिर मैं वक्त।
4: जी सर।
3: वक्त है जिसका गायकार है गायक कलाकार आशा भोसले, महेंद्र कपूर उनके साथी। गीत के बोल हैं, दिन है बाहर के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार का, एक गीत है।
4: जी सर। सर आप कुछ श्रोताओं को संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार।
3: ठीक है।

0: हेलो तिवारी।
1: हेलो जी,
0: हाँ,
1: आपका शुभ नाम क्या है?
0: मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू बोल रहा हूँ। श्रवण
1: जी सर,
0: कुमार साहू,
1: जी श्रवण जी, आप हमारे श्रोताओं को संदेश देना चाहेंगे क्या?
0: यही कहना चाहूंगा कि गर्मी में थोड़ा से सावधानी बरते,
1: जी
0: कहीं पे धूप में निकल रहे हैं तो साथ में पानी का बाटल रखे और
1: जी
0: गमछा है, कपड़े सर पे अच्छे ढक के चले, साथ में प्याज हो सके तो छोड़ सके, ये एहतियाती तौर पे ये बरतना चाहिए सावधानी।
1: जी तो कौन सी पसंद का गीत है आपका जो आप सुनना चाहेंगे?
0: फिल्म राम तेरी गंगा में जी का है, सुन साई बसुन
1: ये वाणी सुनते रहिएगा, धन्यवाद।
0: जी।

0: हेलो युवाणी।
1: हेलो,
0: हेलो युवाणी जी। सर आपका शुभ नाम
1: नमस्कार
0: क्या है? नमस्कार जी।
1: सर।
0: जी आपका शुभ नाम बता सकते हैं आप?
1: जी सर, मैं राम शरण विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ, ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, यूपी से।
0: जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे आप क्या काम करते हैं?
1: सर मेरा सिलाई काम है, सिलाई करता हूँ सर, और कार्यक्रम में सुनता रहता हूँ आकाशवाणी जगदलपुर को।
0: शुक्रिया जी। तो आप अपने पसंद का गीत और उसके बोल बता सकते हैं?
1: सर फिल्म का नाम है जिगर और गीत बोले तुझको बाहों में भर लिया।
0: धन्यवाद।
1: ओके, नमस्कार।

0: हेलो युवाड़ी, नमस्कार
1: हाँ सर जी नमस्कार।
0: जी, आपका शुभ नाम क्या है?
1: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर,
0: पवन कुमार जी।
1: गंडी पंडरिया से।
0: जी, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा।
1: जी सर,
0: आप क्या काम करते हैं?
1: मकान मिस्त्री का काम करता हूँ सर जी, और रेडियो से जुड़ा हुआ बहुत पुराना श्रोता हूँ।
0: जी,
1: और आकाशवाणी जगदलपुर का तो एकदम नियमित श्रोता बन गए हैं सर जी।
0: अरे शुक्रिया।
1: यहाँ से आपके कार्यक्रम में हेलो युवाणी कार्यक्रम, लोक रस कार्यक्रम, श्रोता सुमन कार्यक्रम, ये सब सुनते रहते हैं सर।
0: जी, तो पवन कुमार जी, आप हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे?
1: अब संदेश आप विषय थोड़ा बताएंगे तो उसके बारे में कुछ हल्का फुल्का बोल देंगे सर।
0: जो आपका मन हो।
1: जो आप कमन सर, तो अभी गर्मी चल रहा है सर, गर्मी में अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए।
0: जी,
1: और साथ में सर एक छोटा सा प्याज अपने जेब में रख के चलना चाहिए। और जब भी खाना खाए सर तो कम से कम एक एक प्याज का सेवन अवश्य किया करें ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो सके।
0: जी, तो पवन कुमार जी, आप की पसंद का गीत आप बता सकते हैं, कौन सी फिल्म से है?
1: प्रेम रोग फिल्म का गीत सुना दीजिए सर, मोहब्बत है क्या चीज हमें भी सुनाओ, ऐसा कुछ गीत है सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर जी की आवाज में।
0: जी, तो प्रेम पवन कुमार जी, हमें आपसे मिलकर

0: बहुत अच्छा लगा,
1: जी सर
0: आशा करेंगे आप यूं ही हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।
1: बिल्कुल सर जी, और आपको धन्यवाद देता हूँ सर, आज मेरा फोन आने लगा, आपसे बात हुआ, बहुत खुशी भी हुआ सर।
0: जी जी तो शुक्रिया पवन कुमार जी, यूं ही जुड़े रहिए।
1: धन्यवाद सर जी, धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: हेलो
1: हेलो युवाड़ी
0: जी, नमस्कार सर।
1: नमस्कार, आपका शुभ नाम
0: अशोक कुमार साहू बोल रहा हूँ सर जी, करमा चौक लोहारी डीहा, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ से
1: जी। तो आप क्या काम करते हैं?
0: जी। मैं तो नियमित खेती किसानी का काम करता हूँ सर जी, जब खाली समय रहता है तो मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ
1: जी अशोक कुमार जी, तो आप हमारे श्रोताओं को संदेश देना चाहेंगे?
0: जी सर। नियमित खेती करता हूँ सर जी। अब खेती के अंतर्गत संदेश दे सकता हूँ सर जी मैं, कि सभी आदमी खेती किसानी में लीन रहे और खेती जो जिसके पास है वो बिल्कुल खेती करें सर जी, क्योंकि धरती के सेवा करने से कभी हमें वो फल नहीं देगा ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जरूर अपना अपना हक का हिस्सा जरूर हमें देगा।
1: तो अशोक कुमार जी, आपकी पसंद का गीत कौन सा है जो आप सुनना चाहेंगे?
0: आज सुनना था सर जी, फिल्म का नाम है आशिकी और गीत के बोल है, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, ये वाला गीत सुना देना
1: बहुत ही खूबसूरत गीत है।
0: जी।
1: तो अशोक कुमार जी, हम उम्मीद करेंगे आप हमसे यूं ही जुड़े रहे।
0: जी धन्यवाद।

0: नमस्कार, हेलो हिमाड़ी
1: सर जी नमस्कार।
0: जी। जी जी तो आपका शुभ नाम क्या है
1: सर जी, मेरा नाम है जगदीश राय गर्ग।
0: जी। तो जगदीश जी,
1: बस
0: आप
1: स्टैंड मानसा पंजाब से बोल रहा हूँ सर।
0: अच्छा पंजाब से बात कर रहे हैं।
1: जी सर, जी सर।
0: जी जगदीश जी, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप
1: हाँ
0: हमारे
1: जी, हाँ
0: श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी आप कुछ भी विचार बांट सकते हैं, साझा कर सकते हैं हमारे श्रोताओं के साथ।
1: जी जी तो ऐसे है सर, मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि अगर जीवन में सुखी रहना है और शांति जीवन में होनी चाहिए तो एक तो अपनी थोड़ा सा ख्वाहिशों को कम कर दे,
0: जी
1: क्योंकि ख्वाहिशें अगर बढ़ जाती हैं तो सभी पूरी हो नहीं पाती, तो फिर इंसान थोड़ा सा दुखी परेशान होता है।
0: जी जी
1: तो इनको सीमित कर दें हम थोड़ा सा, ये ना देखें कि उसके पास ये कुछ है, उसके पास ये कुछ है, मैं भी हासिल कर लूं। तो इसी से इंसान दुखी होता रहता है, सभी कुछ पूरा नहीं होता तो परेशान होता है। तो मैं तो यही संदेश दूंगा कि थोड़ा सा इन ख्वाहिशों को इंसान कम कर ले तो सुखी रहेगा।
0: जी जी बहुत प्यारा संदेश था। तो आप कौन से गीत सुनना चाहेंगे?
1: गीत सर फिल्म है धरती, रफी साहब जी की आवाज है, और गीत के बोल मैं इजाजत हो तो दो लाइनें तिरन्नम में बता दूं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: खुदा भी आसमां से जब जमीन पर दे

0: प्यारा गाया आपने,
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
0: आशा करेंगे जगदीश जी आप यूं ही हमसे जुड़े रहें और
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल
0: आपका ये प्यारा संगीत।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।

0: युववाणी, अभी आप युवा दोस्तों का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। ये है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब लीजिए सुनिए हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरे सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। देश भर में इस तरह के 1,600 केंद्र स्थापित किए जाने हैं और अब तक 24 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों में अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्चा कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में एक विकेट पर 16 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं।

0: एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में छत्तीसगढ़ी में समाचार का प्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: केंद्र है 6:10 हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग वसुधा सेन के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाछू 12 में नवा समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण हुए है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह अपन छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर में स्वच्छता मित्र मन के सम्मान करीन और उनला मेडिकल किट प्रदान करीन और प्रदेश के सबो सरकारी और निजी स्कूल मन में अवैया 16 ले साला प्रवेश उत्सव मनाए जाही। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 पूरा होय ऊपर आज रायपुर में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 के ये कार्यकाल ऐतिहासिक रहे है। उखर नेतृत्व में नवा समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण हुआ थे। उमन कहिन कि जनजातीय वर्ग बरघलो ये 12 स्वर्णिम रहे है। ये दौरान 58 ले ज्यादा जनधन खाता खोले गये है। छत्तीसगढ़ में पाछू 2.5 में 10 ले ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बने हैं। ये मौका में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहिन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है विकास के संग विरासत लघलो बढ़ाए के काम करे है। उमन कहिन कि पाछू 12 में भारत के अर्थव्यवस्था मजबूत हो है। 25 लोगन मन गरीबी रेखा ले ऊपर आए हैं। एखरे संग दुनिया में भारत के सम्मान घलो बढ़े है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह अपन छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर में स्वच्छता मित्र मन के सम्मान करीन और उनला मेडिकल किट प्रदान करीन। ये मौका में ओमन स्वच्छता कर्मी मन ले संवाद करत हुए स्वच्छ भारत अभियान में उखर समर्पण परिश्रम और योगदान के सराहना करीन। श्री सिंह कहिन कि स्वच्छता केवल अभियान न है बल्कि जन भागीदारी ले राष्ट्र निर्माण के सशक्त माध्यम हरय। ये मौका में केंद्रीय मंत्री भारत रत्न डॉ भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा ऊपर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करीन। एखर बाद केंद्रीय मंत्री श्री सिंह कलेक्ट्रेट परिसर करा स्थित ऑक्सीजोन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण घलो करीन। उन्हें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात करीन। इबेरा में मुख्यमंत्री कहिन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय और निरंतर संवाद की भावना विकास काम मल्ला नवा गति प्रदान करे हे। एकर पहले केंद्रीय मंत्री श्री सिंह काली रायपुर में रेशम खादी ग्रामोद्योग हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के समीक्षा करीन। केंद्रीय मंत्री अधिकारी मल्ला निर्देशित करीन कि अलग अलग योजना मन के माध्यम ले ग्रामीण और कुटीर उद्योग क्षेत्र के उद्यमी मन के वार्षिक आय 5 रूपया तक पहुंचाए बर विशेष प्रयास करे जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुईन। ये मौका में मुख्यमंत्री एनएचएम कर्मचारी मन के 33 दिन के हड़ताल अवधि के वेतन दे जाए के घोषणा करीन। उमन एनएचएम कर्मचारी मनला स्वास्थ्य सेवा के रीण बतावत हुए किहीन कि प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र मन में घलो स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाए में उखर अहम भूमिका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों शौर्य चक्र ले सम्मानित सुरक्षा बल के जवान मनले आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा नवा रायपुर स्थित अपन निवास कार्यालय में मुलाकात कर उनला बधाई और शुभकामना दीन। ये दौरान उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा शौर्य चक्र ले सम्मानित इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख और राइफलमैन भोजराम साहू के साहसिक काम मन के सराहना करीन। गरियाबंद जिला में सुरक्षा बल के टीम तलाशी अभियान के दौरान माओवादी मन के एक ठन बड़े हथियार डंप बरामद करे हैं। मिले जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ और जिला पुलिस के संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकले रहीन। इसी दौरान दंडई पानी के जंगल में माओवादी मन डहार ले लुका के रखे 4 किलो के आईईडी, कुकर बम, टिफिन बम, हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद करे हैं। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
3: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
2: अब आगु बढ़बो बाचे समाचार कोती। प्रदेश के सबो सरकारी और निजी स्कूल मन में अवैया 16 जून ले साला प्रवेश उत्सव मनाए जाही। प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचैया नव प्रवेशी लड़का मन के तिलक लगा के स्वागत करे जाही। ये मौका में विद्यार्थी मन ला निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफार्म और साइकिल के वितरण करे जाही। उन्हें बोर्ड और स्थानीय परीक्षा में टॉप करैया लड़का मन ला घलो सम्मानित करे जाही। स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश के स्कूल मन में नवा शिक्षा सत्र ले राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्यगीत समेत अलग अलग गतिविधि मनला अनिवार्य रूप ले कराए जाए के निर्देश जारी करे हैं। निर्देश में कहे गए है कि बिहनिया के प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और आने आने गतिविधि होगी, जबकि मध्यान्ह भोजन के बेरा भोजन मंत्र और छुट्टी के बेरा राज्य गीत के सामूहिक वाचन कराए जाए। यही बीच लोक शिक्षण संचालनालय 16 जून ले ही ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य करे जाए के निर्देश दे हैं। संचालनालय अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक मल्ला डिजिटल माध्यम ले हाजिरी दर्ज करे बर कहे हैं। स्कूल मनमा VSK ऐप और कार्यालय मनमा बायोमेट्रिक प्रणाली ले उपस्थिति दर्ज होही। ऑनलाइन हाजिरी नहीं मिले ऊपर जून माह के वेतन रोके जा सकत है। उन्हें अब ऑफलाइन छुट्टी आवेदन पूरी तरह ले प्रतिबंधित रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में राजनांदगांव के प्रतिभाशाली युवा क्रिकेटर महक नरवासे ले सौजन्य मुलाकात करें। ये मौका में श्री साय भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम के आगामी श्रीलंका दौरा पर T20 और वनडे टीम के उपकप्तान नियुक्त करे जाए ऊपर सुश्री नरवासे ला बधाई और शुभकामना दी। रायपुर में आज देवर्षि नारद जयंती पत्रकार सम्मेलन सम्मान समारोह आयोजित करेगी। ए बच्छर के देवर्षि नारद सम्मान वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत शर्मा प्रदान करेगे है। उन्हें बब्बन प्रसाद मिश्र सम्मान महिला पत्रकार आकांक्षा तिवारी ला और रमेश नैयर सम्मान फोटो जर्नलिस्ट रूपेश यादव ला प्रदान करेगे है। ये कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवा रायपुर स्थित IIIT के निदेशक प्रोफेसर डॉ ओम प्रकाश व्यास और मुख्य वक्ता DD न्यूज के वरिष्ठ सलाहकार संपादक प्रखर श्रीवास्तव रहीन। जांजगीर चांपा जिला के पतोरा थाना क्षेत्र में आज भारतमाला सड़क कर एक ठन ट्रेलर और पिकअप के बीच हुए टक्कर में पिकअप सवार 2 जन युवक मन के मौका में ही मौत हो गई। उन्हें 3 जन घायल हो गए। घायल मल्ला अस्पताल में भर्ती कराए गए है। राजधानी रायपुर के नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में 36वां राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष, महिला और सब जूनियर बालक बालिका प्रतियोगिता शुरू हो गए है। एकर आयोजन भारतीय कायाकिंग, कैनोइंग और छत्तीसगढ़ एंड कैनोइंग के संयुक्त तत्वाधान में करे जाते हैं। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहाल ले प्रस्तुत कार्यक्रम जिला के चिट्ठी के प्रसारण काली संध्या 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र एके संग्रह रिले कर ही ये बखत के अंक मा गरियाबंद जिला के बारे में जानकारी दे जाही। अब पे से मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया 1-2 दिन के भीतर मानसून के छत्तीसगढ़ में प्रवेश की संभावना जताए है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड और ओडिशा पहुंच गए है। मानसून के आगू बढ़े पर परिस्थिति सामान्य बने हुए है। उन्हें एक ठन द्रोणिका मध्य प्रदेश, उत्तर छत्तीसगढ़ और झारखंड के ऊपर बने हुए है। एकर असर ले अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कुछ एक जगह में हल्का ले मध्यम वर्षा होए और गरज चमक के संग छीटा पड़े के संभावना है। उन्हें 1-2 जगह में अंधड़ चले और गाज गिरे के चेतावनी दे गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घो फिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहीन है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पाछू 12 बच्छर में नवा समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण हुए है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह अपन छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर में स्वच्छता मित्र मन के सम्मान करीन और उनला मेडिकल किट प्रदान करीन और प्रदेश के सब्बो सरकारी और निजी स्कूल मन में अवैया 16 जून ले साला प्रवेश उत्सव मनाए जाहे। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:20 होने को हैं। लीजिए सुनिए संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
4: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः षड्दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। तेनोक्तं यत् इयं यात्रा फ्रांस देशेन सह आर्थिक सांस्कृतिक संबंधान् स्लोवाकिया देशेन च सह द्विपक्षीय संबंधान् सुदृढीकर्तुं केन्द्रिता भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य एवियन नगरे आयोज्यमाने G7 शिखर सम्मेलने अपि भागं भजिष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह सीमवर्ती जनपदेषु जनसांख्यिकीय परिवर्तन विषये उच्चस्तरीयोपवेशनस्य आध्यक्षम् अकरोत्। असमस्य जोरहाट वायुसेना केन्द्रे भारतीय वायुसेनायाः N-32 विमानं दुर्घटनाग्रस्तं जातम्। अपि च धर्मशालायां भारत अफगानिस्तान देशयोः मध्ये प्रथम एकदिवसीय क्रीडायां पणकं विजित्य भारतेन प्रथमं कन्दुकक्षेपणं स्वीकृतम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः षड्दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। गमनात् प्राक् प्रदत्ते एकस्मिन् वक्तव्ये तेन प्रोक्तं यत् भारतस्य रणनीतिक दृष्टिकोणे फ्रांस देशस्य विशिष्ट स्थानं वर्तते। तेनोक्तं यत् अस्याः यात्रायाः मुख्य लक्ष्यं भारत फ्रांस देशयोः आर्थिक सांस्कृतिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणम् इत्यस्ति। भारतीय समयानुसारं रात्रौ 10:30 प्रधानमंत्री फ्रांस देशस्य नीस नगरं प्राप्स्यति। प्रधानमंत्रिणः आगमनात् पूर्वमेव नीस नगरे स्थितैः प्रवासी भारतीय समुदायस्य सदस्यैः नवोद्योग संस्थापकैः उद्योगपतिभिश्च महान उत्साहः प्रदर्शितः। अत्राशास्यते यत् इयं यात्रा यूरोपेन सह भारतस्य सम्बन्धान् दृढीकरिष्यति। अस्माकं वार्ताहरेण सूचितं यत् प्रधानमन्त्रिणः स्वागतीकर्तुं तत्र महत्यः सज्जाः विहिताः। प्रवासी भारतीयाश्च प्रधानमन्त्रिणा सह संवादं कर्तुं उत्सुकाः सन्ति। अद्यत्वे प्रायः 10,000 भारतीय छात्राः फ्रांस देशे अध्ययनरताः सन्ति। सहैव उभावपि देशौ 30,000+ पर्यन्तम् एतां संख्यां 30,000 यावत् प्रापयितुं कार्यरतौ वर्तेते। फ्रांसदेशेन 18 वर्षतः 35 वर्षपर्यन्तानाम् आयुवर्गीयाणां कृते 5-वर्षीय शेंगेन वीजा सहैव 2-वर्षीय शिक्षापरक कार्यानुमतिः एवमेव युवा व्यावसायिक योजनायाश्च नवीन द्वाराणि उद्घाटितानि। आकाशवाण्या सह संवादे फ्रांसदेशे नियुक्तः भारतस्य राजदूतः श्री संजीव सांगला इत्यसौ सबलं प्रोक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः इयं यात्रा उभय देशयोः जनानां पारस्परिक सम्बन्धान् दृढयिष्यति। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् तस्य इयम् ऐतिहासिक स्लोवाकिया यात्रा द्विपक्षीय सम्बन्धान् प्रबलीकरिष्यति। यात्रावधौ प्रधानमन्त्री स्लोवाकिया देशस्य नेतृभिः सह प्रमुखक्षेत्रेषु सहयोगं वर्धयितुम् उच्चस्तरीय चर्चामपि विधास्यति। स्लोवाकिया यात्रां परिसमाप्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अस्य मासस्य 16-17 च दिनांके आयोज्यमाने G7 शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुं पुनः फ्रांस देशं गमिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् G7 सम्मेलने भारतस्य इयम् उपस्थितिः वैश्विकपटले देशस्य वर्धमानं गौरवं तथा च अन्यदेशानां भारतमालक्ष्य दृढविश्वासं प्रदर्शयति।
5: तेन एतदपि प्रोक्तं यत् भारतं निरन्तरं अष्टमवारं G7 सम्मेलने आमन्त्रितम्। अन्ततः प्रधानमन्त्री जून मासस्य अष्टम दिनांके पेरिस नगरे स्वयात्रां समापयिष्यति, यत्र सः फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुएल मैक्रॉन इत्यमुना सह विवाटेक 26,000+ भागं भजिष्यति। गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य जनसंख्यापरिवर्तनमधिकृत्य सभायाः अध्यक्षताम् अकरोत्। अपि च जनसंख्या आयोगं निर्दिष्टवान् यत् सीमवर्ती जनपदेषु जनसंख्यायाः परिवर्तनविषये अध्ययनं कुर्यादिति। सभायां श्रीशाहः आयोगं परिस्थितेः समीक्षार्थम् आदेशं प्रदत्तवान्। विगतमासे केन्द्रप्रशासनेन अवैध प्रवासने अन्य असामान्य कारणैः च जनसंख्यायां परिवर्तन विषये अध्ययनार्थम् उच्चस्तरीय समितेः गठनं कृतम्। भारतीय वायुसेनया असमराज्यस्य जोरहाट क्षेत्रे अद्य प्रातः AN-32 विमान दुर्घटनायां 5 वायुसैनिकानां निधने शोकः प्रकटितः। एकस्मिन् सामाजिक पटले प्रकाशिते सन्देशे भारतीय वायुसेनया सूचितं यत् स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंहः, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमारः, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, वायुखेमा राम कुमावतः, अग्निवीरः वायु दानिश आलम च अस्यां विमान दुर्घटनायां पंचतत्वे विलीनाः। वायुसेना शोक संतप्त परिवाराणां प्रति संवेदनां प्रकटितवती। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः AN-32 विमान दुर्घटनायां 5 वायुसैनिकानां निधने शोकं प्रकटितवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाष्यतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। उत्तराखण्डस्य देहरादूनस्थितायां भारतीय सैन्य अकादम्यां 58,100 दीक्षांत संचलनम् अतीव वैभवेन आयोजितम्। भारतीय सेनायाः शौर्य परम्परायाम् अद्य 81,400 नूतनाः युवाधिकारिणः सम्मिलिताः अभवन्। अत्रावसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः समीक्षा अधिकारित्वेन अस्य भव्यसञ्चलनस्य निरीक्षणम् अकरोत्। अयमुत्सवः छात्रसैनिकानां कठोरसैन्यप्रशिक्षणस्य सफलतापूर्वकं समापनस्य प्रतीकमासीत्। दीक्षान्तसमारोहे युवाधिकारिणः अनुकरणीय अनुशासनं निष्ठां सैन्यभावनां च प्रदर्श्य अतीव सुस्पष्टं सञ्चलनं कृतवन्तः। अकादम्याः इतिहासे महिला छात्रसैनिकानां दीक्षान्तसमारोहं विशिष्ट कीर्तिमानत्वेन वर्णयन्ती राष्ट्रपतिः अवदत् यत् इदं देशे महिला नेतृत्वयुतस्य विकासस्य दिशि प्रेरणास्पदमस्ति।
6: I am specially delighted to see 9 women cadets. This is watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy.
5: श्रीमती मुर्मुः युवाधिकारिणः प्रबोधितवती यत् ते जीवने निरन्तरं शिक्षार्थिनः भवेयुः, साहसिक निर्णयान् स्वीकुर्युः, सहैव सुरक्षा समाह्वानानि सम्मुखीकुर्वन्तः नैतिक नेतृत्वस्य प्रदर्शनं कुर्युः।
6: In an era of rapidly changing security challenges, technological advances and complex global environments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders. As army officers, you will be responsible for leading, guiding and caring for the soldiers.
5: रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन अद्य नूतन नियुक्तेभ्यः भारतीय वायुसेनायाः अधिकारिभ्यः प्रबोधितं यत् परिवर्तिते सुरक्षावातावरणे तैः ड्रोन विमानानाम् उपग्रहाणां रोबोटिक सदृशाणां युद्धप्रविधीनां प्रयोगो विधेयः। सः अद्य हैदराबाद नगरस्य डुण्डिगल स्थितायां वायुसेना अकादम्यां 17,200 संयुक्त दीक्षांत संचलनस्य निरीक्षणं कुर्वन्नासीत्। तेनोदीरितं यत् आधुनिक युद्ध पद्धतौ बहूनि परिवर्तनानि जातानि। अतः अधिकारिभिः नवीन युद्ध प्रणालिभिः रणनीतिभिश्च सह निरन्तरं स्वज्ञानं परिष्करणीयम्। अत्रावसरे रक्षामन्त्रिणा राष्ट्रिय रक्षा अकादम्यां प्रशिक्षिताः महिला छात्रसैनिकानां प्रथमगणः अपि वायुसेनायाम् औपचारिकरूपेण नियुक्तः। एताः महिलाः गतवर्षे एनडीए इत्यतः उत्तीर्णाः भूत्वा शाखा विशिष्ट प्रशिक्षणार्थं वायुसेना अकादम्यां प्रविष्टवत्यः। भारत अफगानिस्तान देशयोः मध्ये प्रथम एकदिवसीय क्रीडा धर्मशालायां प्रवर्तते। आदौ पणकं विजित्य भारतेन प्रथमं कन्दुकक्षेपणं स्वीकृतम्। अन्तिमवार्तालेखनसमयं यावत् अफगानिस्तानेन चतुःक्षेपचक्रेषु द्वयोः क्रीडकयोः हानौ चतुर्विंशति धावनांकाः रचिताः। इति वार्ताः।
0: मीडियम वेव पर यह है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। आप हमें एफएम बैंड और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं।
7: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
8: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: आप हमें आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। शाम के 6:35 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए मधुराम और साथियों के गाए हल्बी भजन गीत।
1: शंकर तू चोजा।

0: मधुराम और साथियों के गाए हल्बी भजन गीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
1: कुछ ही आप समाचार
2: अरे रीमा सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते 12 वर्षों के कार्यकाल में नए समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण हुआ है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर में स्वच्छता मित्रों का सम्मान किया तथा उन्हें मेडिकल किट प्रदान किए। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आगामी 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा और मौसम विभाग ने आगामी 1-2 दिनों के भीतर मानसून के छत्तीसगढ़ में प्रवेश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आज रायपुर में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्षों का ये कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है। उनके नेतृत्व में नए समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण हो रहा है।
11: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है और 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए अद्भुत काम किया है। आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सबका जनधन खाता हो, सबके घर में शौचालय हो, सबका पक्का मकान हो, सबके घर में बिजली हो, उसी तरह से सबके घर में नल द्वारा पानी पहुंचे, इसके लिए भी जल जीवन मिशन की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है।
0: इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के साथ विरासत को भी बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं।
12: प्रधानमंत्री जी ने जैसा कि कहा, विरासत के साथ विकास या विकास के साथ विरासत, दोनों को लेने का काम किया। और वही नहीं, दुनिया में भारत के सम्मान को ऊंचा किया। 32 देशों ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया, भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया। नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मंत्र से काम किया है।
0: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर में स्वच्छता मित्रों का सम्मान किया तथा उन्हें मेडिकल किट प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छता कर्मियों से संवाद करते हुए स्वच्छ भारत अभियान में उनके समर्पण, परिश्रम और योगदान की सराहना की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने भारत रत्न डॉ भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने कलेक्टोरेट परिसर के समीप स्थित ऑक्सीजोन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने कल रायपुर में रेशम, खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और कुटीर उद्योग क्षेत्र के उद्यमियों की वार्षिक आय 5 लाख रूपये तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने NHM कर्मचारियों के 33 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने NHM कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बताते हुए कहा कि प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका है।
13: सरकार आप लोगों के साथ, हम सब लोग खड़े हैं। आप लोग लंबे समय से हड़ताल में थे, उसका वेतन रुका हुआ है, तो मैं आज उसकी घोषणा करता हूं।

0: राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और अन्य गतिविधियां होंगी, जबकि मध्यान्ह भोजन के समय भोजन मंत्र और छुट्टी के समय राज्य गीत का सामूहिक वाचन कराया जाएगा। इस बीच लोक शिक्षण संचालनालय ने 16 जून से ही ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश व्यवस्था अनिवार्य किए जाने के निर्देश दिए हैं। संचालनालय ने अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को डिजिटल माध्यम से हाजिरी दर्ज करने को कहा है। स्कूलों में VSK ऐप और कार्यालयों में बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज होगी। ऑनलाइन हाजिरी नहीं मिलने पर जून माह का वेतन रोका जा सकता है। वहीं अब ऑफलाइन छुट्टी आवेदन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में राजनांदगांव की प्रतिभाशाली युवा क्रिकेटर महक नरवासे से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर श्री साय ने भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम के आगामी श्रीलंका दौरे के लिए T20 और वनडे टीमों का उपकप्तान नियुक्त किए जाने पर सुश्री नरवासे को बधाई और शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों शौर्य चक्र से सम्मानित सुरक्षा बल के जवानों से आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नवा रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने शौर्य चक्र से सम्मानित इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट, इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख और राइफलमैन भोजराम साहू के साहसिक कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन जवानों की बहादुरी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने तलाशी अभियान के दौरान माओवादियों का एक बड़ा हथियार डंप बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार CRPF और जिला पुलिस की संयुक्त टीम तलाशी अभियान के लिए निकली थी। इसी दौरान दंडई पानी के जंगल में माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए 4 किलो का IED, कुकर बम, टिफिन बम, हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही विस्फोटकों को निष्क्रिय कर दिया। रायपुर में आज देवर्षि नारद जयंती पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस वर्ष का देवर्षि नारद सम्मान वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत शर्मा को प्रदान किया गया। वहीं बबन प्रसाद मिश्र सम्मान महिला पत्रकार आकांक्षा तिवारी को और रमेश नैयर सम्मान फोटो जर्नलिस्ट रूपेश यादव को प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवा रायपुर स्थित IIIT के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश व्यास और मुख्य वक्ता DD News के वरिष्ठ सलाहकार संपादक प्रखर श्रीवास्तव थे। राजधानी रायपुर के नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष और महिला तथा सब जूनियर बालक बालिका प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इसका आयोजन भारतीय कायाकिंग कैनोइंग और छत्तीसगढ़ कायाकिंग एंड कैनोइंग के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 24 राज्यों से करीब 800 खिलाड़ी और अधिकारी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का समापन कल 14 जून को होगा। जांजगीर चांपा जिले के पंतोरा थाना क्षेत्र में आज भारतमाला मार्ग के पास एक ट्रेलर और पिकअप के बीच हुई टक्कर में पिकअप सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कोरबा जिले के केरवा गांव से पिकअप से 5 लोग भिलाई जा रहे थे। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में गरियाबंद जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 1-2 दिनों के भीतर मानसून के छत्तीसगढ़ में प्रवेश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड और ओडिशा पहुंच चुका है। मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां सामान्य बनी हुई हैं। वहीं एक द्रोणिका मध्य प्रदेश, उत्तर छत्तीसगढ़ और झारखंड के ऊपर बनी हुई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।
1: आज मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गर्जन के साथ तेज हवा और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये मेघ गर्जन का गतिविधि और वर्षा का गतिविधि जो है आगामी 7 दिन तक भी रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों में लगभग 1 से लेकर 3 डिग्री का गिरावट आ चुका है और दक्षिण छत्तीसगढ़ में मॉनसून का एंट्री आगामी 2 से लेकर 3 दिन में होने की कंडीशंस फेवरेबल बन रहे हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते 12 वर्षों के कार्यकाल में नए समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण हुआ है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज रायपुर में स्वच्छता मित्रों का सम्मान किया।

तथा उन्हें मेडिकल किट प्रदान किए। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आगामी 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा और मौसम विभाग ने आगामी 1-2 दिनों के भीतर मानसून के छत्तीसगढ़ में प्रवेश की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

मीडियम वेव पर यह है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। समय है शाम के 7 बजे का। लीजिए सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: हाँ, मैं तो मोटरा गढ़ संगे अमरले दादा दीदीमन पहल करें से बस्तर की स्वर सुन तो जमाया दादा दीदी सियान सजन भाई बहन संजोरिया संजोरिन मन के मैं कुर्सो करें से राम राम। और वो पीला मन के बोले मच्छो बाटले कार से खोबे खोबे मया। दादा दीदी मन दगा मैं मोटरा धरुन तो अंबर ले आरु बल्ले ने सबले पहल बलतो सन ज्ञान ध्यान से गोट के मूर्ख हुआ है। तो उसने देखा बल्ले ने आमचो बस्तर जिला ने बल्ले बस्तर संभाग ने बल्ले ने का रस्या बल्ले ने आपलान आपलान गीत गोविंद नाचा गाना बल्ले ने बरन बरन चो रहे से बोलू ये बोलू आप लोग संस्कृति लोक नृत्य बीती बल्ले ने बरन बरन चो हर गांव पारा बल तो असन अलग अलग जिला होली नाल अलग अलग गांव होली बल्ले ने कहीं ना कहीं अलग अलग बीती मन रह से छे आप लोग नाच गीती नाच बीती हो नाले गीत गोविंद हो बाजा मोहरी हो नाले दूसर और बलबानी रहो बल्ले ने बरन बरन चो आसे असने संगीत ने बोले बरन बरन चो आसे ढोलकी होली तुरबुड़ी होली बल्ले ने कई किस्म चो बानी बानी आसे। और गीत गोविंद संग संग जो थाने गीत हो सुनता बिल्कुल वसन बाजा मन बल दखुक होय से और सुनुक बल होय से उसने ना नाच तो बीती होली नाले गीत बीती होली आपलान आपलान बाट चो कई तीज त्योहार चो समय होली नाले हाँ मंडी बाजार ने देवी देवता बीती होली बल्ले ने कई बरन बरन चो रहे से। और यही है कि असन बीती मन का है बल्ले ने आप लोग बल्ले ने गोटोक पहचान बल रहे से आप लोग बाट चो गोटोक जीनीस होय से गोटोक चीना रहे से। और असन बीती मन का है गोटोक बल्ले ने गांव पारा चो हो नाले आप लो बाट चो गोटक चीना रहे से। और ये गोटक सुतुर चो बीती सोर चो बीती बोलो ये उवाट मन असन रसम मन रहे से। और सत्य आए दादा दीदी मन कोनी बाट कहीं तीज तैयार हो से नहीं बल्ले ने आमी बोले आप लो ये बाट ले बल सगा मन जा सो तो आमचो बाट काई बोले हुन मन बोले ऐसो तो उसने आए तो ये गोटक आप लो गोटक गोटक सोर चो ने बोल तो बीती हो से सोर ने रतो बीती असन उवाट मन रहे से। और सत्य आए कि असन बल्ले ने सपाए तो पढ़े लिखे एक समय आन तो नहीं रहो ये भी तो सपाए पढ़े लिखे वालो ऐसा तार जानकारी बोला सो मानतर एक समय आसन रहे कि पढ़े लिखे कम रोत रहते रहो। और उन मन चो जान पहचान और सिखा तो पढ़ तो बीती बल तो सन गोटक यही भी थी मन रहे बोले आप लो लोक नृत्य बीती आप लो तीज त्योहार ने बना तो बीती वाट मन होली रसम मन होली हाँ बरन बरन चो तिहार महोत्तर ने कोनी कोनी तिहार महोत्तर नसन रहे से गीत गुबीती रहे से गोवी नाचा दगा बीती बल रहे से बिया बरपन बल रहे से ये गोटक आप लोग पहचान आए आप लोग गोटक चीना आए आप लोग बल्ले ने गोटक सोरचो बीती ये उवाट मन रहे से। और ये बीती मन के बिल्कुल असने उवाट ने बोलू चलते रहोत और आप लोग भाईचारा बनान बाती रहते रहो ये भी तो पढ़े लिखे बात। और सत्य आए गोटोक सोर चो और गोटोक सुतर ने रत और बिल्कुल नंगत आए गोटोक आम चो बाढ़ दखा तो बीती उट मन आए से। तो ये बीते मन के आम के भी भूलक तर नो आए दादा दीदी मन ये उट मन के असन रसम मन असन जीनिस मन जोन रहे से नहीं आम चो परंपरा बीती पुराना बीती जोन आगे ले चलते है तो बीती मन के बिल्कुल आम के भूलक तर नो आए कसन बोले ये भी समय बाढ़ती समय आए और असन समय ने बल्ले ने खिंडी आमी बल्ले ने बाट ले भुलक लो असन होय से बोल लेने उन बीती मन के आमी किंडिक लेख नहीं करू से। तीज त्योहार होली काई होली नहीं बिल्कुल उन थाने आप लोग घर चो लोग तो रहूं से संगे संगे सगा संबंधित बोले तोरा ये ऐसु हो तो उन मन संगे बोसुन बाती गोठियाओं से आप लोग जोन बोले आए बनू रहे से उनके खाऊं से गोटोक सलाह ने रहूं से। तो ये बीती मन के आम के भुलक तोर नो आए ये भी बरन बरन चो बानी मन होली से मंत्र आम चो पुराना बीती जोन रहे से आगे चो परंपरा बीती मन रहे से ये मन के आम के भूल उत्तर नो है यही बीती आम चो सलाह सुतर आरु आप लोग पहचान चो बनाते बीती गोटोक रसम मन रहे से। तो ये आम के पिला झीला मन आसो तो मन के बल सिखा तो रहा है सांग तो रहा है तेबीर सुतुर ने कार्य से आगे चलुक होय दे आगे जाऊक होय दे आगे बढ़ुक होय दे। तो उसने आमी अभी आम चो काम कमानी के आमी भूल कुंसे नहीं तो बेड़ा खड़ा चो कमानी हो हाँ आप लोग जोन आसे उनके भूल कुक तो नहीं हुए तो असने आए कि असन जीनिस मन के बले आम के भूल अक्तर ना है पढ़ाई लिखाई तो करते रहे है पढ़ाई लिखाई आम चो मैमूर होए से कसन बोले आम चो आगे जीवना के नंगत चलात रहा है नंगत बढ़ात रहा है तो बोले पढ़ाई लिखाई करतोर आरु जान तोर ये जानकारी धरतोर ये बिल्कुल नंगत रहे से। तो ये असने वाट बोले आम के लेख करतो रहे एक गोटो खून बाती रहो बोलो विचार के आन तो रहा है मन में आन तो रहा है और लोग संगे बोले बाट तो रहा है कार ऐसे हूँ रत तो रहा है ये आप लोग भाईचारा बीती गोट के संग हुआ। तो तो दादा दीदी मन आले गोट के तमें अमरा ले मांतर दखा मच लगी और बोले वाट मन जहाला मन आसोत ये मन के बोले मैं अमरा ऐसे।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वन सरल बना की तोड़। बस, ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स की सी तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता। HS कोड क्लासिफिकेशन किन परवा कीवा लेवा गाड़ी ना सामान तपोरो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सी तोड़। इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इयनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओया ना बुता सरल आयना उम्मीद मिंदे। इलेक्ट्रिक गाड़ी न पर्रो मुन्नीटा लेकिन 8% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मुंड चक्का ना गाड़ी 8% जीएसटी मौला देने दोर किता अदेन के अव सोबेर कम टैक्स ता गाड़ी बने मास मंता।
7: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस, ट्रक, एम्बुलेंस ऊपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे, आगे ये 28% रहे। HS कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा कर लो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपरे एवर एक समान 18% कर होली से। ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेनतो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे। एचई संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल हो दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से। बिजली ले चलतो सपाय गाड़ी, दुई चक्का बीती गाड़ी अरु तीन चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे। असन ले ये मन सपाय कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: हाँ दादाजी, मैंने गोट मन तो अमरा ले मंत्र देखा मछलगे बल्ले ने भेटवार्ता बोले आसे और दादाजी मन भेटवार्ता बोले ने ये था ने बोले बरन बरन चो बोले ने जानकारी बीती मन रहे से कई बरन कई बल्ले ने जानकारी मन रहे से तो वाले भेट बार तक मैं तुम के ज्यादा नी बल्ले ने नी सांग गोठियाए ये कि सुना एमन काय का ये थन सांगे सोच जाले एमन आत श्री शिवनारायण पांडे और एमन संगे भेट कर ला सोच सियार कश्यप तो ये काय छो गोट की सांगे सोत अर काय बीती छो गोट संगे संगे उन छो वाट बला से नाले काई छो बीमारी सीमारी नल कई बोला है तो कसन उनके काय कर तो रहा है कसन जानकारी धर तो रहा है कसन जान तो रहा है तो ये के बोला हम के जो ध्यान देख पड़े से जानुक पड़े से तो वाले काय बीते जाले कि मैं हमरा ऐसे ये भेटवार तो बीती के अब मैं बल सुने दे यार गांव करे दादी मन तुम बल ध्यान दिन बाती ये वाट के नाले गोट के बोलू सुना
8: रेडियो सुन तो सपाय लोग के जुहार तो दादा दीदी मन असन आए कि आमी तो कई लोग संगे भेटघाट करोन कई कसन ज्ञान ध्यान जो गुड बात क्या मैं ताले सुनाते बोल रहा हूँ से और जानाते बोल रहा हूँ से असनीची आमचो स्टूडियो ने आजी अमरला सोत ये दादा मन एमन के मनचो राग के सुनन तुम बोल चीता से क्योंकि एमन बोले जाना चीना दादा तो दादा तुमके सब लागे जुहा ना
9: मचो बाटले बोले तुमके आरो रेडियो सुन तो जमाए लोग के खूबे खूबे जुहार
8: तो तुमचो तो सबली पहिल तुमचो नाव सांगून दियास
9: मचो नाव शिवनारायण पांडे आहे मांतर यही रेडियो स्टेशन लागून मचो नाव कोल्यावल पडली
8: तो दख कोल्या दादा असं नाही की दख आम्ही तो काम धाम करू से जिने काम धाम संगे संगे कै कसन खानपान बोल होय से आमचो आमचो खानपान अच्छा होले देह पाय बोल अच्छा रहे से तो असन काय होय से की कै कसन बीमारी मन बोल झोंटे से मांतर दख असन ए भी पढ़ा लिखा होते जास होत लोग मांतर कै कसन बीमारी के गाँव पारा ने लोग उतलो नहीं बोल जानोत और जान ले बोले उनचो सलाह बोलने कसन उन चलो बाचुक सकुआ के बोल उतलो नहीं जानो तो ये सब गोड़ बात के करतो का जाए अमर लो से ने तो मैं बोले जाने से कि तु कुष्ठ रोग लेखिनिक जाना चीना आसन बोलो इनके जानकार आहास तुम्हें हाँ। तो कुष्ठ रोग का है ये कसन हो से खिनिका जी सांगुन दिया खिनिक
9: दख कुष्ठ रोग के जान तो काजे ये चो पुरखती बेरा ले खिंडी के चो गोट के मूर्ख रुक लागे से
8: हाँ हाँ
9: जसन की ये मंजपुर ने लोग जन्म धरलू हुसने ची कितरो बीमारी वाले सांगे सांगे जाओते गेली
8: आईची
9: मांतर कितरो बीमारी मंचो खोजाकारी मन दवाई वसो खोजला और हुन के नानी सुनी बीमारी चो नाव दिला मांतर मूर ने कुष्ठ रोग चो कई दवाई खोजुक नी सकलो लागुन कोनी एक पाप चो फल कोनी शराब चो फल कोनी देवभूत चो फल असन एक बोलुन भाती समाज ने गांव पारा ने ये चो बीमारी चो खूबे डर बनाऊं दिला
8: अच्छा
9: तो ये काया है कि ये कि आमे सुन लो ने जान लो ने पढ़ लो ने काया है कि पुराण ने बाइबिल ने सब थाने ये चो नाम आसे
8: हाँ।
9: तो कुष्ठ बीमारी वाले काया है खूब जूना बीमारी है आरु जूना बीमारी होलो लागुन आर मूर ने दवाई नी रलो लागुन लोग ये भी बोले डर सो तारु मूर ने इलाज नहीं करा लो लागुन पाचे जीत लो ने खूबे परेशान हो सत
8: हाँ हाँ तो दख दादा यदा मैं तुमके पूछुक चाहे से कि कुष्ठ रोग काके काके हो सके
9: ये तुम चो खूबे नगत सवाल है कुष्ठ रोग कके बले हो सके तुमके बले हो सके मौके बले हो सके कके बले हो सके जे चो देह ने बुलुआत रोग प्रतिरोध क्षमता बल्लो ने बीमारी ले लड़तो ताकत नी है हुंचो देह ने कुष्ठचो जोन बैक्टीरिया कीड़ी जे के बोलुआत माइको बैक्टेरियम लेपरा हुंचो देह ने गेलो ने और हुंचो शरीर ने देह ने रोग प्रतिरोध क्षमता कम आसे तो हुनके हो सके और जेचो देह ने रोग प्रतिरोध क्षमता बीमारी ले लड़तो ताकत आगर आसे हुनके हुन बीमारी नी होए हुनी काजे कुष्ठचो चीना बना के जमाए लोग के जान तो रहे
8: अच्छा तो ये कुष्ठ के गुचा तो काजे समाज ने और गांव पारा ने काय काय चिपा एबे एबे बला से जाले दादा
9: दख ये बले गोटो खूबे बड़े सवाल है आजी बले काया है कि कुष्ठचो असन काई जसन की कितरो बीमारी मना से जेचो टीका सूजी नहीं सकली
8: हाँ।
9: और हुन बीमारी हो चे नहीं बलते टीका लगाऊं दिले जीवता जीव भर हुन बीमारी नहीं हुए
8: अच्छा
9: मांतर कुष्ठ बीमारी चो आजी तक खोजाकारी मन कोनी टीका बनाऊक नहीं सकला से टीका चालू है चो नी होली से पहिल गोट ये गोटक चीपा है। दूसर चीपा ये आए कि कुष्ठ बीमारी होले आजी बोले मुर ने पता लगले तो कम से कम 6 महीना दवाई खाऊ पड़ू है।
8: अच्छा।
9: और कुष्ठ जीतलो पाछे बरक्कार दवाई खाऊ पड़ू है। और लोग मंजी गते छांडून देवात नहाले बोलुआत कि मुर ने तो मोके कहीं दुखा सुखा नहीं है। ये कुष्ठ बीमारी इनका है मुर ने कहीं दुखा सुखा नहीं हुआ पाचे नस नाड़ी झोंकलो ने पूरा सुनपन पूरा देह ने पाए ने हाथे इलो ने हुदल नाए हाथ पाए पाचे उन सुद नहालो लागून कहीं घाव दाव होलो ने हुन दला इलाज का जे हुआ। तो ये गोटक समाज ने लोक चुमंजी आजी बोले कुष्ठ की गुचा तो काजे खूबे चीपा गोट आसे।
8: अच्छा तो दादा ये सांगा जसन कुष्ठ रोग चो चीना बना काय काय होस जाला।
9: कुष्ठ रोग चो चीना बना दक सबले पहिल देह ने सूद नहालो दाग कोनी लग बोले दाग होए दे जसन की आमे दोलुआत गांव ने चीला आसन बोलुआत ने हुसन दाग होए दे मांतर हुन दाग ने सूद नहीं रहे।
8: अच्छा
9: खजरी नहीं होए पसना नहीं आए और उनकी ध्यान ले दखलो ने बाल बोले झोड़ून जरूर हुआ उन लगाम तो देह ने नानी नानी रोआ बाल रहे सुन बोले झोड़ून जऊ है रोआ बोले झोड़ून जऊ है। और जो ना है कि पाछे आमचो एक तंत्रिका नस बोलुआ हूँ नस के झोंकलो ने हाथ पाए अंटकी मन टेढ़ा बोले हो सके।
8: अच्छा
9: तो असन किसम ले कुष्ठ चो चीना बाना मनाए मांतर मुर ने दुखा नहीं होलो लागुन मुर ने परेशानी नहीं होलो लागुन लोग दूसर किरी मन के लगौत काय काय के लगौत पाचे नस नाड़ी के झोंकलो ने हाथ पाए के नसा तो बेराए हुआ तो हूं तो काय है बीमारी तो दवाई खाद ले गारंटी ने छांडे दे मांतर जोन सूद बू जाऊ रहे से पता नहीं चल तो बीती हुन नहीं बोहड़लो ने जीवता जीव भर ध्यान नहीं दिलो ने घाव हो तो डर रुआ है। तो ये चीना बाना बेरा चे दवाई कर तो रहा मुर ने चीना बाना बेरा और केबे केबे काय हो से देह एकदम लाल असन बिल्कुल तेल लगा लो असन चिकन बोले दखा दे हुआ है। ये और लोग झटकी चीत उक सकू नुआ दुखे से बोलते रहुआ तो ये केवल ध्यान दे तो रहे ते भी कुष्ठ चो इलाज होए दे और हुन अच्छा होए दे तो ये चीना बाना मन के घाव करी मन सुनोत और एक धरोत और कुष्ठ ने मुंह

0: कुष्ठरोगाचे इलाज करावत.
1: हा तो दकोल्या दादा कुष्ठ रोग चो कितरो प्रकार हुआ है और एचो इलाज काय आहे.
0: हाँ तो ये बले जान तो जरूरी है. कुष्ठ रोग के खोजाकारी डॉक्टर मन इलाज चो हिसाब ने दुई प्रकार ने बाटला से जेके बोलुआ गोटक असंक्रामक कुष्ठ रोग और गोटक संक्रामक कुष्ठ रोग. एके बोलुआ पासी बेसेलरी नहाले पीबी आरु मल्टी बेसेलरी नहाले एमबी. दुई प्रकार चो कुष्ठ रोग होय से इलाज चो सुविधा हिसाब ने एके बाटला से आरु एचो इलाज जेके बलतर होय से एमडीटी नहाले बहु औषधि उपचार. यथाने तीन किस्म चो गोली रहे से उन मूर कर तो बेरा महीना दिन चो पाकिट के उन तीन किस्म चो खाऊक पड़ुआ हुन चोले फिर रोजे दुई किस्म चो फिर महीना पूरले तीन किस्म चो असन करुन भाती एचो इलाज एमडीटी दवाई ने हुआ और ये जमाए सरकारी अस्पताल ने फोकाहा ने मिलू है.
1: अच्छा हाँ हाँ तो दादा तुम्ही इदाए ये सांगा कि कुष्ठ रोग होले तेह पाए ने काय काय नुकसान हुआ है और ये चोले बास्तु काचे काय काय करुक पड़ुआ है.
0: कुष्ठ रोग होलो ने मूर ने दख कहीं नुकसान नहीं हुआ. मूर ने पता लगली मूर ने दवाई गोली खाद लो तो उनके कहीं चीपा नहीं हुए कहीं परेशानी नहीं हुए. मानतर कुष्ठ रोग पाचे जीतलो ने नस नाड़ी के झोकलो ने जेके आमे तंत्रिका तंत्र बोलुआ बोलो ने जोन पता चलतो बीती नस नाड़ी. हाथ ने तीन प्रकार चो नस नाड़ी के झोंकू है. पाय ने दुई प्रकार चो नस नाड़ी के झोंकू है और आँख चो नस नाड़ी के झोंकू है. तो ये काय हो दे उन तंत्रिका नस के झोंकलो ने अंडकी मन टेढ़ा होन जाऊ है नहाले आम चो कले ही खाले झुकुन जाऊ है और पाए ने बले हुसने होलो ने पाए ने घन घन घाव हुआ है नहाले जुगे जीतली बोलो ने पाए बले झुलू है. आँख ने चो नस के झोंकलो ने काय होए से कि आँख चो जोन ऊपर चो भौं है उन पलक बंद नहीं होए खुला रहुआ है. जे चोले काय है कि कीड़ा माकड़ा आँख ने जाऊन आँख खराब हो तो डर रहुआ है. तो ये चीपा मन हुआ है तो हुनी काजे काया है कि ये चोले वास्तो काजे पाए हाथ के आईगले बचाव परे से सुध नहीं रहे. आईगले गरम चीजले आम के कहीं तपलो बीती के खातो रहे चाह बले पीऊ से तो उन गिलास ने रुमाल के धरुन भाती पियो.
1: अच्छा
0: पाए ने कहा काटा झीटा ने नी जाओ. काटा झीटा ने जाए से तो अच्छा चप्पल पिंदुन भाती जाओ. आँख चो मिंदी बंद नहीं हो खुला आसे तो कहा पटपटी चला तो बेरा आए कि लहरा ने कहा जातो बेरा आए तो चश्मा पिंदुन जाओ. नहाले ये काया है ये चो काजे सरकारी अस्पताल मन ने गोटोक पाए काजे एमसीआर बोलुआत माइकर सेलुलर रबर.
1: अच्छा
0: ये चो चप्पल बल मिरुआ है हुन गुलगुला रहुआ है तो ये चप्पल के बोले पिंदो तेबे घाव दाओ ले बाचू खोए दे. और दूसर बड़े गोठा है कि कुष्ठ दवाई संगे संगे जे चो हाथ पाए ने असन होली से और हुन हाथ पाए के काया सीधा कर लो ने सीधा होए से अंड की मन और छांडून दिले उसने जाए से तो असन बीती के जल तेल उपचार ने बोले ठीक हो गए. तो ये जल तेल उपचार जोन ब्लॉक लेवल चो जिला लेवल चो अस्पताल मन ने ये जल तेल उपचार होता चो जोन बोले काम करे डॉक्टर आए हुन सांगे दे तो हुन जल तेल उपचार के घरे सरलगा करुक पड़ू है. तो असन करुन भातिया में ये जो हाथ पाए नस तो बीती के बचाव लाए सकूं.
1: अच्छा तो दक इतलो अच्छा ये कुष्ठ रोग चो जानकार अस्तुई और अच्छा सरसराले सांगलेस. मांतर दादा मैं ये बले जाने की तुम्ही गीत गोविंद बाट गेलो ने उन गीत गोविंद बल तैयार करू आस लिखो बले आस और गाऊ बले आस असन तो सुनलो बोला सर दखलो बोला से तो दक तुम चो नाव जसन है तो तुम उसनी तुम चलक बोले कोलिया असन कला बोला से तो असन कहीं गीत तुम चलक सुरता आसे जालखिन रेडियो सुन तो दादा दीर मुल्किन सुना दिलो ना. अच्छा
0: दख ये खूबे मचो तारीफ कर लीस मानतर खिंडिक खिंडिक काया है कि गांव चो लोग के चेता तो काजे कुष्ठ रोग के जना तो काजे कुष्ठ रोग ले बचा तो काजे. मैं बेरा पस्ता असने गीत गोविंद बोले तैयार करते रहो है और ये गोटोक मचो पहल लिख लो बीती आए आराम मिसुन एक गाऊ रहूं तो यही गीत के आले आम चो सुनिया भाई बहन मन सुनत
1: आले.

0: हाँ तो देख कोले दादा हाँ। गीत तो अच्छा रली ने रंगत हाँ। लागली द कितलो अच्छा तुम्ही गीत गोविंद बोले जानास और इतलो अच्छा जानकार बोला हास तो असन आमचो रेडियो सुन तो जितलो बोले भाई बहन मनास हो तुम मन के तुमचे बाटले कहीं बोले असन संदेश असन कहीं गोट अच्छा सांगो ले चाह सात तो किनिक सांगों दिया सुन तो लोग के
1: ये देख आप गीत ने बोले यार गोट ने बोले तो जितरो हो सके संदेश तो मैं बोल ले मंत्र सुनिया भाई बहन मन के मचो यही गुहार है कि कक्के बोले सूद नहालो दाग होए से नहाले नस नाड़ी ने कहीं वजन उठा तो बेरा खूबे दुखे से कोनी लगे ठटई होलो ने एकदम जीव गेलो असन दुखा होए से तो ये के देवभूत कर तो का जो मैं नी करा नहीं बोले करोत हनुमान चो मन है मानतर तुरंत डॉक्टर के दखाओत गांव पारा ने मितानी नासोत हनुमान के दखाओत गांव पारा ने आमचो उप स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनासे हुनथा ने जाऊन दखाओत और जसन डॉक्टर सांगे दे हुसन सर लगा दवाई खाओत तेबे मूर ने चे कुष्ट धरा पड़े दे और मूर ने चे कुष्ट धरा पड़लो ने हाथ पाए ने कहीं नुकसान नहीं हुए पूरा पूरा छांडे दे और जीतलो बेरा होले तो आम दवाई खुआन उन तो बीमारी तो गुचाऊ दे मानतर हाथ पाए अंटकी गलो भी तिक तो नवा आक रोक नहीं हो
0: नहीं हो
1: तो यसन होतले होगाए हो नहीं रहोत मूर ने इलाज करोत फोकहा ने इलाज मीरे से धरोत और डॉक्टर चो सांगलो गोट के धरुन भाती पूरा दवाई खाओत ते भी आमे आमचो बस्तर ले आमचो राज ले आमचो देश ले कुष्ठ बीमारी के लीली बांटा खेदवा और आमचो देश के कुष्ठ मुक्त बनावा और लोक कुष्ठ ले बाचुन रदे यही मचो सरासरी बेरा संदेश है।
0: हाँ तो दादा देखा तुम इतलो अच्छा कुष्ठ असन बीमारी चो इतलो अच्छा नंगत गोट मन के सांगलास ये गोट के सुनून जुतलो बोले गांव पारा चो दादा दीदी मुनास तुम मन के बोले फायदा होए असन लागे से सुनून बाती तो देख फेर के भी नवा विषय ले आमी तुम्ही भेटघाट हुआ तो आज का जे तुमके खूबे खूबे जुहार
1: तो मोचो बाटले तुमके आरु जमाए सुनिया लोग के हरक फेर खूबे खूबे जुहार।
2: हाँ दादा दीदी मन सुनला सुती दखन कितलो ए थरे नंगत गोट रे और जानकारी बीती छो गोट रे कुष्ठ रोग बीती छो ए बीती एता जानकारी रे अरे मन सांगत्रोत श्री शिवनारायण पांडे अरे मन संग भेट करोत सी आर कश्यप। तो दादा दीदी मन आले ये नंगत गोट संगे मचो विदा धर तो बेराबर होली तो कार्यक्रम बस्तर के स्वर सुन तो जमाए दादा दीदी श्यान सजन भाई बहन मन के मैं कुर्सो करे से राम राम।

बस्तर के स्वर, अभी आप हमारा ये दैनिक कार्यक्रम सुन रहे थे। इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र को। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम फोन इन किसानवाणी। प्रस्तुति है रुद्र प्रताप सिंह की।

0: हाँ तो आज सुनू, पहल फोन कौन करे से?
1: हाँ हेलो, फोन इन किसान वाणी।
2: जी सर।
1: हाँ जी नमस्ते मैडम।
2: हाँ सर, तो वही मुझे जानकारी चाहिए था कि टमाटर जो है लगाने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है।
1: जी जी जी बिल्कुल मैडम। मैडम
2: और कौन सी
1: बताएंगे
2: किस्मों को लगाना चाहिए?
1: मैडम सुनिए ना, पहले अपना नाम बताएंगे।
2: सीमा।
1: सीमा
2: जी सर।
1: कहाँ से बोल रहे हैं मैडम?
2: दंतेवाड़ा।
1: अच्छा दंतेवाड़ा से बोल रहे हैं। अच्छा आपका प्रश्न है कि टमाटर फसल लगाने का सबसे उपयुक्त समय क्या है?
2: जी
1: जी बिल्कुल मैडम। आज देखिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, विशेषज्ञ हैं, मैं आपसे इनका परिचय करा देता हूँ। ये हैं डॉक्टर ईशांत कुमार सुखदेवे, ये हैं विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि प्रसार कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा से। तो आपके सवाल का जवाब डॉक्टर साहब के साथ ले। डॉक्टर साहब सीमा मैडम के सवाल का जवाब।
3: धन्यवाद सिंह साहब। सबसे पहले नमस्ते सीमा जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि टमाटर की जो खेती है वो मूल रूप से जून और जुलाई के मध्य की जाती है। हमें इसका नर्सरी तैयार करना होगा। नर्सरी रेज्ड बेड जिसको हम लोग उठी हुई क्यारी कहते हैं उसपे लगाएंगे, या तो ट्रे आता है आजकल प्रो ट्रे, उसमें लगाने से ठीक होता है क्योंकि इसके टमाटर के बीज छोटे और बहुत नाजुक होते हैं, इसे सीधा खेतों में नहीं बोया जाता है। तो जैसे एक हेक्टेयर में हम खेती कर रहे हैं तो इसी अगर किस्म की बात करें तो 400 से 500 ग्राम का बीज लेंगे, ग्राम बीज, या हाइब्रिड में अगर हम जाते हैं तो 150 से 200 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और अगर बात करें हम उन्नत किस्मों की तो जैसे हाइब्रिड में हम अर्क सम्राट, उषा हाइब्रिड 2, अर्क रक्षक, काशी यमन जैसे वैरायटीज को उपयोग में ला सकते हैं। और भाई की जो दूरी होगी वो जैसे कि 4 से 5 पत्ती वाले होते हैं पौधे, मतलब 25 से 30 दिन पुराने हम कह सकते हैं, उन्हें मुख्य खेतों में लाइन से लाइन की दूरी में 60 से 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं जिससे कि उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। और इसके साथ ही साथ हम खाद का प्रबंधन देखेंगे तो 20 से 25 टन गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खेत की जुताई या तैयारी के समय इसे खेत में मिला देना चाहिए। और जैसे कि हम रासायनिक खाद की ओर जाएंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों का संतुलित इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक है। इसमें नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम और फास्फोरस भी 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करने से उपज में बढ़ोतरी होती है। और खासकर ये जो इसकी खेती है वो मल्चिंग के माध्यम से ज्यादा अच्छी होगी, मल्चिंग इन द सेंस की उसको हम कवर करेंगे प्लास्टिक की मल्चिंग उससे। और सिंचाई का इसका सबसे अच्छा माध्यम है ड्रिप सिंचाई, ताकि प्रत्येक पौधे को टपक सिंचाई के माध्यम से पर्याप्त पानी मिल सके। और जो पौधे होते हैं जो बढ़ते रहते हैं उनमें स्टेकिंग या सहारा देना जिसको हम टेकना लगाना कहते हैं हमारे तरफ, वो लगाएंगे कि पौधे क्योंकि खरीफ के सीजन में बारिश और हवा आते रहते हैं पौधे गिरे ना, इसलिए बांस और तार के सहारे पौधों को बनकर सीधा रख देंगे जिससे दे नहीं है और उनकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात खरीफ का सीजन है, मानसून का सीजन है, इसमें वर्षा होते रहती है समय समय पे, जो फल फूल और सब्जी के पौधे होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं तो फूल नहीं रुकने देना है, नहीं तो रूट रॉट या जल सड़न की समस्या हो सकती है। तो जल निकासी की बहुत और जहां तक इसके इतना सब करने के बाद बात आती है उत्पादन की तो 60 से 70 दिन में ये फल देना शुरू कर देता है टमाटर का जो फसल है वो। और ऑन एन एवरेज आपको 300 से 400 क्विंटल तक का हाइब्रिड अगर वैरायटी लेते हैं तो प्रति हेक्टेयर आपको उत्पादन मिल सकता है, ठीक है। और इसमें जो बीमारियां कीड़े आते हैं वो है कि फ्रूट बोरर जो मुख्य फल छेदक बोलते हैं इसको, वो फलों के अंदर घुसकर इसके अंदर का गूदा को खा जाता है जिससे फल सड़ जाते हैं और नुकसान हो जाता है फलों का। इसके लिए हम उनका नियंत्रण करने के लिए जैविक नियंत्रण में अगर हम जाएंगे तो फेरोमोन होता है वो जो अपने कीड़ों को आकर्षित करता है, या तो टमाटर के साथ साथ एक रो में हम गेंदे की फसल भी गेंदे का फूल वाली फसल भी लगा सकते हैं, तो वो कीड़े हैं वो उस तरफ आकर्षित होंगे और टमाटर के खेत में सीधा हमला नहीं कर पाएंगे। बात करूंगा मैं रासायनिक नियंत्रण की तो एक कोरोजॉन करके केमिकल होता है वो 0.3 मिलीलीटर पानी में मिलाकर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं।
4: ये है नया बदलता भारत जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है।
5: ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है, लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं।

0: प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है।
1: ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है जिससे हमें उससे बहुत फायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हम बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है।
0: अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं।
2: इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे।
0: साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों, किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है।
3: हेलो, फोन इन किसान वाणी।
4: हेलो।
3: हाँ, फोन इन किसान वाणी, कौन बोल रहा दीदी?
4: ये मैं गीदम से बोल रही हूँ।
3: गीदम से कौन बोल रहे हैं दीदी? बहन
4: गजमती नाग। सर, टमाटर लगाई हूँ, उसमें फूल आ रहा है पर झड़ रहा है।
3: अच्छा, टमाटर लगाए हो, फूल आ रहा है तो झड़ रहा है
4: जी।
3: इस समस्या का आप समाधान चाहते हैं, है ना?
4: जी
3: बिल्कुल कचबेती दीदी, इस आपके सवाल का जो जवाब है हम डॉक्टर साहब से लेंगे। तो डॉक्टर साहब आपने सवाल सुन लिया होगा
5: जी,
3: तो हमारे जो कृषक दीदी हैं बहन हैं इनके सवाल का तो जवाब देने का कष्ट करेंगे जी।
4: जी
5: ये मुख्यतः फफूंद जनित रोग के कारण होता है। इसमें कहीं ना कहीं अगर मिट्टी में देखा जाए तो पोषक तत्वों की कमी का भी एक कारण उसका कारण है, और नमी का असंतुलन भी इसका एक कारण है जो कि मिट्टियों में मूलतः पाया जाता है। अगर मैं बात करूं फफूंद जनित रोगों की या फंगल डिजीज जिसको बोलते हैं, उसमें हम अर्ली ब्लाइट जैसे कि मैं पिछले कॉलर को भी बता रहा था
3: जी जी,
5: उसमें पत्तियां पहले भूरी काली हल्के भूरे से काले धब्बे बनते हैं उसपे और पत्तियां पीली पड़कर सूखने और गिरने लगती है।
4: अभी क्या करना है?
3: अच्छा अभी क्या करना है जी बिल्कुल
4: हाँ
3: सर, अभी
5: उसमें ये करना है आपको कि जो पत्तियां हैं उनको तोड़कर नष्ट कर दें ठीक, जितने मतलब उनमें नीम के तेल का छिड़काव कर दें। केमिकल की बात करूँ तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है उसका भी फफूंदनाशक छिड़काव।
4: पत्तियां को तोड़ देंगे तो सर कब तक वो फिर फल देना स्टार्ट होगा?
5: उसके बाद आपका 10 से 15 दिन बाद फल देना शुरू हो जाएगा।
4: जी ठीक है सर।
3: हाँ तो कचबेती दीदी
4: जी जी,
3: तो देखा तुम जो सवाल से जवाब तो निरली होती ने आल, तो देख फोन कर ली दीदी। अरे खूब खूब जोहार है।
6: सुना सुना सुना किसान भाई बहन मन सुना सुतुर चो गोड,
7: फसल बीमा कर तो काजे हमेशा सुरता रखा गोड।
6: अकाल पूर लेरा धुका जसन अड़नाप चिपा, आरु कीड़ा थापा रोग राइले फसल बर्बाद होन गेले, बीमा तुमचो संग दे दे।
7: फसल बर्बाद हो नहाले कम हो उपजन, मीरे दे बीमा ले तुमके धन।
6: सरकार तुमचो काजे करली से कैक फसल बीमा योजना आनली से।
7: भारत सरकार चो फसल बीमा योजना हिसाब ने अधिसूचित खातो फसल जसन धान गहूं तिल आरु बरकार बीती पाक फर फसल आरु बेपार बीती फसल जसन डांडा नडेर मंचो बीमा होए से बीमा किस्ती पटा तो काजे सरकार बाटले पैसा कौड़ी चो सहायता मिरे से।
6: किसान भाई बहन मन फसल बीमा योजना चो लाभ धरा, आप लो ये तो समय ने हो तो नुकसान चो पूर्ति करा।
7: फसल बीमा योजना काजे भेट घाट करा आप लो जिला चो कृषि अधिकारी कृषि सहकारी समिति नाहले लगे चो बैंक शाखा ले।
6: अगर जानकारी काजे फोन करा किसान कॉल सेंटर के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर आए 1800-1800-1551, नाहले लागान करा www.farmer.gov.in।
7: फसल बीमा योजना चो संग जीवना न्याय दे हरीक उदीम चो रंग।

0: हेलो फोन इन किसान वाणी।
1: हेलो फोन इन किसान वाणी।
0: हाँ, जोहार दादा।
1: जोहार दादा।
0: कौन बोल सा दादा
1: जी? मैं ग्राम जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से किसान भाई बोला था। आदर
0: नाम क्या दादा?
1: सुरित रमेश साहू।
0: जी जी जी
1: जी सर। जी सर।
0: हाँ तो साहू दादा, हमारे साथ आज हमारे कार्यक्रम में विशेषज्ञ डॉक्टर ईशांत कुमार सुखदेव जुड़े हुए हैं। ये विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि प्रसार कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा से हैं। तो आज आपके क्या सवाल है दादा?
1: आज का सवाल ऐसा है आदरणीय, खेती बाड़ी से संबंधित है कि अभी बरसाती फसल जैसे अपने को बोना है धान वगैरह।
0: अच्छा।
1: और कहने का मतलब ये है कि सोयाबीन वगैरह।
0: हाँ।
1: तो उसकी तैयारी कैसे?
0: अच्छा, आप सोयाबीन का फसल लेना चाहते हैं और
1: जी जी
0: के लिए आप पूरी जानकारी चाहते हैं हमसे, है ना?
1: जी सर। जी
0: बिल्कुल साहू जी, आपके सवाल का जवाब आपको हमारे डॉक्टर साहब के माध्यम से बिल्कुल मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, साहू जी जानना चाह रहे हैं कि सोयाबीन की फसल लेने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतना है और कौन कौन सी विधि को अपना कर अच्छे फसल उत्पादन ले सकते
2: हैं। अच्छा जी, सबसे पहले उनको नमस्कार।
1: नमस्कार आदरणीय शांत महोदय जी।
2: जी जी नमस्ते सर। सबसे पहले जो सोयाबीन है वो जुलाई के प्रथम सप्ताह में और जून के अंतिम सप्ताह में इसकी बुआई की शुरुआत हम कर सकते हैं।
1: जी सर। जी सर।
2: और जैसे कि बीज दर की मैं बात करूं तो 30 से 35 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी आपको एक एकड़ के लिए।
1: जी सर।
2: ठीक है। और जैसे उन्नत किस्म जैसे आप इसमें लगाना चाहेंगे
1: जी,
2: AS 335, JS 95 60 और NRC 37, ये वैरायटीज बहुत अच्छा उत्पादन है इनका। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इन वैरायटियों का उपयोग करें।
1: जी सर। जी सर। और ये बीज जो है हमको अपने केंद्र में मिल जाएगा क्या सर, सोसाइटी में?
2: जी जी बिल्कुल, वहाँ पे उपलब्ध होगा। आप अपने नजदीकी लैंप्स में जाके
1: जी सर जी
2: विभाग के संबंधित अधिकारी से इस बारे में आप पूछ सकते हैं।
1: और जैसे धान भी बोना है सर जी, क्या है कि मैं थोड़ा सा लघु कृषक हूँ
2: जी,
1: कुछ धान भी डालना रहता है तो कौन से क्वालिटी का धान डाले जिससे हमको उत्पादन भी अधिक मिले और समय पर उसको खाने का उपयोग भी ले सके?
2: कितना एकड़ का क्षेत्र है आपके पास अभी?
1: मेरे पास तो सर 80-85 एकड़ है।
2: अच्छा, आपके पास तो बहुत जमीन है।
1: जी सर, दो जगह है सर, और एक जुनवानी में भी है। जुनवानी दुर्ग छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, जिला दुर्ग में आता है, और एक ग्राम भिलौरी 52 लाख जिला बेमेतरा में है।
2: जी जी जी। तो अभी हमारे कृषि विश्वविद्यालय से विक्रम TCR करके एक उन्नत तकनीक है।
1: जी जी।
2: ला सकते हैं जो अच्छा उत्पादन देगा आपको, मतलब आपका वैरायटी भी चेंज होगा। इसके पहले कौन सी किस्म लगाते थे?
1: इससे पहले तो क्या है सर, ये अपना राज राजेश्वरी धान बोया करता था, उसके बाद अपना वरना धान है, सरना मौसरी बोलते हैं जिसको।
2: जी जी जी, बहुत पुराना वैरायटी है। हाँ।
1: और HMT खाने के लिए, तो HMT में ज्यादा उत्पादन तो आता नहीं है उसमें।
2: हाँ, वो तो घर खाने के लिए ही ठीक है।
1: जी सर। जी सर
2: जी।
1: कुछ वैरायटी चेंज कर दूं क्या सर अभी?
2: जी?
1: धान के कुछ अगली किस्म का धान बोलूं क्या ऐसा है?
2: हाँ, वैसे अभी आपको लेट तो नहीं हुआ है, अगर बुआई करना चाहेंगे तो।
1: जी सर।
2: वैरायटी भी लगा सकते हैं और अर्ली वैरायटी भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
1: जी सर।
2: लेकिन आप कोशिश करिए, इतने दिन से धान लगा रहे हैं तो मिट्टी के सेहत के बारे में सोचते हुए कि उसको अब दलहन और तिलहन में बदलने के लिए, धान के बदले।
1: नहीं तो अभी मैं मक्का की खेती लगाया था सर गर्मी में।
2: जी जी जी।
1: मक्का की पैदावार तो क्या है सर, ये हमारे यहाँ बंदर अधिक है।
2: अच्छा अच्छा। हाँ।
1: और बंदर जो है अधिकांश क्षति पहुँचाया धरने, तो मेरे को ऐसा हो गया कि भूल के अब मक्का की खेती ना करूँ।
2: हाँ, हाँ,
1: ऐसा हो गया है सर जी, अत्यधिक बंदर है सर जी, और एक एक टीम जो है ना 4-5 ग्रुप में है बंदर।
2: हाँ।
1: और एक एक उनके ग्रुप में 100-125 ऐसे बंदर।
2: अरे बाप रे, बहुत ज्यादा है।
1: और अब चारों दिशाओं में है, नदी से घिरा हुआ है मेरा प्लाट जो शिवनाथ नदी। तो क्या है सर जी, अब खाने वाली वस्तु ही ना बहुत ऐसा हो गया है।
2: तो हम लोगों ने मतलब आपने खेत के चारों तरफ फेंसिंग या बाड़ का प्रबंध किया है क्या?
1: हाँ, फेंसिंग तार है सर जी, जाली तार है, उसके बाद उसमें झट का भी 3-4 लाइन के, तो पर भी बंदर बहुत अधिक परेशान।
2: जी जी
1: जी। छलांग लगा लगा के कूद जाते थे। 8-10 मजदूर लगाया था बंदरों के लिए। सीना टप्पर बजाओ, कम से कम गुलेल वगैरह लेके उसकी सुरक्षा व्यवस्था करो। ऐसा करके फिर भी वो क्या है कि बंदर जो है मानते नहीं थे।
2: हाँ, वो तो गुलेल और बाकी चीजों के लिए तो ऐसा है कि 1 से 2 आदमी या लड़के हमेशा आपको लगेंगे उसमें, तो वो करना तो मेरे ख्याल से मुश्किल है।
1: जी जी जी जी। तो
2: जी।
1: मेरा वो काम ही नहीं आया सर, सुरक्षा जो है
2: जी।
1: मैं कहा वह किसानों के ऊपर तो सभी जीव जंतु निर्भर रहते हैं, चलो खा गए तो खा गया, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा ऐसा मेरे मन में विचार आ गया।
2: जी जी जी हाँ, वो मक्का का फसल के साथ वही दिक्कत है।
0: तो साहू जी, आपके सवाल का जवाब तो आपको मिल गया होगा।
1: जी सर, जी सर।
0: हाँ जी, आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर जी, साथ ही साथ हमारे निशांत महोदय साहब जी को, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जो हमको बहुत अधिक जानकारी दिए, उनको भी धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे उद्घोषक महोदय जी, आपको भी धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे आकाशवाणी केंद्र को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी जी धन्यवाद दादा, जोहार। हेलो, फोन इन किसान वाणी।
3: हेलो।
0: हाँ, फोन इन किसान वाणी।
3: जी
0: हाँ, कौन बोल सी दादा?
3: मैं समलू राम बघेल बोले।
0: समलू राम बघेल, कहाँ बोल सी दादा?
3: गाड़मगुड़ा चिंगपाल ने।
0: गाड़मगुड़ा चिंगपाल ने। हाँ, तो समलू दादा, अले जुआर ना सबले पहल मैं तुमके जुआर बोले आकाशवाणी बांट ले।
3: अले तुके बोल जुआर ना।
0: तो देख समलू दादा, तू फोन कर लीस तो
3: कहीं वाले
0: सवाल आसे वे। तो देख आज जोन हम जो आकाशवाणी में आये नी, जोन हम जो संगे जोन विशेषज्ञ जानकार बसला,
3: अले
0: ये मन देखा विषय वस्तु विशेषज्ञ आत कृषि प्रसार या विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा ले ने। वो ये आज जो जोन सब्जी जोन आज खरीफ जो जोन मौसम है समझो भी ने सब्जी है ये सब जो जानकारी तो ये साहब ले मिल सके थे। तो आज तुम काय सवाल है दादा?
3: तो ये तो खरीफ बोले बरसात दिन पानी मार तो दिन अमरे से, तो ये मतलब अमी ये भी कौन कौन से फसल मन लगा लेने ज्यादा अच्छा रहे दे उनसे बारे में सांग लेने अमी बोले अच्छा मतलब लगा तो काजी वाट कर तू।
0: बिल्कुल बिल्कुल जानवा, और कई सवाल तुम जो दादा?
3: ये तो लगन बती रोग राई मन का

0: सारी चीजों का
1: जी हाँ,
0: समावेश हो। तो हम बात करते हैं उसमें बाजरा फसल की, यह सूखा प्रतिरोधक फसल है
1: हाँ,
0: जो कि कम पानी में भी ये उत्पादन देता है
1: हाँ, और
0: इसका उत्पादन भी। और इसके साथ ही साथ जैसे कि ज्वार की फसल है, सोरघम जिसके कहते हैं हम, और सोयाबीन भी कम पानी में उत्पादित होने वाला फसल है। जहाँ बाजरा की बात करूँ मैं, तो इसके लिए जून और जुलाई का महीना उपयुक्त होता है बुआई के लिए। और इसके लिए मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी, अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। और इससे मात्र 30-40 से 60 सेंटीमीटर तक की वर्षा की ही आवश्यकता होती है, जिससे कम पानी वाले क्षेत्र में भी इसे आसानी से उगाया जा सकता है। और इसकी मैं उन्नत किस्मों की बात करूं, जैसे हम बाजरा में जाते हैं तो इसकी अवनी शक्ति और PHB 2168 पायनियर, ये सारी वेराइटीज है जिनका हम उपयोग लगाने के लिए कर सकते हैं। और जहां तक इसके बाजरे के महत्व की बात करूं मैं, तो इसमें पौष्टिक गुण बहुत बहुत आयात रूप से पाया जाता है। इसमें प्रोटीन है, फाइबर जिसके रेशा कहते हैं हम, जिसमें आयरन है, कैल्शियम का एक बहुत बेहतरीन स्रोत है, इसमें ग्लूटेन फ्री होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर के लिए पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा फसल है ये। अब इसका दूसरा उपयोग है कि हम इसे चारे के रूप में भी अपने पशुओं को खिला सकते हैं। पशुओं में खासकर गायों में दूध का उत्पादन बढ़ता है और उनकी पौष्टिक तत्वों की उनको भी पूर्ति होती है।
1: जी
2: हाँ दादा, और कहीं बोल जानू साहब, डॉक्टर साहब
1: मैं और बोलते रहे, मतलब बाजरा से जी आज, मतलब ये तो बाजरा बोलिए सब बोलिए, सब्जी के बारे में मतलब असन कुछ और नहीं आए, मतलब बरसात में बोलते सब्जी उब्जी करुआत का है उनके बारे में, मतलब सब्जी जो बोल कौन भी थी, मतलब अच्छा, मतलब कम पानी कम रोग ने, मतलब खर्चा ने बोले।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझो दादा। तो सर ये जानना चाह रहे हैं कृषक भाई कि सब्जी फसल में अभी कौन सा फसल ज्यादा कृषक के लिए उपयुक्त रहेगा, इस समय उपयुक्त रहेगा और कम से कम लागत करके ज्यादा उत्पादन ले सके, ये सर थोड़ा सी इसकी भी जानकारी लेना चाह रहे हैं। जी
0: बिल्कुल, मैं इसके बारे में जानकारी दे दूं। जैसे सब्जी वर्ग की फसलों की आप बात कर रहे हैं, इसमें टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, करेला हो गया, मुख्य रूप से इन फसलों को हम ले सकते हैं जिसमें कम लागत में अधिक उत्पादन हमको मिलेगा। जैसे कि टमाटर के बारे में मैंने पहले भी कहा, ये बहुवर्षीय फसल है और इसका लागत कम है और इसमें आपको बाजार में इसका मूल्य भी मिलेगा। और ये 12 महीना चलने वाला सब्जी है, 40-50 रुपए किलो हमको इसमें बेच सकते हैं। और जहां तक बात करूं मैं भिंडी की, तो भिंडी भी मानसून में लगाने वाला फसल है, इसमें भी कम पानी की आवश्यकता होगी और 1 से 2 गहरी जुताई करके हम इसको लगा सकते हैं। इसकी वैरायटीज में बता दूं, अरका नामिका, वर्षा उपहार, भिंडी की अगर मैं बात करूं तो इसका भी मार्केट वैल्यू हमको बहुत अच्छा मिलेगा अभी जैसे मानसून के हिसाब से हम बात करें तो। और बात करते हैं करेले की, तो करेला भी जून और जुलाई में लगने वाला सब्जी का फसल है। इसका बीज दर 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ होता है अगर मैं संकर किस्मों की बात करूं तो। इसमें भी अगर हम वैरायटी देखेंगे तो पूसा हाइब्रिड 1 और 2, कोयम्बटूर लॉन्ग, कल्याणी, प्रिया, इनमें मचान विधि से हम अगर करेले की खेती करें तो इससे उत्पादन भी अच्छा होगा और फलों में गलने और सड़ने की बीमारी वो भी नहीं होगी, इससे फल हमको बहुत अच्छा मिलेगा करेला का जो सब्जी है वो। और जहां तक बात करें इसके उत्पादन की, तो 1 एकड़ में 180 से 250 क्विंटल हमको करेले का उत्पादन मिलता है। ये 60 से 65 दिन की फसल होती है, इसे तुड़ाई करके हम डायरेक्ट बाजार में इसे विक्रय करने हेतु ले जा सकते हैं, इससे किसान को तुरंत आमदनी होगी।
2: जो इसकी बीमारियां भी सर कुछ उनका भी पूछ रहे थे।
0: अच्छा, इसके जैसे कीट बीमारी की बात करें तो फलों में जनरली फ्रूट फ्लाई जिसको फल मक्खी माहू वगैरह का प्रकोप ज्यादा होता है, तो इनके रोकथाम के लिए पीले मोजेक वायरस जैसे होता है, सफेद मक्खी होता है, फल छेदक होता है, तो इसके लिए हम इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर सकते हैं और साथ ही साथ नीम ऑयल का भी छिड़काव हम कर सकते हैं जैसे जैविक में जाएंगे तो।
2: तो
0: आप जान ही रहे हैं गोबर खाद और वो तो बहुत अच्छा है
2: कंपनी। तो समलू भाई,
1: मैं और गोटा फसल लगा लेना, एक लास्ट सवाल है।
2: हाँ बिल्कुल पूछा।
1: तो ये मैं बैंगन लगा ले से।
2: अच्छा,
1: बैंगन डाले से फल ऐसे, मतलब उनके फल एकदम फल में छेदा मन हुआ है, तो मतलब एकदम सटीक, मतलब दवाई मतलब का है, मतलब स्प्रे बलुआ से
2: तो
1: कर ले अच्छा रहे दे,
2: बीमारी नहीं हो सको ने।
1: हाँ बीमारी मतलब फल उल बोले ज्यादा बैंगन ने कीड़ा हुआ तो उनमें रोग
2: कम से कम हो और अच्छा
1: उत्पादन हो।
2: बिल्कुल बिल्कुल अच्छा हो जानवा। डॉक्टर साहब, हमारे कृषक भाई अभी वर्तमान में बैंगन का फसल ले रहे हैं और फल आने की स्थिति में है, फसल आने की स्थिति में है, तो उसमें जो कीड़ा लगते हैं सर, काला काला जो छेद होता है फल

0: फसल में, तो वो न हो या कम से कम हो, उसके लिए क्या करें, क्या उपाय करें, वो जानना चाहते हैं। कौन सी दवा का इस्तेमाल करें या क्या कौन सी विधि करें कि उससे नुकसान कम से कम हो और फसल ज्यादा अच्छा निकल कर आए। जी
1: देखिए, जो बैगन का फसल है और जो उसका फल है, इसमें शूट और फ्रूट बोरर, जैसा कि वो बोल रहे हैं, फल और तना छेदक, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और ये होता ही है बैगन वर्गीय फसलों में। तो इसके नियंत्रण के लिए हम कोशिश कर सकते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं, जैविक और यांत्रिकी नियंत्रण हम कर सकते हैं। जिन टहनियों मतलब तनों में फल छेदक दिखाई दे रहा होगा, उन्हें तोड़कर तुरंत नष्ट कर दें, ठीक है, पहला। और दूसरा है कि जो फेरोमोन ट्रैप, में फेरोमोन ट्रैप जिस टमाटर के लिए भी मैंने बताया था, 4 से 6 फेरोमोन ट्रैप लगा दें, तो क्या बोलते हैं, नर पतंगों को, नर कीटों को अपनी आकर्षित करेगा, और 1 एकड़ में 4 से 6 फेरोमोन ट्रैप लगा दें। और तीसरा है कि नीम का तेल फसल पर, जो 2 से 3 मिलीलीटर नीम का तेल का पानी मिलाकर 1 लीटर में छिड़काव कर दें। और सबसे मतलब अंतिम है कि इसमें फसल चक्र आप हर साल अपनाएं, जैसे इस साल आपने बैगन लगाया है तो दूसरे साल उस खेत में बैगन ना लगाएं, किसी और फसल को लें, बीच बीच में फसलों को बदलते रहें। और जहां तक बात करूंगा मैं रासायनिक नियंत्रण की, तो इसमें एक है प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन का मिक्सचर है, इसे इल्ली के नियंत्रण में काफी असरदार माना जाता है। और इसी में है स्पेनोसेट 45%, एक मार्केट में इसी नाम से आता है, ये 64 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से इसको उपयोग करें, छिड़काव करें। और तीसरा है बीटा साइफ्लुथ्रीन, उसमें इमेटाग्लोप्रिड मिला करके इसका भी छिड़काव करें, जिस कीटों को आने में लंबे समय तक ये रोकता है, तो ये आप नियंत्रण कर सकते हैं।
0: तो शमलू भाई
2: जी, हाँ हाँ,
0: तुम्ही सुनला सोती ने डॉक्टर?
2: हाँ, मैं सुन ले दादा,
0: बीती उपाय गोटमन सांगला सफाई सुनला सोती ने?
2: तो नहीं, अच्छा सांगला, अच्छा दवाई सांगला, ये सब प्राणवाती कर लेने अच्छा लागली,
0: फुल अच्छा लागली। और देखा तुम फोन करलास,
3: रोजे मंगलवार दिन 3:30 बजे ले धरुन भाती 4 बजे तक फोन करतो काजे, नंबर आए 2222 और 6 6 6। फोन करतो पहिल जगदलपुर चो STD कोड 0772 लगाओ नी भूल का। अले दाय मखे दिया विदा, जुहार।

0: फोन इन किसान वाणी। अभी आप ये प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रस्तुति थी रुद्र प्रताप सिंह की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम।
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: जीएसटी काउंसिल बुधवार नेट इन घोषणा की तकी सरकार सीमेंट तपोर्रो जीएसटी मोला 28% तुन कम किस इंजे 18% की सिकता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम मायना दुमिद मिंदे ई लेकिन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके ओंडले कटा बंडाकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% जीएसटी लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नामता ईटा और बंडाकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेन मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लोकगीतों के कार्यक्रम जोनी उजर में अब लीजिए सुनिए दिलीप कुमार पांडे और साथियों के गाए हल भी लोकगीत।

0: जोनी उजर बस्तर के लोकगीतों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दिलीप कुमार पांडे और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। एफएम बैंड और मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।

0: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र को। रात्रि के 8:30 बजे हैं। पीला मन काजे कोट, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जानकारी दे रहे हैं मिनेश कुमार पानीग्राही।

पिलामन का जे गोठ कार्यक्रम ने सफाई पिलामन के खूबे खूबे मया आरु लाड़। पिलामन दखा ये कार्यक्रम ने तुमचो का जे खूबे नगत नगत कार्यक्रम मन के अंतर उवाट करलू से। असन तो सफाई पिलामन स्कूल ने जाऊन कई बरंचो ज्ञान ध्यान चो गोठ के शिक्षास, असने पिलामन चो गोठ कार्यक्रम ने तुमचो का जे रोजे दिना ज्ञान चो बाढ़ती काजे तीज तिहार संस्कृति शिक्षाविद महापुरुष कवि लेखक क्रांतिकारी असने मंचो गोट के धरुन एवं से। पिलामन आमचो देश भारत देश आए और आमचो देश कृषि प्रधान देश है। आजादी चो पहिल आमचो देश के मुगल मन गुलाम बनाला, फिर अंग्रेज मन गुलाम बनाला। ये मन संगे लड़तो काजे आमचो देश ने बड़े बड़े क्रांतिकारी होला और देश चो आजादी काजे लड़ला। हुसने गोटक माने आमचो देश चो स्वतंत्रता संग्राम काजे लड़ाई करला। ये मनात पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 ने जेबे भारत के आज़ादी मिरली माने भारत के स्वतंत्रता मिरली तेबे पंडित जवाहरलाल नेहरू आमचो भारत देश चो पहिल प्रधानमंत्री बनला। पंडित जवाहरलाल नेहरू चो जन्म 14 नवंबर 1889 ने कश्मीरी पंडित परिवार ने इलाहाबाद नावचो शहर ने होली जेके आमी प्रयागराज बले बलों से। पंडित जवाहरलाल नेहरू पिलामन संगे मया खूबे रहे एक आजे पंडित जवाहरलाल नेहरू चो जन्मदिन के आमचो भारत देश ने बाल दिवस रूप ने बनाऊ से। एमन पिलामन के गुलाब चो फूल मानोत एक आजे पिलामन एमन के चाचा नेहरू वाले बलोत और एमन चो पिलामन संगे मया होतो के चाचा नेहरू नाव ले वाले जानतोर हो से। एमन चो बाबा चो नाव बैरिस्टर मोतीलाल नेहरू और आया चो नाव स्वरूप रानी रहे। एमन चो पहिल मूर पढ़ाई घर ले होली और हाई स्कूल चो पढ़ाई काजे इंग्लैंड गेला। होता जाऊन कैम्ब्रिज चो ट्रिनिट विश्वविद्यालय ले स्नातक चो पढ़ाई करला और लंदन चो इनर टेम्पल ने बैरिस्टर बनला। हेरो और कैम्ब्रिज ने पढ़ाई करतो के एमन के 1912 ने बार एट ला चो उपाधि भले मेर ली। भारतीय स्वतंत्रता चो लड़ाई ने महात्मा गांधी चो दखलो बाटने हिंडला और सत्य और अहिंसा चो बाटने रेंगुन भारत चो स्वतंत्रता संग्राम ने भाग धरला। ये मन चो और बोले नगट गोठमन के मैं आने दे तो सुनो गोटो गीत के।

फिलामन 1920 ने प्रतापगढ़ चो पहल किसान मोर्चा के संगठित करला, बल्लो ने संगठन बनाला। 1928 ने लखनऊ ने साइमन कमीशन चो विरोध ने घायल होला और 1930 ने नमक आंदोलन ने यमन के गिरफ्तार करला। 1935 ने अल्मोड़ा जेल ने रौन भाती यमन गोटोक आत्मकथा लिखला। यमन स्वतंत्रता संग्राम ने नवहार जेल गेला। पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्व चो कई देश ने बले बोलला, तेवे यमन चो पहचान अंतर्राष्ट्रीय नायक रूप ने बले होली। भारत चो स्वतंत्रता संग्राम चो लड़ाई ने कई खार जेल गेला और जेल ने रौन भारत की खोज नाव चो पुस्तक बले लिखला। स्वतंत्र भारत चो पहल प्रधानमंत्री चो रूप ने यमन चो उद्घाटन भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी आजी बले लोग मन के भाई से। यमन चो लाफी चो सोज वाट ने भारत ने कई शैक्षणिक तकनीकी और चिकित्सा संस्थान मंचो स्थापना होली। 1942 ने भारत छोड़ो आंदोलन करते करते यमन के गिरफ्तार करला और 1945 ने छाड़ला। चाचा नेहरू आपलो जीवना ने पंचशील चो सिद्धांत ने जीवला और 1954 ने यमन के भारत रत्न सम्मान बले मेरले। 15 अगस्त 1947 के भारत देश के जेबे आज़ादी मेरली, प्रधानमंत्री पद का जे वोट होली। वोट ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी के खूबे वोट मिरली। मांतर महात्मा गांधी चो बलतोर के दोनों माने बल्लो ने सरदार भाई पटेल और आचार्य कृपलानी नाव वापस धरला और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत चो पहल प्रधानमंत्री बनला और चार हार देश चो प्रधानमंत्री रला। 27 मई 1964 के यमन चो मरनी होली, तेवे तक यमन पद ने रला। पंडित जवाहरलाल नेहरू चो जीवना ने लोकतांत्रिक परंपरा के मजबूत करतोर, आम चो राष्ट्र और संविधान चो धर्मनिरपेक्ष चरित्र के बनाउन संगातोर, अलग अलग योजना ले भारत चो आर्थिक व्यवस्था के मजबूत करतोर यमन चो मूल उद्देश्य रली। संगे संगे शिक्षा और उद्योग के बढ़ावा देतोर बले यमन चो मूल उद्देश्य रली। पिलामन असने कई एक महापुरुष मन रला जोन आमचो देश चो आजादी काजे कितरो मुश्किल ने लड़ाई करला और आजी आमचो देश स्वतंत्र होली। आजी आमी सफाए लोग हरी कुदिम ने रहूं से, काय रसिया जीवना के जीवों से, कमाऊं नगत खाऊं से। असने पिलामन तुमके बले नगत नगत पढ़ाई करतो रहे, ये महापुरुष मंचो सत्य और अहिंसा चो बांटने आम के हिंडतो रहे, अड़रा काम के नी करतो रहे, हिंसा चो बांटने नी रेंगतो रहे, नगत माने बनून देश चो बाढ़ती काजे काम करतो रहे। आजी मैं इतरी गोट के सांगुन विदा धरे से, जातो पूरे जमाए पिलामन के मचो बाटले खूबे खूबे मया और लाड़।

0: इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, प्रस्तुति थी मिनेश कुमार पानीग्राही की।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेस मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल

0: धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए।

0: राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अभयम शरद चंद्र ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अल नीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के

0: गांवकारी भाई बहन मन खुबे खुबे सेवा जोहार जसन की आपन मन के आमी बेरा पस्ता कई कसन बोले गांव ने जाऊन बाती उता चो पूरा जो कहनी किया है गोट बात करून बाती आमी सुनाऊ से असने ची आजी में गांव नेता नार ने इले से आरुता पर्यटन स्थल आसे और ये कई जो नौजवान जो लेका लेकी मन समिति बनान बाती बोले ने काम कर सो तो असने में गोट बात करें से सब लिया तू चो नाव
1: जोहार मैं फूल सिंह नाग सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति सो सदस्य है।
0: अच्छा तो फूल सिंह ये सांग जैसन की ये जोन वन संसाधन समिति जो बना लो कितलो दिन सुन
1: ए दुई महीना वैसे।
0: अच्छा दुई महीना वैसे
1: जी हमी जो दावा करते बीत्याय वर्ग 2018 ली स्टार्ट करून रहूं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलली तो आम के जो रिजल्ट मिलते बीते खूब संघर्ष लगली तो 2022 ने हमी दावा स्टार्ट कर लू तो 2023 ने आम के अधिकार पत्रक मिलली।
0: अच्छा
1: आर समिति अभी दुई महीना वैसे गठन करूँ।
0: अच्छा तो ये वन संसाधन समिति जो अधिकार पत्र प्राप्त कर तू काजे बोलू बे तुमके काय काय करूक लाय पड़ली कहाँ मिलू काय काय कागजात कसन करला
1: ए बे जो वन अधिकार कानून के तो आमी पहले जान लो जो ऐसे प्रशिक्षण कुबे जो 2018 ने कांकर गेलू कांकर ने सीखू नीलू सीखून बातें आमी दाह करून दखलू लेकिन नहीं होली फिर पास काय लून जो 2018 ने उन बार घोषणा पत्र ने सरकार वाल घोषणा पत्र ने लिखा रेखा ले फिर आम से स्तर ने आमी जो कर लू आम के जो सूचना देते रहा है 4-5 सूचना देते रहा है एचडीएम ऑफिस और वन परिक्षेत्र।
0: अच्छा।
1: उता जो सूचना 5 अलग अलग रहा है उनके दो जग फोड़ है और फिर जो गांव ले सीमा लगुन रहा है उन गांव के बोल आम के दुख पड़वा है तो उन मन के बोला आग दे तोर खूब जरूरी रहवा है।
0: अच्छा तो बोले ने ये जो वन संसाधन अधिकार जो समिति बना तो काजे बोले तुम चो बोले कसन विचार कहाँ ले प्रेरणा मिली
1: उन्हीं जोन ये भी मैं सांग ले कांकेर जाऊन आमे टर्निंग धर लू फिर पासे ले असनी सामाजिक कार्यकर्ता मन आम के सहयोग कर ला।
0: अच्छा।
1: तो फिर तुम चो दावा कर तो बोला तो आमी दावा कर लू। आओ
0: दावा कर तो फिर कितलो 2018 ने दावा कर लस्का।
1: आओ आमी 2018 ने बोल दावा करू लेकिन सक्सेस नहीं होलू।
0: अच्छा।
1: आओ आम के सफलता नहीं मिलली।
0: हां बोले सफलता नहीं मिल तो कारण काय रे।
1: हां उदल दाय उतलो आमी जोन कागज दरुन जोन विभाग ने बोल जाते रहूं ये काय हुआ ये कसन ने तुम के मिरे दे असन विभागी वितामन बोल गोटिया तर बोलते रहो तो आमी उदलदा सक्सेस नहीं होलू।
0: अच्छा आओ पाछे फिर बोले ने कसन समझा लाज भी उन मन के काय कानून कायदा कानून कायदा कसन
1: ना उन उनी सरकार बाटले बोले और समाज बाटले बोले जोन प्रशिक्षण होते रहे तो उता प्रशासन संगे असन ट्रेनिंग ओली आसना ने तो उताले पासे दावा करू मुरियाला।
0: अच्छा
1: आओ तो उन मन संगे आमी बोली स्टार्ट कर लू तो आमी बोली स्टार्ट कर लू तो आम के फिर पासे जो 6-7 महीना बाद जो अधिकार पत्र लगभग मिल ले।
0: अच्छा अच्छा ये जो वन संसाधन जो समिति गोटक क्षेत्र हो से तुम जो पंचायत आए की कसन है
1: नहीं ये पंचायत से नाम नहीं है आम तो जो आम तो नेतानार पंचायत ने नो पारा पड़वा है।
0: अच्छा
1: आओ 8 पारा उताले जो गोटक आम से गांव ले कुबे दूर आए बामना रास उन अलग सीए पार का जो दावा कर ली से और आमी 7 पार से लोग गोटक दावा कर लू से उन ग्राम सभा नेता ना राम ने आसे जो अधिकार पत्रक मिर ली से।
0: अच्छा
1: हाँ
0: तो बोले ने एचो जो क्षेत्र एरिया बोले ने कसन तुम्हें कर सास नाप जो कसन होए
1: ये बे उन तो 7 पार से के गोटक मिर लो रासे एता जो ए बे आमी एता जो आगे प्रबंधन कर ले पारा पारा वाइज बाटू आसन सोच लू से।
0: अच्छा।
1: उन पारा से उन एरिया दखे देसन।
0: अच्छा।
1: तो ए बे तो समिति गठन कर ल रासे और बैठक करून करून ग्राम सभा करून करून उनके आमी निर्णय करून दे ए बे तो दुई पारा से लोग जंगल बल ए बे राखा कर दे और उनसे संगे संगे ए बे आमी उन्हीं जोन ग्राम सभा नेता नारसो सी पार क्षेत्र एरिया सो जोन बिजली पारा और गेहूं पदर मिलून बाते एबे गोटोक आमी उन उइदिर पर्यटन नाम ने पर्यटन चलाऊ से।
0: अच्छा आओ। अच्छा बोले समिति चे लोग मिलून बाते
1: आओ।
0: अच्छा फूल सिंह ये सांग जसन की ये जसन गोटक पर्यटन उदिर नाम छे ये बल गठन करलास तो वन संसाधन अधिकार पत्र मिरले ने बोले तुम चो जो आय बोलो जितलो बोले ये चो काय फायदा ये ताचो तो लोग का जो हो सके जाले
1: ये ता तो ये भी दुख मिरे से ही जो ये भी पर्यटन चालू कर लुसे ये ता लेवल कुछ दुई गांव के मिरे से पूरा ग्राम सभा काजे बोले काई उन करूं दे उनसे संगे संगे ये भी दूसरा गांव काजे बोले जो जंगल मीर तो वनु पज उनके उनसे काजे बोल काम करूं दे फायदा दिला तो काजे यार पंचायत बाटले बोले जोन बोले आम चो जो जंगल चो काजे योजना से भी उनके धरुण बाती एबे तो समय ने आमी काम करूं आ फायदा दिला सो काजे अरे लोग एबे कुबे लोग बाहर काम करू बोल जावते था सो लोग तो लेका मन तो उन मन के बोल रोक तो काजे काई मन रेगा के अच्छा करा तो प्रयास करूं दे
0: अच्छा हाँ और जसन की फूल सिंह ये तुम चो नया नया गठन होली से पर्यटन स्थल बोले नोवा है आ तुम चो वन संसाधन समिति बोले नोवा है ते चो सीख तो काज तो बोले ने खूब सीखू बोल लागे दे काय असन कहीं प्रशिक्षण कहीं सभा असन होते रहे से तुम चो
1: सामाजिक स्तर ने बोले होते हुआ है और ये भी जोन प्रशासन ने बोले अगर प्रशिक्षण कार्यशाला कर दे तो तामी जाते सी रहो और जाऊन बाती सीखू ने उन्हें ता गांव ने सांग तर प्रयास करूं दे और ये जोन बोल उन प्रशासन बोल खरा हुआ है तो उता आमी जातो काजे तैयार आसु आमी खूबे सीख तो काजे कोशिश करूं से
0: अच्छा। तो अब तक बोले ना कहाँ कहाँ गेला सास तुम छो समिति से लोग
1: समिति से लोग एबे कुछ दिन पहले महाराष्ट्र सो देवाजी तोपा दादा एउन रे उन प्रशिक्षण ने बोल जाऊन रो
0: अच्छा।
1: जाऊन रो
0: बोले उता बोल कहीं ना कहीं असन सीख
1: खूबे सीख मिरली उन आपलो अनुभव आपलो गांव सो पूरा सांग लो तो आम के बोल अच्छा किंडी अच्छा लाग ली आमी बोल असना से ना आमी बोल करूं आ बोलूं सोच लो
0: अच्छा।
1: अरे बे ग्राम सभा वाले उता आमी बात सुनगाऊं दे
0: अच्छा हाँ तो बोले ने इतलो अच्छा तुम चो सोच ओली से बोलू वे ये के और अच्छा बड़ा तो काजे पर्यटन लोग चुए तो मनमन चो सुविधा काजे बोले काय काय असन विचार सोच ला सा जाने
1: ये बे उधर पर्यटन स्थल काजे तो ये ता तो ये बे आमी ये बे पिलाल ने बम्बू राफ्टिंग चले से तापा बोलुआत और पिकनिक के तो लोग काजे स्थान बना लु रासे
0: अच्छा।
1: और ये दुई चीज चले से और उन बात जो झरना से ना से छोटे भी तो उन बात घूम तो काजे उन बोल स्थान ना से और ये तो समय ने आमी नौका भी यार और ना बोला तू ता घूमवा तून बीती और फिर कैंपिंग नाइट कैंपिंग बोलवा उन बीती कला करा तो काजे सोचूं से
0: अच्छा। अरे ता तुम जो ये समिति ने बोलू बे कहीं बाले लेके बोल जुड़ ला सा
1: हाँ महिला मन बोला सत तो उन मन चार जान हाँ
0: अच्छा बोले उन मन जो भागीदारी काय रहे से जाल काय काम
1: उन मन के ये पे नया नया गठन होली से एक आर असन बसुन रहो उन मन के सांगलो रासे तुम्ही ये पे जोन ये ता आमी तो पूरा ही पॉलिथीन बंद करूं से जोन कटरिया उन बाटले तुम्ही ये ता ये उन बाती रोजे सीला उन दोनी बना उन चो काम तुम्ही करा से असन उन मन के सांगलो रासे
0: अच्छा।
1: और असन बोल जाए ये ताले जोन उन मन तो उतलो सीलुक नहीं सकत चार जन महिला मन तो बाकी घर घरे बोले आमु सिल तो काजे सांगलो रासे
0: अच्छा। हाँ तो जो पर्यटक मन ऐसो तो उन मन के यही दोनी पत्रिक दे
1: उन मन आप लान ला से तो ठीक है जो आम सो जो फत्ता ले बंत भी थी अगर नी आन ला से तो ये तैले उनके तुम्हें सोंगा ये तैले गेना सन आमी सांगूंगा
0: अच्छा। हाँ बोले ने ये जो निस्थान है प्रदूषित नहीं हो बोले
1: हाँ
0: अच्छा
1: आमी पूरा जसन आसस निरो एता जिल्लुली उतलो नी पकावसन आमसो
0: अच्छा
1: समिति सो नियम बले आर आमसो जोन अच्छा रो बोलुन सोजुन संगालो रासे तो उनके असनी रो बोलुन सोजलो रासे
0: अच्छा। हाँ तो और जसन की अभी वन संसाधन समिति ने कई गांव मन ने बोल बनाला से तो हन मन का है कि होता जितलो बोले रान बनले मेर तो जोन बोले उपज आए ये चो बोल कहीं संग्रहण करून बाती समिति विकसित कहीं ऐसा बोल तुम चो
1: ये भी शुरुआत नहीं होली से लेकिन करूं आए सु सीजन तो इमली आसे ये तो समय ने उन सोसुन दे ग्राम सभा तन बात संगा हुंदे एबे समिति संगे कोर टीम बसुन बाती एबे आमी उन सब गोट मन गोटे आउन देता
0: अच्छा हाँ हाँ तो दक फुल सिंह दक तू संग अच्छा गोट बात होए से ना बलन तू पढ़ा लिखा कितलो आसे जाने
1: मस बीए फाइनल ओली से
0: बीए फाइनल
1: हाँ
0: अच्छा दक कितलो पढ़ा लिखा आसे सार तुम चो जोन पढ़ा लिखा चो कारण ने कहा कि ये जोन पर्यटन स्थल गांव चो उन्ती बाढ़ती चो जोन सोच होए से बोलू बे और तुम चो पंचायत ने बोलू बे नेता नार ने असन कितलो पढ़े लिखे लेखा लेखी मनास होता है
1: पढ़े लिखे असनी कॉलेज स्तर ने तो ज्यादा लोग नहीं आते बे आम से पीढ़ी आए तो गिनती तो नहीं आए जनसंख्या खूबी आसे ता 450 घर आसे ऊपरे आसे 450 जनसंख्या बोल 3000 बोल हम रुक सके तो उन चक्कर नुतलो लेकिन आस बारी तक पढ़ ला से कॉलेज ने एबे गिनती तो नहीं आए
0: हाँ अच्छा पूरा जसन की तू जितलो बोले वन संसाधन जो क्षेत्र आसे बोले ने काय काय असन संसाधन मन आसे जे चल काय की पूरा गांव चो लोग रोजगार में रुकला सके दे
1: आम से ताने जो जंगल ले मिर्त बीती बल्ले महुआ से और आम और सरगी
0: अच्छा
1: हाँ तो ये आम से तान खूबे मात्रा ने मिर्त बीती ये आसे और गांव भीतरे तो करंजी और इमली ये गांव भीतर आसे
0: अच्छा अच्छा फूल सिंह सरासरी ने ये सांग ना बोले ने आमचो रेडियो सुन तो भाई बहन मन कोनी दुखुक चाहे से तो हन मन काजे बोले ने काय बोलुक चाहे से चल
1: ए नेतानार ग्राम सभा भीतर नहीं गोटोक आमी जोन एबे उइदिर पर्यटन स्थल नाम ने चालू कर लु से गुंडादुर जन्म स्थल नेतानार ने तो एता तुम्ही इया आर गुमा तुम के दखा तो काजे आमसो जोन समिति ग्राम सभा से सदस्य मन दखा दे तुम के एता काई डर नहीं आए अच्छा या एता जोन बम्बू राफ्टिंग पिकनिक असन खूबे चीज तुम्ही करू सकास एता काई डर असन नहीं आए
0: तो फूल सिंह नाग तो इतलो अच्छा बोले तुम चो वन संसाधन समिति पूरा नेतानार ग्राम चो जन जितलो बल गांव आसे और जन पर्यटन क्षेत्र उधिर ठान ने ये सब गोट के सांगरे जुआर ना
2: आमचो रान आमचो जीवना इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वन संसाधन समिति और पर्यटन स्थल ग्राम नेतानार के बारे में जानकारी। फूल सिंह नाग से बातचीत कर रहे थे बलबीर सिंह कच्छ। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हैं। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
3: सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें, संस्कृति की धाराएं।
4: मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मानसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार्क का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो नौतपा के दिनों में कैसे आती है, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके हैं। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है, न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहाँ रुककर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है। इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है।
3: विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय स्मरण है उस चेतना का जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है, एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं चेतना को साधती है। और आज यही योग विश्व के खेल

0: मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक।
1: हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई ये यात्रा आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आदनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार।
1: 5000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहाँ तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है, कैसे देखते हैं आप?
2: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है, उस परम तत्व तक पहुंचता है। उस 8 अंगों की यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो उसका नाम है योग, आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी। इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे और ये प्रयास देश में, दुनिया में कई स्थानों पर धीरे धीरे हो रहे थे और उसमें अवैज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं और इसको किस प्रकार हम विज्ञान परक बनाते हुए, खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इनों की, और वो भी निर्धारित श्रृंखला, वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर। ए माने सामान्य, बी माने उससे और कठिन, सी माने और कठिन, डी माने उससे भी कठिन और ई माने परम कठिन आसन, ऐसे हमने कैटेगरी तय की। और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम, आप डूइंग द पोस्टर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले से वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
1: आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है?
2: योगासन योग की शुरुआत है और योग योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से पार जाने की एक प्रकाष्ठा है। योग आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य देता है और योगासन आपको उस दिशा में ले जाने की प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करता है। योगासन बीजारोपण है और योग परम समाधि का तत्व है।
1: जब आपने पहली बार योगासन स्पोर्ट को लेकर चर्चा किया, इसके महासंघ की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया और जब इसको खेलो इंडिया या क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां आई और उस समय क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था?
2: ये जो मूल रूप से विषय आया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग श्री स्वामी रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए, तो उस वार्ता में ये निश्चित हुआ कि योगासन को खेल का रूप दिया जाए। और आज चुनौतियां बहुत अधिक ये थीं कि बच्चे आज स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे थे और जो खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बिल्डिंग्स अब वो स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2x6 फीट का एक स्थान तय करें, ना कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर, तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
1: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं।
2: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे, परंतु उस पोस्चर में उनको एक मिनट खड़ा रहना बड़ा कठिन है। साहब स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से किया जाता है तो उसकी मास्टरी का लेवल अलग होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका स्थायित्व जिसे कहते हैं स्टिलनेस वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्थिरता। तो डेढ़ मिनट करने वाला बच्चा ही एक मिनट परफेक्शन से कर पाता है क्योंकि उसको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग दोनों चीजें उसमें काउंट होती हैं। और ये जब शिकायतें हमारे पास आने लगी कि बच्चों को इंजरी बहुत हो रही है तो हमारा फोकस उस पर रहा कि पहले अच्छे कोचेस तैयार किए जाएं और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे बढ़कर हमसे ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया और वहां से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में ये हमारी खेल संघ है, उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूं कहूं कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
1: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने दो चीजें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया। नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पांस मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
2: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई। उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने और बड़ी जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म मजहब जाति कास्ट और क्रीड से ऊपर रखकर देखा और उसमें सहभागिता की और पूरी खेल भावना के साथ सहभागिता की।
1: गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया, 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी, कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए?
2: 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूं। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहां जाकर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, कोई बायसनेस होगी, जहां लेवल अच्छा नहीं होगा, जहां चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा, तो एक वो संबल था।
1: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आपसे ये भी समझना चाहेंगे विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स जैसे खेलों के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं?
2: राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूँ। 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से, और उन्होंने आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
1: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं?
2: मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग और योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे, भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।
1: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए।

0: और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
1: विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस, यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहती हुई एक नदी है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने की इन कलाकारों से एक संवादी मुलाकात।

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा?
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूजॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे डीयू म्यूजिक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन होते हैं। वहाँ पे आईआईटी कानपुर के फेस्ट होते हैं, हर साल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फी खा रहा था वहाँ पे, फिर वो बोला कि यार कुल्फी रख देते हैं नाम। लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है। ठीक है।
0: संभव, जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं?
1: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके एक साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मोरे मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेघ में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बलमा, वो हमने खुद बनाया है, हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है, तो वो गाना हमने खुद बनाया है। वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहते हैं। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक वर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहाँ पे कर करके परख परख के।
0: आपके अपने अनुभव में जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग इस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीजों की कमी आपको लगती है जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ते?
2: हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूजिक वेन्यूज की कमी आ गई है बहुत ज्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी।
0: ऐसा क्यों?
2: अब वो ज्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूजिक वेन्यूज थोड़े से स्थिर हो गए थे और अब वही चार पांच जगहें हैं जहाँ पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीजें, तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूजिक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं।
0: सॉरी, आप बताइए।
3: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट।
0: कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है?
3: ओके, सो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेट अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे 500 रुपए एक फैमिली के कॉन्ट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है व्हेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटालिटी इज समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया।
2: अलोंग विद ऑल ऑफ दैट, ओरिजिनल म्यूजिक को ज्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं। अब हमें भी जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूजिक फ्री में सुनना है। हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट इस ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने। एक डेढ़ घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है। ये आपको एक लेवल पे या आपको सर्किट में कम से कम 10-10, 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको डेढ़ घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूजिक। पर کورز انہیں بھی کرنے پڑتے ہیں.
0: تو ابھی آپ لوگوں نے کیا طریقہ نکالا آدتیہ, جیسے آپ جو بات کر رہے ہیں جب کورز کا ذکر آپ نے کیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ کورز زیادہ پاپولر ہیں
2: جی ہاں
0: rather than your own compositions؟
2: بالکل ہیں, پر ہم تھینکفلی اس طریقے میں اس چیز کو ٹیکل کرتے ہیں کہ ہم کورز اپنے طریقے میں ارینج کر لیتے ہیں.
0: اچھا
2: ہم بولتے بھی ہیں we've qualified it.
0: جیسے بھی آپ نے ایگزامپل دیا سمبھو جو بندش ہے بڑے غلام علی خان صاحب کی, اس کو آپ نے تھوڑا ری ارینج کیا, اسے آپ نے ایک نیا ٹچ دیا,
1: اسی آئیڈیا کو لے کے مین اسٹریم گانوں کو ایک الگ نظریے سے دیکھ کے ان کو پریزنٹ کرنا از واٹ وی ایز اے بینڈ آلسو ڈو.

कुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं। बीती 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है, और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और समृद्ध किया। भारतीय नृत्य परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिशी हो या मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान

0: Actually, there are more than 36 to 40 versions of the Ramayana itself. Ramayana ka jo spandan hai, jo leh hai, wo nirantar hai, wo shashwat hai. Aapko vyakhya milti hai, kis tarah se aapke andar wo emotions aur bhavnaye hai. Aur maine do line likhi thi Kaikeyi ka prasang ki Kaikeyi ke karan Ram van gaye aur isi karan wo Ram ban bhi gaye.
1: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिशी गुरु विदुषी शरण लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े विस्तार से बताया.
2: In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.
1: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है.
3: नृत्य एक भाषा है और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमने धारण किया है. और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है. हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महाआचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के, रह के, उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए. और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूँ, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूँ कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में रहे हैं.
1: मोहिनीअट्टम कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंभ रामायण का विशेष उल्लेख किया.
4: There is also a very beautiful and very important play, a scene to behold, to seeing them come, the Shurpanakhas, Alarcha.
1: उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद मानवीय व्याख्या प्रस्तुत की. प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है.
4: Going and proposing to Rama and Lakshmana from that Rakshasi Bhavam, the hand goes into a beautiful Pallava.
1: राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है. गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना. कुछ महान विभूतियां देह में भले हमारे साथ ना हो, वो हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं. असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर खान, ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल फिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है. अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे. नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए. नमस्कार.

रात्रि के 10 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए लोकवाद्य धुनों पर आधारित कार्यक्रम पाड़। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं डूमा देवपाड़ और डोकरा देवपाड़। वादक कलाकार हैं पाकलू और साथी।

0: पहाड़ लोकवाद्य धुनों पर आधारित इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डूमा देवपाड़ और डोकरा देवपाड़। वादक कलाकार थे पाकलू और साथी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। लीजिए सुनिए समाचार। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: ना पांडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरीटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट श्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी

0: यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world.